கேட்ட நிகழ்ச்சி புலரும் பொழுது. வந்தே மாத்திரம்.

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है

0: 67 ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இன்று மும்பையில் இரவு மணி 7:30 நடைபெறவுள்ள ஆட்டத்தில் மும்பை அணி லக்னோ அணியை எதிர்கொள்கிறது. ISL கால்பந்து போட்டியில் ஒடிஷா அணி இன்று பெங்களூரு அணியை எதிர்கொள்கிறது. இப்போட்டி இரவு மணி 7:30 தொடங்குகிறது. ஒடிசா மாநிலம் கந்தர்கர் மாவட்டத்தில் ராஜ்கங்பூர் பகுதியில் IPL சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக 5 பேரை அம்மாநில காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள். தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது. தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் வழங்க விரிவான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது. நீதித்துறை சீர்திருத்தங்களில் வழக்கறிஞர்கள் தீவிர பங்காற்ற வேண்டும் என்று மத்திய சட்ட அமைச்சர் திரு அர்ஜுன்ராம் மெக்வால் வலியுறுத்தியுள்ளார். தமிழகத்தில் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், சேலம் உள்ளிட்ட 14 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. IPL கிரிக்கெட் போட்டியில் குஜராத் அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் அணியை வென்றது. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது.
1: இயம் ஆகாஷவாணி சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம். பிரவாசிகா ரிச்சா ஜா. अथ वार्ताः. असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अद्य मतगणनायै सर्वाः सज्जताः जाताः. मतगणना प्रातः 8 प्रारप्स्यते. प्रैष्य मतपत्राणां गणना सर्वप्रथमं भविष्यति, तथा वैद्युतिकी मतदान यन्त्राणां गणना प्रातः 8:30 प्रारप्स्यते. असमराज्ये 26+ केरलम राज्ये 44+ तमिलनाडुराज्ये 34+ आसनेभ्यः तथा पुडुचेरी इत्यत्र 30 विधानसभासनेभ्यः मतगणना भविष्यति. पश्चिमबंगाले 93+ आसनेभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति. फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मईमासस्य 21 भविष्यति, तत्रैव मतगणना च मईमासस्य 24 भविष्यति.
2: जनादेश 2026.
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण.
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026.
1: भारतीयांतरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आई इत्यनेन संयुक्त राज्यामेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेस एक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणम् कृतम्. 90+ kg मिता मिशन दृष्टिः नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मितः बृहत्तमः पृथ्वी निरीक्षणोपग्रहः अस्ति. उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रहस्य सफल प्रक्षेपणस्य प्रशंसां कृत्वा एतम् उपग्रहं भारतस्य अंतरिक्षस्य नवानवेषणस्य च यात्रायां प्रमुख सोपानरूपेण वर्णितवन्तौ. विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् 45+1900 वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, एषः नूतन विकासः नास्ति इति. विदेश मंत्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवालः कैलाश मानसरोवर यात्रायाः सन्दर्भे सीमा प्रकरणे नेपालस्य विदेश मंत्रालय द्वारा कृतानां टिप्पणीनां विषये प्रसार माध्यमानां प्रश्नानां उत्तरं दत्तवान्. असौ उक्तवान् यत् 45+1900 वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति. रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षात्रिवेणी सङ्गमः, यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिकक्षमतायाः सङ्गमः भवति इत्येतस्य विषयम् आलक्ष्य उत्तरप्रौद्योगिकी

0: सङ्गोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् सङ्गोष्ठी परिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीवमञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति। केन्द्रीय विधि मन्त्री अर्जुन राम मेघवालः ह्यः राँचीनगरे उच्च न्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं चतुस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।
1: ஆகாஷவாணி நேரம் காலை 7 மணி.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: தொடர்வது ஆட்சவிரி செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அன்று.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: vote counting.
1: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies
0: from 8:30 a.m. onwards today.
1: Janadesh 2026.
2: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरीडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज मतगणना होगी। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में तीन चरणों में की जाएगी। भाजपा के मौजूदा विधायक इमकोंग एल इमचेन के निधन के कारण हुए उपचुनाव में 9 अप्रैल को 82.21% मतदान हुआ। इस सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं।
3: Results for the Baramati and Rahuri Assembly bypolls in Maharashtra will also be declared today. The Baramati bypoll was necessitated by the death of former Deputy Chief Minister and NCP leader Ajit Pawar in an air crash on 20th of January. His wife and current Deputy Chief Minister Sunetra Pawar is contesting the seat. In Gujarat, the counting of votes of the Umret Assembly bypoll in Anand district is being held today at a college in Vallabh Vidyanagar amid tight security. So this bypoll was necessitated after the death of BJP MLA Govind Parmar.
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया। नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ बातचीत के लिए तत्पर है। इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल सरकार इस तथ्य पर पूरी तरह से स्पष्ट और दृढ़ है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पिया धुरा लिपुलेख और काला पानी 1816 की सुगौली संधि के बाद से नेपाल के अभिन्न अंग है। नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत और चीन को अपनी चिंता से अवगत कराया है।
3: Now we'll tell you about the successful launch of Mission Drishti satellite. So Indian space startup GalaxEye has launched Mission Drishti, world's first OptoSAR satellite, aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California in United States. This weighs around 190 kilogram. Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded this successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey.
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
3: The United States and Iran appear no closer to a breakthrough as Washington pushes back on key elements of Tehran's proposed roadmap to end the conflict, even as a fragile ceasefire remains under pressure across West Asia. Iran's government spokesperson Ismail Baghai said, The United States has responded to Tehran's 14-point plan aimed at ending the war, adding that the response is currently under review. U.S. President Donald Trump, speaking to Israeli media, he said that he had examined the proposal and described it as not acceptable. He said Iran has not yet paid a big enough price, signaling Washington's tougher stance as talks remain indirect and mediated.
2: होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाज़ों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाज़ों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाज़ों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमान के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

0: फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज की खाड़ी से जहाज़ों की आवाजाही को लगभग बंद कर रखा है। उधर अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है।
1: Providing you weather updates now, the India Meteorological Department has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha.
0: आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

0: similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha.
1: IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया. अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन बनाए. जवाब में गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे. मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का.
0: Well, we are beginning with Chennai, Manoj.
1: जी.
0: So, Chennai Metro Rail Limited ridership dropped to around 3 lakh in April. So, that's why the CMRL, Chennai Metro Rail Limited, said that 90.18 lakh passengers travelled in metro trains last month. And in March, around 1 crore people travelled, averaging 3.22 lakh daily. Last month's peak daily ridership of 3.65 lakh, it was recorded on April 2 and ahead of an extended weekend. To attract more footfall, the Chennai Metro Rail Limited has pushed event-based travel initiatives such as free rides for IPL 2026 matches and other events which includes marathons.
1: अब दिल्ली की खबर. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की हरियाली ही इसकी जीवन रेखा है और इसकी सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने शहरवासियों से कहा कि यदि कहीं अवैध रूप से पेड़ कटते हुए दिखाई दें तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1800118600 पर सूचना दें. मुख्यमंत्री ने इस दौरान हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेदारी का नारा देते हुए नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. दिल्ली की एक और खबर. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक बैंक अधिकारी भी शामिल है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से हाई रिटर्न का लालच देकर 45 लाख से अधिक रुपए की ठगी की है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.
0: Now we'll head to Bengaluru. The leader of the opposition in Karnataka Legislative Assembly, R. Ashok, has condemned youth for scripting history at Swaraj Dweep in the Andaman and Nicobar Islands by unfurling the national tricolor deep beneath the sea. Has commended youths for scripting history at Swaraj Dweep in the Andaman and Nicobar Islands. So he has expressed pride at his son Sharath R. Ashok being part of the patriotic adventure. R. Ashok has also congratulated his teammates trained in scuba diving for earning a place in the Guinness World Records in this underwater mission. The record made on May 2nd, it saw participation of over 200 skilled scuba divers from across the country, and this feat achieved with support of Andaman and Nicobar administration as well as Indian Defence Forces involved unfurling a massive 60-into-40-meter national flag beneath the sea against all odds posed by strong currents and water pressure. So Sharath has considered this as a moment of immense pride in his life, and he has said that his experience in adventure sports and wildlife conservation, it inspired him to be part of a meaningful national effort.
1: अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर. वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार और शिक्षाविद अभय मोकाशी का अपने 69वें जन्मदिन से एक दिन पहले शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. श्री मोकाशी का पत्रकारिता में लंबा करियर रहा. उन्होंने मिडडे में राजनीतिक संपादक और बाद में द फ्री प्रेस जर्नल में स्तंभकार के रूप में कार्य किया. वे पत्रकारिता के शिक्षक के रूप में भी जाने जाते थे. वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर से जुड़े अंकों में हेर फेर के मामले में अपने खुलासे के लिए प्रसिद्ध थे जिस कारण मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था. मुंबई की एक और खबर. महाराष्ट्र पुलिस ने कल्याण में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और लगभग 2,80,000 रुपए मूल्य के चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए हैं. सूचना के आधार पर बाजार पेट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 28 अप्रैल को कल्याण पश्चिम में एक आरोपी को चोरी के स्कूटर के साथ पकड़ा जिसके बाद 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कल्याण के विभिन्न हिस्सों से वाहन चोरी करने की बात

0: प्रतिबंध लगाने के लिए ओटावा संधि के सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की पहली बैठक मापुतो मोजाम्बिक में शुरू हुई। 2003 में आज ही के दिन मैक्सिको के अन्ना गुएवेरा ने 35.30 सेकंड का समय लेकर ग्रां प्री की 300 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2007 में आज ही के दिन बैंकॉक में ग्लोबल वार्मिंग पर बैठक संपन्न हुई। 2008 में आज ही के दिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल ने भारतीय इस्पात गठबंधन से अपने को अलग किया।
1: In 2022, US Federal Reserve made largest interest rate increase since 2000, which was plus 0.5%, and attempting to combat the fastest rate of inflation in four decades. Manoj.
0: जी, और अब याद कर लेते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: Well, yes, first, let us tell you about Edith Nesbit, the writer and poet, published her books for children and others as well. She wrote or collaborated on more than 60 such books. She was also a political activist and co-founder of the Fabian Society. This is a socialist organization which was later affiliated to the Labour Party. So the greatest wish of Edith Nesbit was to be remembered as a poet. Her poetry, like much of her adult fiction, is long forgotten. She came to write children's stories in later life and was a responsible for a string of enduring titles, the most notable being The Railway Children. She has been described as the first modern writer for children, although Wordsworth readers have also been introduced to her talents as a writer of supernatural fiction. I was telling you about Edith Nesbit.
0: आज पुण्यतिथि है टीपू सुल्तान की। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली कोलार जिला कर्नाटक में हुआ था। टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेरे मैसूर का खिताब अपने पिता से प्राप्त हुआ था। टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों और निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ऐसी स्थिति में टीपू ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव किया, और चूंकि अंग्रेजों को भी टीपू की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसलिए छिपे मन से वे भी संधि चाहते थे। दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 में हुई, और इसी के फलस्वरूप मंगलौर की संधि संपन्न हुई। कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था।
1: How great. Well, now let us tell you about a musician, a blues singer and harmonica player, Paul Butterfield. Well, he's mostly associated with the Paul Butterfield Blues Band, which was inducted into the Blues Hall of Fame. He created a blues style that was uniquely his own, preferring single notes as opposed to chords and playing his harmonica. You're listening to his track, Driftin' Blues.

0: आज पुण्यतिथि है पंडित किशन महाराज की। उनका जन्म 3 सितंबर 1923 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। वे बनारस घराने के वादक थे। उन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1973 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। आइए सुनते हैं उनके तबले को।
1: जब कोई अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तो तबले को भी जुबान हो जाती है। देखिए, एक एक शब्द तबला कहता है कि नहीं, हम मुंह से बोल के इस पर निकाल के दिखला रहे हैं। आप देखें, गणानाम गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय धुरपद गावे अति विचित्र।
2: Fabulous. Well, yes, we are telling you about Pandit Kishan Maharaj, the legendary Indian tabla maestro, and he belongs

0: To the Banaras Gharana of Hindustani classical music, being a central figure of Banaras Gharana. And we know him for his robust and open sound on the tabla, which we could rightly hear as well. And we also know him for his majestic stage presence and powerful playing style. And this, he's also celebrated for his ability to play a wide variety, Manoj, of rhythmic patterns with unparalleled clarity and speed.
1: आज जन्मदिन है अनंग देसाई का. उनका जन्म 4 मई 1953 को अहमदाबाद में हुआ है. वे एक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता है. देसाई 100 से अधिक टेलीविज़न शो और 70 फिल्मों में दिखाई दिए हैं और टेलीविज़न श्रृंखला खिचड़ी और उसी नाम की फिल्म में बाबूजी के किरदार के लिए जाने जाते हैं. वे नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और संस्थान के पेशेवर नाट्य मंडली का हिस्सा थे, जहाँ उन्होंने टेलीविज़न और फिल्म जगत में अपना करियर शुरू करने से पहले हिंदी थिएटर के लिए कई नाटकों में अभिनय किया. उनकी मुख्य फिल्में गांधी, परिंदा, नई दिल्ली टाइम्स, परिणति, आशिकी, सर दिलवाले आदि हैं. आइए सुनते हैं उनके साक्षात्कार का कुछ अंश.
2: मैंने जो 3 साल ट्रेनिंग के बिताए एनएसडी में, बहुत कुछ सीखा मैंने. आपकी पूरी बॉडी के बारे में आपको जानने को मिलता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, साथ साथ रियाज भी होता रहता है. आप जो प्रोग्राम्स थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस करते रहते हैं, 2-4 सिग्निफिकेंट प्लेज मैंने जो रेपर्टरी में किए. सबसे पहला मेरा इम्पोर्टेंट प्ले था मुख्यमंत्री करके, जो बहुत पॉपुलर हुआ था. मेरा रोल भी उसमें काफी इम्पोर्टेंट था. और दूसरा एक महाभोज करके प्ले था, बेगम का तकिया, तुगलक, विरासत, ये 5-7 मतलब कई प्लेस हैं जिसमें अच्छे अच्छे रोल्स मुझे मिले.
1: आज जन्मदिन है त्रिशा कृष्णन का. उनका जन्म 4 मई 1983 को मद्रास में हुआ है. वे एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. भारत की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक त्रिशा ने तमिल सिनेमा में 2 दशकों से अधिक समय तक एक सफल मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना करियर बनाया है. उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 5 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 1 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड और 1 नंदी अवार्ड शामिल है. तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म जोड़ी में एक छोटी सहायक भूमिका से पदार्पण करने के बाद त्रिशा ने फिल्म मौनम पेसियाधे में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई. त्रिशा ने हिंदी सिनेमा में फिल्म खट्टा मीठा, कन्नड़ सिनेमा में पावर और मलयालम सिनेमा में हे जूट से डेब्यू किया.

0: विदा लेने का समय हो गया है तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
2: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
0: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
2: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि त्रिपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी के, उनकी टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है जो कि महिलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना

0: और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो वो भाजपा नेता हैं, वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
3: जी, असम में विधानसभा चुनाव की मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा नौगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
4: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने

0: ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिन्दुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपु लेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च, चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सिर्फ वोटों की गिनती नहीं हो रही, आज उम्मीदों का हिसाब होगा, सपनों का फैसला होगा। पश्चिम बंगाल से लेकर केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी, हर राज्य लिखेगा अपनी कहानी। कहीं सत्ता बचेगी, कहीं सत्ता बदलेगी, कहीं इतिहास दोहराया जाएगा तो कहीं इतिहास रचा जाएगा। पश्चिम बंगाल, जहां वोट लिख सकता है नए राजनीति का सवेरा। केरलम, जहां बदल सकती है दशकों पुरानी परंपरा। तमिलनाडु, जहां टकरा रही हैं दो सियासी विरासतें। असम, जहां विश्वास की असली परीक्षा है। और पुदुचेरी, जहां सत्ता की वापसी की दस्तक है। हर पल बदलते रुझान, हर आंकड़ा तय करेगा भविष्य की दिशा। तो तैयार रहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जनादेश 2026। मेरे साथ हैं मेरे को एंकर निशित कुमार और राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
3: Welcome listeners to this very special edition of Janadesh 2026, wherein we'll be discussing, analyzing, dissecting and bringing you the latest from the world of these elections and the results. So stay tuned. As Anand mentioned, my name is Nishit Kumar. Along with me is political analyst Umesh Chaturvedi. Umesh ji, very welcome to the show.
4: Namaskar.
3: A warm welcome to you all. And yes, as Anand rightly mentioned, today is a day of history to be created and a lot of other things to look forward to.
2: Ji haan, bilkul. सबसे पहले आपको ताजा रुझान के बारे में बताएं तो असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक पत्र की गिनती की जा रही है, कुछ राज्यों से शुरुआती रुझान मिलने शुरू भी हो गए हैं। असम में विधानसभा की 126 सीटों की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर आगे है। एक सीट पर असम गण परिषद के उम्मीदवार आगे हैं। केरलम में 140 विधानसभा सीटों की मतगणना चल रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके 1 सीट पर आगे है, जबकि टीवीके पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है।
3: राइट, एंड इन द काउंटिंग एज आनंद वाज आल्सो मेंशनिंग, अर्ली ट्रेंड्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू ट्रिकल इन फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, असम, फ्रॉम वेस्ट बंगाल एज वेल। इन केरला ट्रेंड्स आर अवेलेबल फॉर 11 सीट्स, कांग्रेस इज लीडिंग इन 5 सीट्स, सीपीआईएम इन 3 सीट्स, बीजेपी, आरएसपी एंड इंडिपेंडेंट in one seat each, and in Tamil Nadu trends are available for 2 seats, DMK and TVK are leading in 1 seat each, and in Assam trends are available for 10 seats, BJP is leading in 9 constituencies and AGP in 1, and the first trends have also started coming in from the very interesting state of West Bengal. West Bengal is the state wherein eyeballs are all focused. The entire India is looking to that state, and the BJP is leading all 3 constituencies for which the trends are available at the moment. Umesh ji, we'd like to start with you. West Bengal, as we mentioned in our opening remarks, is really the state to look forward to this time.
4: बिल्कुल, और एक बात और भी है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे अभी और 5 राज्यों की मतगणना हो रही है। तकरीबन भारत की 19% जनसंख्या अपने नेताओं का चुनाव करेगी, अपने भाग्य विधाता का चुनाव कर रही है, कर चुकी है, नतीजे आने सामने हैं, बाकी हैं। एक चीज़ देखने की बात है कि इन 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद भी पूरे देश का, बल्कि कहें कि पूरी दक्षिण एशिया का फोकस पश्चिम बंगाल पर है, और इसकी एक बड़ी वजह है। अगर आप याद करें, कुछ साल पहले अमेरिका की एक बड़ी मशहूर पत्रिका ने ममता बनर्जी पर, जो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन पर कवर स्टोरी की थी। उसमें

0: उन्होंने एक बात कही थी, पत्रिका ने लिखी थी, वो ये कहा था कि ममता बनर्जी दक्षिण एशिया की अकेली महिला लोकतांत्रिक नेता हैं जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है या किसी बड़े राजनीतिक परिवार से वो नहीं आती। जाहिर है कि ममता बनर्जी ने जो हासिल किया है 15 साल पहले, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दो चुनावों से 2021 में और फिर 2026 में जिस तरह से चुनौती दी है, निश्चित तौर पर इस चुनौती के ही चलते सबसे ज़्यादा ध्यान, और मुझे लग रहा है कि हमारे श्रोता भी जो हमसे जुड़े होंगे वो भी यही जानना चाहते होंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है, और जो रुझान दिख रहे हैं उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह से देश पहले से ही मान चुका था, खासतौर पर एग्जिट पोल आने के पहले ही लग रहा था कि असम में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, तीसरी बार सरकार बनाएगी, और ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी। अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन कांटे की टक्कर कम से कम पोस्टल बैलेट में नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ और भी ध्यान देने की है, बातचीत की शुरुआत हुई, हम लोग अभी लंबी चर्चा करेंगे, डीएमके पहली बार अगर ये सरकार बनाने की स्थिति में है, जैसा कि रुझान में दिख रहा है कि वो आगे चल रहा है, तो वो इतिहास में पहली बार अपनी सरकार दोबारा बनाए
1: बिल्कुल।
0: तो एक चीज़ ये भी है, और जिस तरह से केरल में UDF आगे चल रहा है और LDF पीछे चल रहा है, तो ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि इस देश में कहीं भी किसी भी कोने में वामपंथी दलों की सत्ता में सीधी भागीदारी नहीं होगी।
1: दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू मेक उमेश जी, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दैट द लेफ्ट, द सो कॉल्ड लेफ्ट वुड बी जस्ट अबाउट नोवेयर around the political landscape of the country. So that's a very interesting point that you make. And another point that you make about the DMK kind of retaining power in, if at all they retain power in Tamil Nadu, would be another big thing. But my question here is that, talking of AIADMK here, do you think that post the Jayalalitha phase, when she was there, of course, she was the party, she was the thing around which the entire the party that the AIADMK revolved around her or gyrated around her, like now post Jayalalitha phase, how do you see the AIADMK kind of faring or kind of holding on to it?
2: उमेश जी, इस सवाल पर आप जरूर आइएगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ताजा हाल यह है कि असम में जो ताजा रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, केरलम से जो अभी ताज़ा रुझान आ रहे हैं वहां पर CPM 3 पर आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 पर आगे चल रही है, और वहां पर BJP 2 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का ताजा हाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस 4 पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि वहां पर कांग्रेस 2 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है। तमिलनाडु जिसकी चर्चा निश्चित कर रहे थे, DMK 8 सीट पर आगे है, AIADMK 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, और जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है TVK, वहां पर वो 1 सीट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी, आप
0: निशित जी
2: का पर बात कर रहे हैं।
0: निशित जी के सवालों पर हम आते हैं। निशित जी, एक चीज ध्यान में रखने की है कि पोस्ट जयललिता के सिनेरियो पर आपने सवाल पूछा था, तो पिछले ही चुनाव में 2021 के चुनाव में आप देखेंगे तो जयललिता की जो AIADMK है वो दो धड़ों में साफ बंटी नजर आ रही थी, और उसका चुनावी नतीजों पर बड़ा असर पड़ा था। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उसने तो खुद लड़ाई लड़ी है, लेकिन तमिलनाडु में उसने गठबंधन बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जो AIADMK प्रमुख पलानी स्वामी हैं उन्होंने कुछ मामलों पर मतलब झुकने से इनकार कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि टीवी की जो पार्टी है उसको भी शामिल किया जाए गठबंधन में, लेकिन पलानीसामी इसके लिए तैयार नहीं हुए, और इसका असर अगर यही रहेगा तो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जब EVM मशीनें खुलने लगती हैं तो आप देख चुके हैं अतीत में नतीजे बदलने शुरू हो जाते हैं पोस्टल बैलेट का, ये बड़ा शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर ऐसे ही रुझान रहे तो निश्चित तौर पर AIADMK को सोचना होगा कि वो कहां तक इस तरीके से आगे बढ़ सकती है, कहां तक पहुंच सकती है।
2: उमेश जी, आपको रोकेंगे, इलेक्शन पोर्टल पर जो अभी ताजा रुझान आ रहे हैं वहां पर पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से जो रुझान आ रहा है, वहां ममता बनर्जी पीछे चल रही है।

0: हैं और भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने पिछले चुनाव में नंदीग्राम में उन्हें मात दी थी, इस बार भवानीपुर से ताजा रुझानों में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बढ़त बना ली है।
1: बिल्कुल, इस तरह से अगर देखें, यही अगर रहा तो ये तय मानिए कि जो 2011 में किसी ने नहीं सोचा था कि 34 साल के शासन का ममता बनर्जी की अगुवाई में अंत हो सकता है वामपंथी दलों के शासन का, कुछ कुछ वही स्थिति ऐसी इस बार भी होने जा रही है और ऐसी स्थिति दिख रही है। अगर यही रहा तो अब
2: yes.
1: बाद की बात है, लेकिन
2: अर्ली डेज, यस
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यस यस एब्सोल्युटली, एंड दिस इज रियली, यू नो, इफ फॉर द मोमेंट इफ यू कैन से दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज, इफ यू कैन से, बट स्टिल अर्ली डेज एज यू मेंशनड अर्लियर।
0: केरलम की बात करें तो केरलम में मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। विधानसभा की 140 सीटों में से शुरुआती रुझान आ चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे है, वामपंथी गठबंधन यानी LDF 3 सीटों पर आगे है।

0: राष्ट्रवाद भी एक बहुत अहम मुद्दा रहा। वामपंथियों ने अपना नैरेटिव सेट किया कि अगर आप बीजेपी को यहां पर लाते हैं तो इस राज्य का भला नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के सरकार का नैरेटिव सेट कर रही है और वो ये कह रही है कि ममता बनर्जी के शासन में काफी ज्यादा हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में। मतदाता किस फैक्टर से ज्यादा प्रभावित नजर आया आपको?
1: देखिए, पश्चिम बंगाल की जो अभी राजधानी है ना कलकत्ता, वो कोलकाता जिसका अब नाम हो गया है, वो भारत की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों की पहली राजधानी थी और उसका असर आप देखेंगे कि पूर्वी भारत ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा रहा एक दौर में। बल्कि हम लोग भी जब छोटे थे तो जब भी किसी को नौकरी की तलाश होती थी, रोज़गार की तलाश होती थी, इवन कुछ अच्छी पढ़ाई की तलाश होती थी, तो लोग कलकत्ता की यात्रा करना पसंद करते थे, वहाँ जाना पसंद करते थे। पश्चिम बंगाल में माने में औद्योगिक साम्राज्य था, जूट की मिलें थीं, लोहे का मिलें थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों को की मांग को लेकर के नक्सलबाड़ी का जो आंदोलन शुरू होता है और उसके बाद वामपंथी दलों की सरकार बनती है 1977 में, उसके बाद से वहाँ से औद्योगिक जो चीज़ें हैं वो बदलने लगती हैं, औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने लगता है, उद्योग ठप पड़ने लगते हैं, उद्योग वहाँ से जाने लगते हैं। आज भी आप देखिएगा कि जितने भी बड़े खासतौर पर उत्तर भारत के उद्योग हैं, दो तीन बड़े जिनका नाम आजकल चल रहा है, उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उनको देखेंगे और उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो पते देखेंगे तो वो कलकत्ता का ही दर्ज है। मतलब ज़्यादातर जो बोर्ड्स थे, जो उद्योग साम्राज्य थे, वो कोलकाता से चलते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में एलडीएफ की जो लेफ्ट फ्रंट की जब से सरकार आती है तो देखते हैं कि धीरे धीरे वो ग्रोथ रेट डाउन जाती है। हालांकि लेफ्ट फ्रंट का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उन्होंने बहुत जमीनी स्तर पर किया। ममता बनर्जी जब 2011 में आई तो उनको लेकर के एक उम्मीद थी कि वो चीज़ों को बदलेंगी। हालांकि एक चीज़ और भी देखिए, तो उनका जो एक कंट्राडिक्शन है उसमें, शायद देश ने उसमें समझने में गलती की कि वो सिंदूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उभर के आई थी और वो आंदोलन क्या था, वो भी औद्योगिकरण के खिलाफ था। और आप देखिए कि जो टाटा की नैनो फैक्ट्री लगनी थी वहाँ वो लग नहीं पाई और जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने टाटा को बुला करके गुजरात में नैनो की फैक्ट्री लगवा दी। तो एक परिदृश्य बदलने की जो शुरुआत थी, कोशिश थी, वो वैसी दिखी नहीं। और दूसरी जो हिंसा की जो बात आप कर रहे हैं, पिछले जो विधानसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए थे और हजारों की संख्या में लोगों को जो असम से सटे हुए इलाके थे वहाँ जाना पड़ा या स्कूलों में शरण लेनी पड़ी थी। तो ये सब चीज़ें थीं जिस पर मतदाता बदले हुए नजर आए। एक चीज़ और है, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश भविष्य में सोचता है, लेकिन होने क्या लगा था हाल के कुछ वर्षों में, आप देखेंगे पिछले 15-20 सालों में कि वो उल्टा होने लगा था। अभी आप देखेंगे कि बिहार को कहा जाता है ना मजदूर का सबसे बड़ा सप्लायर, आप हम लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बैठे हैं, आप देखिए घरों में काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं। जो ह्यूमन जो स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन हो रहा है, हाँ ट्रैफिकिंग हो रही है, उसमें भी बंगाल से सबसे ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे।
2: वेलकम टू दैट उमेश जी, इन द मीनवाइल वी लाइक टू say that Assam, in Assam, 38 out of 126 trends, of course, as of now, 33 seats for the BJP. It feels like going in the direction of the BJP. And
3: Janadesh 2026.
4: Assam, Keralam, Tamil Nadu, Paschim Bengal aur Puducherry ke chunav natijon par vishesh karyakram Akashvani ke saath.
0: जनादेश 2026 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की गिनती चल रही है और हम ताजा रुझान आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ को एंकर हैं निशित कुमार, साथ ही दो राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: यस, बिफोर वी वेंट इनटू द ब्रेक, उमेश जी, वी वर टॉकिंग अबाउट असम, 33 seats for the BJP, it seems for the moment going their way out of the 38 trends, of course, trends, very early days as of now. And we were talking about the West Bengal, Umeshji, this time 92%+ of voting, that actually gave some direction to which way it probably

0: because generally it has been the trend, generally it has been like a feature that whenever there has been bumper voting or something like this happening, it has been like it goes the other way, as that is the anti-incumbent way.
1: बिल्कुल. और एक चीज़ और भी है जो आप देखेंगे कि एग्जिट पोल जब आए थे तो बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल को नकारने की शुरुआत की थी. yeah. उसको बहुत जोर शोर से नकारा भी था. लेकिन एक चीज़ ध्यान में, हम लोग क्या है ना, अपनी स्मृति बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हमारी स्मृति बहुत कमज़ोर होती है. 2005 का दूसरा बिहार विधानसभा चुनाव, 2005 में बिहार में दो बार विधानसभा चुनाव हुए थे. पहली बार जो जनवरी फरवरी के आसपास हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था, तो किसी भी गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसमें एलजेपी को 29 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार जो बाद में मुख्यमंत्री बने वो बहुत पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन एलजेपी ने समर्थन नहीं दिया. तो बाद में हंग असेंबली भंग हुई थी और फिर दोबारा जो चुनाव हुए थे, याद कीजिए, चुनाव आयोग के जो सलाहकार थे उस समय केजे राव, उन्होंने भारी संख्या में गैर बिहार के राज्यों से, पंजाब से, तमिलनाडु से फोर्स बुलाई. और जो आप जानते हैं कि सिवान जो सबसे मशहूर और सबसे चर्चित जिला होता था, जहां आप सोचिए कि सीधे सीधे पुलिस अफसर से वहां के एक व्यक्ति ने सीधे सीधे मुकाबला किया था, वहां पंजाब पुलिस ने चुनाव कराया था. कुछ कुछ यही स्थिति इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने की है. जो
0: जी बिल्कुल. I'll just in the meanwhile there is this breaking news that Stalin, the Mr. Udayanidhi Stalin, he is kind of not leading at this moment so far as Tamil Nadu is concerned. This is a breaking news coming for the moment.
2: जी बिल्कुल. अगर ताज़ा रुझानों की एक बार फिर बात करें तो असम में इस समय भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीट पर आगे है, केरल में कांग्रेस 10 सीट पर आगे चल रही है, जबकि सीपीएम 2 सीट पर, सीपीआई 1 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी वहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. पश्चिम बंगाल जिस पर सबकी नजरें हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर आगे है, तृणमूल कांग्रेस 9 पर बढ़त बनाए हुए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, तमिलनाडु में डीएमके 12 सीट पर आगे है, एआईएडीएमके 5 पर बढ़त बनाए हुए है. संजीव जी, पश्चिम बंगाल की चर्चा की हमने, असम की अगर थोड़ी चर्चा करें, वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा की जो छवि थी, उन्होंने मामा की छवि बनाई उन्होंने पूरे चुनाव में और काफी आक्रामक प्रचार किया, खासकर कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने, हमने देखा कि पवन खेड़ा ने किस तरह की टिप्पणी की और उसके बाद किस तरीके से मामले रहे. लेकिन जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, एक तरफा बंपर जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है.
3: जी बिल्कुल. कांग्रेस वहां उन्होंने कोशिश करी कि तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को आगे करने की और एक तरह से जो पुरानी ट्रेडिशन थी उसको आगे चलाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस पकड़ नहीं पाई, मतलब द ग्राउंड सिचुएशन को पकड़ नहीं पाई. तो हिमंता बिस्वा शर्मा फर्मली इन सैडल हैं और जैसा कि एग्जिट पोल्स भी बोल रहे थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी लेड अलायंस पूरा बहुमत से आगे आ रही है, तो रुझान इनिशियल जो आए हैं, हालांकि ये इनिशियल है बहुत और अभी पहले पोस्टल बैलेट फिर ईवीएम शुरू होंगे, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि कांग्रेस डेंट नहीं कर पाई, कांग्रेस पकड़ नहीं पाई ग्राउंड सिचुएशन.
2: हमारे श्रोता ये समझना चाहेंगे, चूंकि आप राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कि असम में क्या विकास के नाम पर मतदाताओं ने वोट किया या कमजोर विपक्ष का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला?
3: मैं कहूंगा कि दोनों सिचुएशंस हैं, लेकिन कमजोर विपक्ष ज्यादा निर्भर किया है इस इलेक्शन में. प्लस बीजेपी इस इलेक्शन को पोलराइज भी कर पाई है, जैसे कि उन्होंने घुसपैठियों की बात बहुत करी है. जैसे ऑल टॉप लीडर्स अमित शाह इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर घुसपैठियों की बात की, घुसपैठियों को निकाल देंगे. फिर कांग्रेस ने थोड़ा सा कोशिश करी नेगेटिव राजनीति करने की, कि हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ को और उनकी करप्शन को लाने की आगे कोशिश करी, लेकिन वो चला नहीं, वो उल्टा पड़ गया और वो कांग्रेस अपने उसमें एम्ब्रॉयल हो गई. तो ग्राउंड सिचुएशन, और अगर आप देखें कि इलेक्शन से कुछ देर पहले फॉर्मर कांग्रेस एमपी, कांग्रेस का सिटिंग एमपी, कांग्रेस के कुछ देर से जैसे लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहा है कि किस तरफ राजनीति जा रही है. राजनीतिक जो राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियंस, बहुत समझते हैं आगे कि कैसे आगे क्या चल रहा है. तो जिस तरह से एक से बाद एक दूसरे कांग्रेस के लीडर्स निकल रहे थे कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था

0: कि बीजेपी स्ट्रांगली इमर्ज कर रही है.
1: राइट. इन द मीनवाइल सुवेंदु अधिकारी ऑफ द बीजेपी इज लीडिंग फ्रॉम बोथ द सीट्स, दैट इज भवानीपुर एंड नंदीग्राम. दिस इज बिग, दिस इज ह्यूमंगस. संजीव जी, एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग डिस्कसिंग अबाउट असम. वन थिंग ऑफ कोर्स इज दैट हाउ द कांग्रेस पार्टी काइंड ऑफ dealt into that negative campaigning, if you may say that, and the BJP mostly, of course, the incumbent chief minister Mr. Sarma, has been very aggressive right from the very beginning, but at the same time probably he has delivered on the ground as well.
0: That's right. Assam has been a traditional Congress stronghold. But over the years, Himanta Biswa Sarma was the blue-eyed boy of Mr. Tarun Gugoi, who was the chief minister for a very long time there. Now, the Congress tried to play its card on carrying on the legacy of Mr. Tarun Gugoi by putting forward his son, Gaurav Gugoi, as their leader. However, on the ground, you know, it seems that the Congress has lost its, you know, charm on the ground. Because Himanta Biswa Sarma knows the area, you know, the state.
1: And also the pulse of the people, yeah.
0: He's been focusing on the people, he's been focusing, you know, and the BJP, on the other hand, is giving it a fillip by adding the angle of, you know, infiltrators and, you know, those who migrated from Bangladesh and all that. So, on one side, you know, development is going on. On the other hand, you know, this narrative is also going on. So, Congress could not actually capture the narrative in the state.
1: Right. Umesh ji, we were just discussing about West Bengal and the bumper voting which happened this time, 92%+. This is humongous. Now, there has been this talk of infiltration, the Rohingyas and all, you know, crossing into the Indian side from Bangladesh and other parts as well. So now this time it seems the central leadership as well as the election commission, they have been kind of holding fort with very, you know, that strong kind of iron fist. How far do you think that the tightening of the screws, so far as the security and these things are concerned, has any bearing on these election results?
2: दो चीज़ें हैं. पहले तो आपके सवाल में दो चीज़ों का और इशारा है. पहला तो ये है कि घुसपैठ को लेकर के इस बार सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया. लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसको मुद्दा सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बनाया किसने था. खुद ममता बनर्जी ने.
1: yes.
2: और अगर आप याद कीजिए 2011 के चुनाव में उन्होंने खुद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की थी कि केंद्रीय बलों की निगरानी में पश्चिम बंगाल में चुनाव. तो वो खुद मानती थी कि उस समय वेस्ट बंगाल की पुलिस या कोलकाता पुलिस है उसकी निगरानी में चुनाव सही तरीके से नहीं हो सकते. उम्मीद ये की जा रही थी कि ममता बनर्जी जब आएंगी शासन में, जो आई भी 2011 में, तो आएंगी तो जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उसको सॉल्व करेंगी, उसका उन समस्याओं का समाधान करेंगी. लेकिन ठीक उसी तरह से वो उसी राजनीति में पगती चली गई जिस राजनीति में पहले CPM की लीड वाली सरकारें होती थी और जिसका वो विरोध करती थी. तो घुसपैठ तो उनका मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उनके हाथ से लपका है. एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी जीतती हुई दिख रही है रुझानों में पश्चिम बंगाल में, वो भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पार्टी है ना, भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले हिंदू महासभा के नेता होते थे, वही पश्चिम बंगाल से ही आते थे, कोलकाता से आते थे. तो एक तो बड़ा मलाल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, भले वो कहे ना कहे सार्वजनिक रूप से कि जहां के उसके संस्थापक थे वहीं वो नहीं अपनी
1: घर छोड़ने वाले.
2: और दूसरी एक चीज और याद कीजिए कि लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा ट्रेमेंडस विकास हुआ है. 1967 में जो संविध सरकारें बनी थी, सात राज्यों में कांग्रेस सीधे सीधे हारी थी, तो उस समय विपक्ष का जो गठबंधन था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, उस गठबंधन में भारतीय जनसंघ भी शामिल था और उस भारतीय जनसंघ की ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 24 परगना जिले की एक सीट गोसाबा पर गोविंद चंद्र मंडल जीते थे. वो SC रिजर्व सीट थी और पहली बार जनसंघ ने 1967 में खाता खोला था और बाकी 57 सीटों पर वो नहीं हारी थी. तो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा मलाल रहा भारतीय जनता पार्टी का. और दूसरा जो घुसपैठ वाला मामला है ना, घुसपैठ के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर बहुत उछाला है, खासतौर पर 2016 के बाद से ही वो लगे हुए हैं. जी कुछ कहना चाहते हैं?
3: जी बिल्कुल. पश्चिम बंगाल में इस समय 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी

0: शुरुआती रुझानों पर आगे नजर आ रही है और तृणमूल कांग्रेस को शुरुआती रुझान में 25 सीटों का नुकसान नजर आ रहा है। संजीव जी, तमिलनाडु में जो इस समय स्थिति बन रही है, 26 सीटों के रुझान आ रहे हैं, जहां डीएमके 11 पर आगे है, कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाए हुए है, एआईएडीएमके 6 पर आगे है, लेकिन जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके। देखिए, इस समय वो 6 पर आगे चल रहे हैं और एआईडीएमके भी 6 पर आगे चल रही है। एग्जिट पोल में कुछ ने उनको ट्रिपल डिजिट में भी सीटें दी हैं, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप?
1: देखिए, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा आप देखेंगे काफी अरसे से पर्सनालिटी बेस्ड रही है। चाहे वो एमजी रामचंद्रन हो, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो जयललिता हो, और अब नया फैक्टर जो आ रहा है वो विजय है। तो विजय एक्टर रहे हैं तो, और उन्होंने यूथ के ऊपर बहुत उनका इन्फ्लुएंस रहा है। आपने देखा होगा उनकी रैलीज में कितना बहुत रश होता है
0: जी,
1: और एक रैली में तो
0: बड़ी तादाद में नजर आए,
1: महिलाओं का भी सपोर्ट उसको है। तो आप देखेंगे यूथ और महिलाएं जहां जा रही हों, तो इसीलिए अभी सबसे बड़ी बात यह है तमिलनाडु में जो देखने वाली, कि द्रविडियन पार्टीज जो होल्ड करती थी फोर्ट, जो राज करती थी, पहले कांग्रेस करा करती थी बहुत पहले, लेकिन जब से द्रविडियन पार्टीज आई, जो रीजनल आइडेंटिटी को और लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए ये जो पार्टीज आगे आई, उसके बाद से आइदर वे डीएमके या एआईडीएमके दोनों अल्टरनेटिवली पावर में आ रही हैं। कुछ दो बार तीन बार आती हैं, फिर दोबारा दूसरे आ जाते हैं, लेकिन इस बार द्रविडियन पार्टीज को पिछड़ने कि क्या वो पावर से बाहर जाएंगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और टीवीके एक होप दे रहा है यूथ को वहां की और महिलाओं को, और अगर इन दोनों की सपोर्ट है तो आई थिंक महिलाएं 50% ऑलरेडी हैं और यूथ प्लस कर लो आप 25%, मतलब टोटल यूथ 42% है वहां स्टेट में।
0: बहुत संक्षेप में, चूंकि हम न्यूज ब्रेक के लिए भी जाने वाले हैं, ऐसी खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी विजय को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी, उनके साथ एक समझौता करना चाहती थी। खबर यह भी थी कि राहुल गांधी टीवीके के साथ समझौता करना चाहते थे। क्या विजय को इस बात का अंदाजा था कि वो अकेले दम पर तमिलनाडु में कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसलिए वो अकेले लड़े?
1: अकेले इसलिए भी लड़े उन्होंने कि अपनी आकलन कर लें कि कितनी उनकी पोजीशन है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहे थे क्योंकि उनको मास बेस सपोर्ट था उनकी रैलीज में जैसे आए, हालांकि रैलीज एक यार्डस्टिक नहीं माना जाता। रैलीज ममता बनर्जी की भी लेफ्ट के टाइम बहुत होती थी, बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, बट पावर में नहीं आ पाई, लेफ्ट को डीथ्रोन नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जो जैसे लग रहा है, और प्लस बीजेपी के साथ वो पहले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो कुछ माइनॉरिटी वोट्स को एंटी हो जाती, तो प्री पोल अलायंस की जगह मुझे लग रहा है पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है अगर वो ऐसी इमर्ज करके आए, क्योंकि उनकी अगर पार्टी 3 फिगर में आए तो पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है।
2: राइट very briefly before slip into a break, for Kerala, the LDF is leading in 8 seats, the UDF in 21, and most interestingly, the BJP as well is leading in 3 seats, the BJP plus, that is the alliance in Kerala. Umeshji, Sanjeevji will be slipping into a quick break for now for the news bulletins, and we'll be back at 9:10 a.m. just in 10 minutes from now, with more and more discussions and more analysis. So listeners, just don't go away. Stay tuned and we'll be back right now.
3: Akashwani Neram 9 mani 100.1 FM Gold Alivarisai.

बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन सिर्फ आंकड़ों का नहीं, इतिहास का दिन है। सुबह की हर किरण के साथ खुल रहे हैं लोकतंत्र के वो पन्ने जिन पर जनता ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरलम तक, तमिलनाडु से असम और पुद्दुचेरी तक, हर राज्य एक कहानी कह रहा है, उम्मीदों की, संघर्ष की और सत्ता की। कहीं ताज बचेगा, कहीं तख्त बदलेगा, कहीं सपने सच होंगे तो कहीं वर्षों की मेहनत धूल में मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल जहां हर वोट एक संदेश है, केरलम जहां विचारधाराओं की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर है, तो वहीं तमिलनाडु जहां सत्ता की बिसात पर दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। असम नेतृत्व की परीक्षा है, तो पुद्दुचेरी जहां सत्ता की वापसी या बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है।

0: हर पल बदलते रुझान, हर क्षण नई हलचल, और इन सब के बीच आपके साथ है आकाशवाणी। ये सिर्फ गिनती नहीं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसकी हर धड़कन, हर अपडेट, हर मोड़ हम आपके लिए जनादेश 2026 में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे को एंकर निशित कुमार, और हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं दो राजनीतिक विश्लेषक, उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
1: वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ जनादेश 2026। एज आनंद वाज मेंशनिंग, वी आर कवरिंग ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली, राइट फ्रॉम असम टू वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु टू केरलम टू पुडुचेरी। सो स्टे ट्यून, वी विल बी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट व्हेन इट कम्स टू ब्रेकिंग न्यूज एज वेल एज इनसाइट्स, पॉलिटिकल एनालिसिस, मोर एंड मोर। सो जस्ट स्टे ट्यून। एंड फॉर नाउ, when it comes to West Bengal, the BJP is leading on 48 seats, up 21 from the last time, Trinamool on 29, down 24 from the last time, that is 2021. This is so very significant. And when it comes to Assam, the BJP is leading, the BJP Plus is leading on 42 seats, in Keralam the LDF on 15 and the UDF on 31 seats, and BJP, more significantly BJP Plus, that is on 3 seats in Puducherry. Just one trend at the moment coming, and Sanjeevji, if we may begin with you again, when we talk about the West Bengal, 48 seats at the moment for the BJP, this is tremendous. Of course, as the exit polls would suggest that this would be neck and neck, but it seems to be going the other way around this time.
2: Yeah, it seems it's going one way. And for the BJP, which has been, it's for earlier the Jan Sangh and earlier the Hindu Mahasabha. You know, Hindu Mahasabha had a government in West Bengal in the pre-partition days. Mm. So it would be a return in power for the BJP. And, going by the trends, Mamata Banerjee is also trailing in her Bhabanipur constituency, where Subhendu Adhikari is, leading. So for Subhendu Adhikari, who has emerged as the leader for the BJP, it'll be a double triumph, because last time also he defeated Mamata Banerjee from Nandigram. Mm. And this time he's contesting from Nandigram as well as Bhabanipur.
1: Yes.
2: So it'll be a real double for him. And the indications right now are that the reign of Mamata Banerjee, is coming to an end, because all eyes are on West Bengal, because this has been the most crucial election, and Mamata Banerjee has also fought, both Mamata Banerjee and the BJP have fought very strongly, this time.
1: Right. And
0: असम में जो ताजा रुझान है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सरकार बनाने की तरफ भी आगे जा रही है। 40 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 9 पर आगे चल रही है। पुद्दुचेरी से पहला रुझान सामने आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। दिलचस्प लड़ाई तमिलनाडु में जारी है, जहां पर सत्ताधारी डीएमके 12 सीट पर आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 पर आगे है, लेकिन वहां पर सुपरस्टार विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके 14 सीटों पर आगे चल रही है। एआईएडीएमके 6 पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त है। और सबसे बड़ी चर्चा जो पश्चिम बंगाल पर चल रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी ताजा रुझानों में 49 सीटों पर आगे चल रही है, और तृणमूल कांग्रेस 30 पर आगे है, कांग्रेस 2 पर आगे है, जबकि अन्य जो है वो 1 पर आगे हैं। उमेश जी, अगर बंगाल की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रहे थे, वहां पर बीजेपी और तृणमूल के बीच बहुत बड़ा गैप था, लेकिन पिछले 15 मिनट में, यानी जो हमारे श्रोता समझ रहे हैं, जो पोस्टल बैलेट का दौर लगभग समाप्त हो गया, आधे घंटे चलता है अब जो है वो ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने उस गैप को कम तो किया है।
3: बिल्कुल कम किया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि उससे लगभग 60% ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और एक चीज़ देखना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी। पिछली बार 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 38 सीटें ऐसी थीं जो वो 5% मार्जिन से, उससे भी कम मार्जिन से वो सीटें हारी थी, और करीब 43 सीटें ऐसी थीं जहां 10% के मार्जिन से वो हारी थी। इन सीटों पर उसने बहुत काम किया है।

0: और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो बताते थे कि हमने इन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए किया कि यहाँ करने के लिए बहुत ज़्यादा था। और एक चीज़ और है, जो अल्पसंख्यक बहुल 80 सीटें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत तो की लेकिन उस तरह से मेहनत नहीं की जैसे कि इन सीटों पर की। और जो रुझान में दिख रहा है वो वही परिलक्षित हो रहा है, हालांकि अभी ये बड़ा शुरुआती
1: जी,
0: है
1: जी, जी उमेश जी आपको रोकना चाहेंगे। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि महिला केंद्रित जो योजनाएं हैं उससे सरकार को बंपर फायदा मिल रहा है। झारखंड में देखे तो हेमंत सरकार ने मैया योजना की शुरुआत की, वहां पर वो जीते। छत्तीसगढ़ में भी लाभ मिला, मध्य प्रदेश में भी लाभ मिला। यहां पर ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना चलाती हैं, 1000 रुपए मिलते हैं हर महीने। उन्होंने कहा कि अगर वो जीतेंगी 500 रुपए और बढ़ा देंगी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो 3000 रुपए वो हर महीने हर महिला को देंगी। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में?
0: बिल्कुल, जब कोई सरकार जीत बनाने की स्थिति में कोई पार्टी आती है और कोई सरकार हारती है तो ये बहुत सारे फैक्टर तो काम करते ही हैं। और आमतौर पर ये कहा जाता रहा है, देखा जाता रहा है कि जो सरकार में रहता और जिन्होंने दे दिया तो जनता और वोटर सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर जो रुझानों में दिख रहा है पश्चिम बंगाल में वैसा ही अगर ऐसा रहा तो निश्चित तौर पर जो भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है वहाँ ये जो ट्रेंड रहा है ना कि जो दे रहा है उसी पर ज़्यादा भरोसा है तो उससे बदलाव आ रहा है। लेकिन क्यों बदलाव आ रहा है इसको भी हमें थोड़ा सा देखना और सोचना पड़ेगा। एक चीज है कि जैसे आरजी कर अभी कुछ महीने पहले आप देखिए अगस्त 2025 में जो आरजी कर में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ था और जिस पश्चिम बंगाल में एक सवाल तृणमूल की ओर से उठता रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे पूरे देश में होते रहे हैं, लेकिन जानते हैं उसका रिपरकर्शन क्या रहा? सरकार ने उसको जिस तरह से डील किया उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा, खासतौर पर वहाँ की महिलाओं में। और एक चीज़ आप देखेंगे कि जिस तरह से वोट डालने के लिए लोग गए हैं पश्चिम बंगाल से जो बाहर रह रहे थे, उससे भी लग रहा था कि कुछ न बदलाव तो वहाँ दिख रहा है, कुछ न कुछ होने जा रहा है। तीसरी चीज़ एक ये भी है कि SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चला पूरे देश में चल रहा है, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ हर जगह हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल में बना। तो ये जो कंट्राडिक्शन ममता बनर्जी ने, हम लोग ये ब्रेक के पहले जो चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने कहा कि जो घुसपैठ का मुद्दा था, घुसपैठ के मुद्दे को किसने उछाला था? तो ममता बनर्जी ने। और उसी घुसपैठ को लेकर के SIR से उन्होंने जोड़ दिया कि घुसपैठ की बजाय उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ के वासी हैं उनको नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक नारा दिया बहिर्गतों, पश्चिम बंगाल का समाज जहां आप देखेंगे कि आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े धुरंधर वहीं से पैदा होते हैं, आधुनिक जो राष्ट्रवाद है उसकी भी नींव आप देखेंगे तो वहीं, वंदे मातरम का 150 साल अभी हाल ही में बीता है, पूरे देश ने जिसको गाया। तो वो जो चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं जिन मसलों पर पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बनाया और उसका असर ये जो रुझान है उसमें दिख रहा है।
2: So right, the BJP has kind of hit a half century when it comes to West Bengal, and now coming back to Tamil Nadu, Sanjeev ji, TVK, the party, it's leading on 14 seats. The first time, you know, this party has come into existence, and 14 seats, the DMK on 16, which is minus 15 from the last time, and AIADMK almost the same, like 9 plus 1 from the last time. So how big a factor do you see TVK playing when it comes to Tamil Nadu this time, when it comes to the formation of the government?
3: No, TVK certainly, you know, Vijay with, you know, he's been an actor and he has the fancy of the youth and the women in the state. So this time, since he's emerged very strong, and it's most likely that most of the parties like the Congress also tried earlier to ally with the TVK. So did the BJP, but Vijay decided to go it alone this time. So he's tried his time and tested his prowess on the ground. So every party will now try and, you know, ally with him in post-poll alliance, but it's likely that, you know, the southern parties generally go with the central government. So it's likely that the BJP may, you know, ally with it post-poll alliance.
2: So mostly the TVK will have to, or rather would be playing the kingmaker role, if not the king itself. Now, Umeshji, you know, coming to Assam now, Assam, in Assam as well, the BJP

0: BJP is kind of getting close to the half century mark. It's already on 49, and it's been like a clean sweep, just no contest at all when it comes to Assam.
1: It is on a expected line. यही उम्मीद की जा रही थी वहाँ कि इसी तरह से जीत हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को. और आप जानते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक अलग तरह के नेता हैं. आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि बाहर के लोगों को वो नेतृत्व नहीं देते हैं, लेकिन एक तरह से वो ना सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का चेहरा बन
0: चुके हैं. सुशील तिवारी फ्रॉम चेन्नई. सुशील जी, वेलकम.
2: Thank you so much.
0: Yeah, Sushil ji, yeah, please tell us the latest on the ground. What's happening there and how is the mood over there?
2: Actually, the mood is very energetic. We have just visited the nearby counting center, which is close to AIR, that is Queen Mary's College. So lots of police personnel are there. The quite tight security arrangements are there. But a major number of political workers are also standing to know the fate of their candidates, their party. As per the trends by Election Commission, the total trends are about 10 seats, five of which AIDMK is leading. TVK, the new entrant in the political arena of Tamil Nadu, is leading on 3, and CPI and DMK are leading on 1 seat each.
3: जी बिल्कुल सुशील जी, पिछले कुछ समय में जब से ये चुनाव घोषित हुए और वहां पर लगातार जो विकास की चर्चा चल रही थी, और कहा जाता है कि तमिलनाडु में व्यक्ति प्रधान राजनीति है, तमिलनाडु के जो टीवी चैनल्स हैं जिस पर बहुत गहरी पकड़ मानी जाती है स्टालिन की, उन्होंने भी बाकी दूसरे पार्टियों को बराबर कवरेज देने की शुरुआत की पिछले एक महीने में. और राजनीतिक पंडितों ने कहा कि टीवी चैनल्स को लगने लगा है कि अब डीएमके के लिए काफी मुश्किल होने वाली है और टीवीके के विजय पूरी तरह छा गए. शुरुआती रुझान में टीवीके काफी बढ़िया करती नजर आ रही है. जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आई जब इस चुनाव को कवर करने के लिए आप तमिलनाडु के अलग अलग केंद्रों पर गए? तो
2: देखिए, जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही इस बार निर्णायक साबित होने वाली है. हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में 4,75,000 से कुछ 4,75,00,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और इनमें जो एक बड़ी संख्या है, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 18 से 19 वर्ष यानी जो नए वोटर हैं वो 14,00,000 के आसपास हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं. और एक बड़ी संख्या युवाओं की जो 19 से 29 साल के, यानी जो युवा वर्ग है और जेंजी है, वो टोटल मिलाकर के 1 करोड़ से ऊपर है. यानी 1/4 मतदाता ऐसे हैं जो व्यक्ति प्रधान राजनीति में आसानी से प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे तो पूरी ही राजनीति उस पर रही है, लेकिन टीवीके का जो उदय है वो वास्तव में इन्हीं मतदाताओं को ध्यान में रख करके किया गया है. तो जहां एक और डीएमके के पास अपनी जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, उनका एक बेनिफिट था, उसका एक आत्मविश्वास था, उसको लेकर के वो चुनाव मैदान में थे, वहीं इन युवा मतदाताओं के भरोसे विजय ने राजनीतिक मैदान में अपना झंडा गाड़ने की तैयारी की थी. तो ये इस बार ये बड़ा दिलचस्प होगा. अभी तो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है वो पोस्टल बैलेट्स होते हैं. तो धीरे धीरे जब तस्वीर स्पष्ट होगी कुछ समय के बाद, तो हम देखेंगे कि जो युवा मतदाता है उन्होंने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, उसमें कामयाब हुए, या फिर जो लोक कल्याण की योजनाएं रहे उनका फायदा डीएमके को मिला, या सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है उसका फायदा AIADMK और बीजेपी यानी एनडीए का जो अलायंस है उसने उठाने का कुछ प्रयास किया, या उसे कुछ फायदा हुआ. जी
3: सुशील जी, जानकारी के लिए धन्यवाद. आपसे आगे भी हम जुड़ते रहेंगे. संजीव जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
4: जी, मैं ये कह रहा था कि द्रविडियन पार्टीज जो 1957 में पहली बार डीएमके लड़ा, 57 में लड़ा और 67 में पावर में आ गया, तो 67 में जब पावर में आया, तो ये लगभग 60 साल के बाद आज अगर विजय की पार्टी अगर किंग मेकर बनती है या पावर में आती है, तो एक तरह से इट विल बी सनसेट फॉर यू नो द द्रविडियन पार्टीज. और जैसे AIADMK भी डीएमके से निकल के बना, तो अल्टरनेटिवली द्रविडियन कल्चर को, तमिल कल्चर को, तमिल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने से ये उभरा था, एजिटेशनल मूवमेंट से उभरा था. तो ये उस पार्टी का अंत होगा, और एक बार फिर ये देखेंगे कि विजय के जो एक्टर रहे हैं, पहले MG रामाचंद्रन, जयललिता, एक्टर्स हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिकल सीन इन तमिलनाडु, तो एक तरह से उसकी रिटर्न होगी.
3: और आकाशवाणी के श्रोताओं, अगर आपकी दिलचस्पी कुछ

0: वीआईपी सीट्स पर हैं, तो हम आपको बता दें जो ताजा ट्रेंड्स चल रहे हैं, असम के रंगिया से भावेश कलीटा इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो जालुकबाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं वो इस समय बढ़त पर हैं, जबकि नलबाड़ी से जयंत इस समय आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो इस समय कुछ और रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें जोरहट से, तो जोरहट से गौरव गोगोई इस समय आगे चल रहे हैं। गोलाघाट से अजंता नियोंग भी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। बोकाहाट से असम गण परिषद के अतुल बोरा भी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है इस समय चुनाव आयोग के पोर्टल के अनुसार, भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि वहां पर AIADMK के चेपॉक से अद्री राजम इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि चेपॉक थिरु वाली केनी से उदयनिधि स्टालिन जो डीएमके के बहुत बड़े नाम हैं वो इस समय पीछे चल रहे हैं। AIADMK के लिए अन्ना नगर से एस गोकुल इंद्रा पीछे चल रहे हैं। साइदापेट से भी डीएमके के सुब्रमण्यन मां पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी सीटें हैं जिस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कौन आगे चल रहा है। अगर आप टीवी के चीफ विजय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो अपनी सीट से इस समय आगे चल रहे हैं।
1: Yeah, Umesh, talking of Tamil Nadu and the southern states in general, you know, the NDA or the BJP has been making its mark for quite some time now when it comes to Karnataka. But when it comes to Kerala or Tamil Nadu this time in particular, the BJP has been like trying for quite some time now, let's say for almost 8 to 10 years now, wherein they have kind of been pushing for that major push to either make some inroads or get a foothold into the Tamil Nadu politics. But this time as well, there was that concerted push by the BJP to make some kind of a strong, some kind of a foothold within the BJP politics. How do you see this turning out to be, so far as the results or the trends rather, for the moment, which we can see?
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो तमिलनाडु में अपनी ताकत बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। अब आप देखते हैं, देखिए अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी कोयम्बटूर से आते हैं, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक बड़ा होजरी सेंटर है, बहुत बड़ा उद्योग केंद्र है खासतौर पर कपड़ा और होजरी का, तो वहाँ से आते हैं। वहाँ से वो दो बार 1998 और 1999 में सांसद भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कोशिश तो की। जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं वो कोयम्बटूर साउथ से विधायक भी रही हैं, तो इस बार वो चुनाव भी लड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन भारत जो तमिलनाडु की राजनीति है, जैसा कि संजीव जी बोल रहे थे, वहाँ अभी भी वो पुराने जो दो प्रतिद्वंदी रहे हैं AIADMK और DMK, खासतौर पर 1967 में जब से DMK का उभार होता है। और ये देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि जिस कांग्रेस को उसने साफ किया आज वही कांग्रेस उसके साथ खड़ी नजर आती है, और उसके पीछे उसकी छोटे भाई की तरह हर बार, एक चुनाव छोड़ दीजिए 1998 का, तो हर बार लगभग।
1: लेकिन संजीव जी, जहाँ तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस उन्हीं के साथ खड़ी, ये तो एक ट्रेंड बन गया है।
2: बिल्कुल,
1: तमिलनाडु की बात नहीं है, आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आप बिहार में चले जाएं, आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, कई सारे तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर कि ये जो धूर विरोधी थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो तमिलनाडु में, और पिछली बार विधानसभा में 3% वोट 2021 में भारतीय जनता पार्टी का, अपने सवाल पूछा था, सिर्फ 3% वोट ही मिले थे। तो अब केरल की बात है, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पिछली विधानसभा चुनाव में 15-16% वोट उसने हासिल किए थे, और इस बार वहां जितने भी राजनीतिक समीक्षक हैं जिन्होंने फील्ड पर काम किया, जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, सबका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में सीटों को लेकर के बहुत बड़ा उलटफेर भले न कर पाए, लेकिन इस बार वो अपना वोट शेयर बहुत बढ़ाने जा रही है। और वैसे तीन सीटें हैं जो निम्बम है तिरुवनंतपुरम की, जहां से वहां के पार्टी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कासरगोड जहां से पुराने पार्टी अध्यक्ष जो हैं के सुरेंद्रन, और पलक्कड़। ये तीन सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि वो जीत सकती है। अभी रुझानों में पलक्कड़ में से दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से आगे चल रहा है।
0: तो जी, आकाशवाणी संवाददाता राकेश धूले हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है, और क्या स्थिति नजर आ रही है, जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वहां पर, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हेमंत बिस्व शर्मा अपनी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं?
3: जी, अभी अभी तक की अगर ट्रेंड देखे तो अराउंड 59 सीट्स में बीजेपी प्लस जो है एनडीए जो है वो आगे बढ़ रही है, एंड कांग्रेस इज अराउंड 16 जिसमें लीड ले रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो धेमाजी में जो रोनू टेगू धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से, और धेमाजी लोकसभा, सॉरी

0: कॉन्स्टिट्यूशन से रोनू सिंह एजुकेशन मिनिस्टर है वो आगे बढ़ रहा है, नोलबारी से जयंत मल्लभ बरुआ वो आगे बढ़ रहा है, गौरव गोगोई जोरहाट से है वो भी आगे हैं। तो इस तरह से अभी पहला राउंड अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ ही है, उसके नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। तो दिस इज द ट्रेंड। तो बेसिकली अगर हम कहें कि लोग किस तरह से वोट किए या किस तरह से वोट किए होंगे, तो हमें असम को जो है चार भाग में भाग कर सकते हैं, लाइक द अपर असम। तो अपर असम हम लोग कहते हैं कल्चरल हार्टलैंड ऑफ असम, वहाँ की जो मुद्दे हैं दैट्स डिफरेंट। वहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कि सिक्स जो एससी स्टेट है, जो सिक्स कम्युनिटीज मोरान मोटोक अहोम कुछ राजवंशी और सी ट्राइब्स जो आदिवासी थे उन लोग एससी कम्युनिटी मांग रहे थे, तो ये एक इशू है और दे आर वन ऑफ द डिसाइडिंग मैंने डिसाइडिंग फैक्टर्स है वहाँ पर। और लास्ट टाइम अगर आप अपर असम की बात करें तो लास्ट इलेक्शन बीजेपी वहाँ पर बीजेपी मेरा मतलब बीजेपी प्लस एनडीए जो है वहाँ पर अराउंड आउट ऑफ 35-36 सीट्स उन लोगों ने वहाँ पर 31 सीट्स जीते थे। तो ये द सेम थिंग दे वॉन्ट टू कंटिन्यू अगेन। तो ये जो मैंने आपको कहा कि जो एससी स्टेटस है उन लोगों ने प्रोमिस किए कि इन सब कम्युनिटीज को एससी स्टेटस देंगे, दिस कैन बी अ फैक्टर वन फैक्टर। फिर जो आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स की हम बात करते हैं, जो जो लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन लोगों ने बहुत ज्यादा इन पे ध्यान दिए थे, जैसे जिस कितने सारे इवेक्शन किए अराउंड 1.25 लाख जो लैंड इन लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट से इविक किए, फिर एंड देन बहुत सारे ऐसे इंडिजिनियस पीपल है कम्युनिटीज है उनको लैंड राइट्स भी दिए। फिर इन लोगों ने फिर ये अपने मैनिफेस्टो में ये भी बताया कि मोर सच थिंग्स विल हैपन। तो ये एक इश्यू है क्योंकि अपर असम कल्चरल हार्टलैंड राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उन लोग सोचते हैं कि जो बाहर से जितने भी लोग हैं वो उनका उनको लैंड राइट ना मिले इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन जो असामीज है। तो दैट्स वन ऑफ द इशू डियर। और सीट राइट जो है सीट राइट प्लेस ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अपर असम, तिनसुकिया के डिब्रुगढ़ के। आप तिनसुकिया डिब्रुगढ़ की जब बात करें तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये अराउंड 12-13 सीट्स हैं। तो लास्ट इलेक्शन आई विल से कि एनडीए हैज कैप्ड वेरी वेल। इन दो डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला है, सारे एनडीए को सीट मिले थे। तो उन लोगों ने अच्छी तरह से जो तीसराई पॉपुलेशन है उन लोगों को टैप किया था, दिस कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। इसीलिए अभी देख रहे हैं कि जो रुझाने हैं अभी अब 63 हो गई है, कांग्रेस इवन लेगिंग नाउ कि अभी 17 में ही है। तो इसी तरह से सारे असम की जो हम लोग बात करें तो लोअर असम की इश्यूज अलग है। लोअर असम में एनडीए थोड़ा कम की है क्योंकि यहाँ पर जो जो पॉपुलेशन है यहाँ पे जो पॉपुलेशन थोड़ा मिक्स्ड है।
1: जी जी राकेश जी, आगे भी आपसे जानकारी के लिए वापस जुड़ते रहेंगे। और जैसा कि बता रहे हैं राकेश जी भी कि इस समय जो असम में 126 विधानसभा सीटों में से आधे से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इस समय आगे चल रही है। केरलम से बड़ी खबर सामने आ रही है, धर्मदम से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस समय पीछे चल रहे हैं।
2: This is something very big from Tamil Nadu. The new party TVK is leading on 24 seats, which is more than the DMK, which is on 16, and AIADMK on 15. So this is really very significant when it would be coming to the formation of the government this time. And as we have been discussing, the TVK, which was formed which has been fighting for the first time, would probably be playing the role of the kingmaker this time, or probably the king itself. What do you say, Umesh ji?
3: पहले भी एक बार हो चुका है ना MGR, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी AIDMK, और उन्होंने DMK को इसी तरह से हराया था पिछली सदी के शायद आखिर।
2: So do you see the history being repeated?
3: Yes, yes, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। किसने सोचा था कि 2011 में जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी बड़ी जीत लेकर के आएंगी। उत्तर प्रदेश के आप चुनावों को देख लीजिए, 2014 के लोकसभा चुनावों को भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी जीत लेकर के आई थी। MGR की पार्टी का गठन हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि कलिंगर को कोई हरा पाएगा, करुणानिधि को कलिंजर कहा जाता था, लेकिन उन्होंने हराया था। तो जनता भाई लोकतंत्र में मालिक है, वो किस तरह से सोचती है और किसको समर्थन देती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
1: पुदुचेरी पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं संजीव जी। ये एक ऐसा केंद्र शासित

0: प्रदेश जहां पर वोटों की गिनती चल रही है और जो ट्रेंड्स इस समय हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक पर, AINRC 3 पर, AIADMK 1 पर आगे है, DMK 1 पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 पर आगे है। पुदुचेरी में इस समय जो इस चुनाव में जो मुद्दे रहे वो ये रहा पूर्ण राज्य का दर्जा, कोई भी पार्टी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है। साथ ही साथ एक और मुद्दा रहा कि वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उससे टकराव की स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड देंगे, विकास होगा, वहाँ की जनता का क्या मूड नज़र आया?
1: देखिए, तब जो पुडुचेरी बड़ा छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, 30 सीटें हैं, उसमें ज़्यादातर सेंटर पे निर्भर करता है, जो फंड्स आते हैं सेंटर डायरेक्टली देता है। तो हमने पहले देखा जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे मुख्यमंत्री और किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, तो बहुत टकराव रहा एक दूसरे के साथ, हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ होता रहा, तो डेवलपमेंट सफ़र करी वहाँ। तो उसके बाद डबल इंजन की सरकार आई, NDA की सरकार वहाँ बनी। तो मुझे लग रहा है कि साउथ की, एक तो साउथ की है, सेंटर पे काफ़ी निर्भर है, फंड्स, छोटी स्टेट है, छोटी यूनियन टेरिटरी है, तो मुझे अभी भी यही लग रहा है कि लोग वहाँ पे इसी ट्रेंड से जाएंगे कि सेंटर से तालमेल बना रहे, अदरवाइज गवर्नेंस सफ़र करती है। और जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में विजय जैसे आगे बढ़ रहा है, तो जैसे आपने बोला कि किंग मेकर ही नहीं, किंग भी बन सकते हैं,
2: yes.
1: ऐसे लग रहा है। और ये यही शो कर रहा है कि एस्पिरेशनल इंडिया जो है, उसके साथ यूथ है, उनके साथ वेमेन है, तो एस्पिरेशनल इंडिया is looking for a change and a new future for Tamil Nadu.
2: Probably the manifestation, as you say, of the young India, coming in the form of TVK Vijay. Meanwhile, we are joined in by our Kolkata correspondent, Kalyan Laha. Kalyan, welcome. This is Nishit Kumar this side.
3: Hello, Nishit.
2: Yes, Kalyan. Hello. So the BJP kind of, rolling and rolling and rolling, 69, almost 70 now. Plus 35 seats up from the last time of 2021, and TMC not expected like this, going down to 34 minus 40 this time from 2021. This is humongous. All of us, when it came to exit polls and all, when we saw that, it was almost running neck and neck, and almost every kind of political pundit or every sane person would have thought that probably the BJP might have a slight edge over it, or maybe 5 seats or 10 seats, but this is humongous. Your say on that? You have been there on the ground and covering, we know that extensively.
3: देखिए निशित, जैसा अभी ट्रेंड में आ रहा है, बीजेपी बहुत सारे जगह में अभी आगे है, ट्रेंडिंग हो रहा है, और जैसा आपने मेंशन किया है, द फाइट इज ऑन, नेक टू नेक फाइट हो रहा है अभी। अभी पोस्टल बैलेट के जो काउंटिंग है अभी वो खत्म ही होने वाला है, और ईवीएम का काउंटिंग अभी शुरू हुआ है, तो हमें देखना होगा ये ट्रेंडिंग जो चल रहा है। बीजेपी कैंडिडेट सारे जगह में, जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे दे आर लीडिंग, लास्ट में कैसा रहेगा?
0: जी कल्याण जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने ये नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली से आते हैं वो बंगाल के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं, बंगला में नहीं बोलते हैं, वो कनेक्शन का अभाव है, वो बाहर के लोग हैं, वो बंगाल के नहीं हैं, उनका ये नैरेटिव सेट था। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वाम दल जो पिछली बार अपना खाता नहीं खोल पाए थे, इस बार उन्होंने भी युवा उम्मीदवारों को ज़्यादा तरजीह दी थी इस चुनाव में, पहले तो ममता बनर्जी के उस नैरेटिव पर क्या बंगाल की जनता का राय है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ वाम दलों की क्या स्थिति देख रहे हैं आप, चूंकि चर्चा तो करनी पड़ेगी, 34 सालों तक उन्होंने शासन किया यहाँ पर।
3: देखिए, जैसा कि फील्ड का जैसा ट्रेंड है, वोट के जो वोट के आगे से ही हो रहा है इधर पोलिंग करके, वाम जो दल है, लेफ्ट कैंडिडेट इन वेरियस, लेफ्ट हैज प्लेस इन मेनी सीट यंग कैंडिडेट, पीपल आर टेकिंग देम पॉजिटिवली। और ममता बनर्जी का जो रेटोरिक है, जो बाहर से आ रहा है, जो हिंदी भाषी है, बंगाल में उसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो लगता है अभी ये जो ममता बनर्जी का जो रेटोरिक है, पीपल आर नॉट गेटिंग इनटू दैट रेटोरिक।
0: एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, भवानीपुर में आप बहुत ज्यादा घूमे, लोगों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की, इस समय इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के अनुसार

0: people are not getting into that territory.
1: एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, भवानीपुर में आप बहुत ज्यादा घूमे, लोगों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की, इस समय इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के अनुसार वहां से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, लोगों के जहन में क्या समझ में आया आपको?
0: देखिए, जैसा के लोगों के जहन के बारे में आप बोल रहे हैं, तो पीपल आर नीडिंग अ चेंज नॉट ओनली इन भवानीपुर, in all the areas, in all the constituencies. और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप कैसा पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे देखिए बहुत सारे जगह में तृणमूल कांग्रेस का वोट से पॉकेट वोट है, और बहुत सारे जगह में बीजेपी का भी वोट है, पॉकेट वोट. तो हमें देखना होगा कि बाद में क्या हो रहा है.
1: जी हाँ कल्याण जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे.
2: या उमेश जी, इवन कल्याण वॉज मैंशनिंग अबाउट द ग्राउंड सिचुएशन ओवर देयर नाउ. दिस इज ह्यूमंगस, राइट? 70 सीट्स ऑलमोस्ट फॉर द बीजेपी एंड 34 फॉर द टीएमसी. दिस वॉज, बट यू वॉन्ट बी सरप्राइज, यू हैव बीन मैंशनिंग दैट दिस हैज बीन द ट्रेंड, दिस हैज बीन द हिस्ट्री, इट्स बीन हैपनिंग टाइम एंड अगेन. बट अगेन कमिंग बैक टू द ग्राउंड ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स in Bengal, Trinamool Congress, like as the name itself suggests, is the grassroots, Trinamool, right? So when it comes to like other factors, let's talk of the RG Kar incident which happened, you mentioned as well in the, you know, earlier discussions. Another thing, infiltration, of course, that is one. Now, do you feel that the people of Bengal, the natives over there, because I have also been traveling, you know, over the past 10-15 days, and I have been seeing like people who kind of, you know, rushing to Bengal this time to vote, which was not the trend earlier, be it the 2021 or 2016 elections. This time, the enthusiasms are very, very much there for us to see. So do you feel that this time really, you know, of course, 92% plus percent had something to say in that?
3: बिल्कुल. जरा जब इस सवाल के पहले आनंद ने एक हिंदी भाषी जो कल्याण लाहा से सवाल पूछा था, तो ये क्या संयोग की बात है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को कलकत्ता से ही हुई थी, और ये 200वां साल चल रहा है, कुछ दिनों में हम 200वीं वर्षगांठ मनाएंगे. तो ये हिंदी को लेकर के सबसे ज़्यादा तो अगर देखेंगे तो कलकत्ता ने ही विकास में योगदान दिया है. सबसे पहले शुरुआती अखबार भी वहाँ से निकले, भारत मित्र निकला, और उदंत मार्तंड की तो चर्चा होती ही है. मतवाला मंडल का जो संपादकीय था वो तो बड़ा फेमस था, मतवाला भी वैसे निकला. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. क्या है कि राजनीति अपने ढंग से इन सब विषयों को उठाती है. ममता बनर्जी ने तो नारा दिया था कि बहिर्गतों, मतलब जो बाहरी है, वो आएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. लेकिन ये कैसे भूल जाती हैं कि करीब 60 लाख के करीब मतदाता जो हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हुए लोग हैं, जो वहाँ के एक ज़माने में जो जिन्हें चटकल कहते थे, जूट मिलों में काम करते थे या बाकी उद्योगों में काम करते थे. ये कैसे भूल जाते हैं कि कलकत्ता का जो पूरा स्ट्रीट बिजनेस है, चाय पान की दुकानें हैं, वो इन्हीं पूर्वियाँ लोगों की है. जो ड्राइवर हैं सबसे ज़्यादा वहीं के हैं. तो एक तरह से लाइफ लाइन है. तो ये सब बातें राजनीतिक ढंग से उठाई जाती हैं. जहाँ तक सवाल है कि किन मुद्दों पर मतदाता प्रभावित नज़र आया, तो दूसरी बात यह है कि देखिए आज ना कई तरह से सूचनाओं का मतलब आदान प्रदान हो रहा है. संचार क्रांति हो चुकी है. बेशक पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि किसी गांव में बहुत ज्यादा बिजली न रहती हो, लेकिन आजकल लगभग हर हाथ में फोन है, तो सबके पास सूचनाएं हैं. और पश्चिम बंगाल के लोग भी या यूथ भी देख रहा होगा कि हमको क्यों बाहर जाना पड़ रहा है. और अभी भी जब चुनाव अभियान चल रहा था तो बहुत सारे रिपोर्टरों से युवा बोल रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि हमारा पुराना कलकत्ता का वैभव लौटे और उसमें हम आकर के काम करें. तो बहुत सारी बातें होती हैं. और रही बात पश्चिम बंगाल में, एक जमाने में खुद भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को कहा था कि ममता दीदी साक्षात दुर्गा है. तो दुर्गा वाला जो समाज है वहां महिलाओं की एक खास तरह से इज्जत होती रही है बनिस्बत बाकी जो सोसाइटी है उनकी तुलना में. और उस सोसाइटी में अगर आरजी कर की घटना होती है और घटना अगर हो भी गई तो उसको डील कैसे किया जाए, असली बात ये थी. और कलकत्ता या पश्चिम बंगाल की महिलाओं के मर्म को सबसे ज़्यादा चोट उसी ने पहुंचाई. और अगर ये नेक टू नेक फाइट दिख रही है या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है रुझानों में, तो आप देखिए कि पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी 2021 में, आप देखेंगे कि जो टोटल वोटिंग हुई थी उसमें 4% पुरुष

0: मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत वोट दिया था और महिला मतदाताओं ने 10% का अंतर था महिला मतदाताओं का। अब ये देखने की बात है, ये तो पूरे नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से दिख रही है भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का तो समर्थन उनसे छीजा है।
1: थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा उमेश जी आपसे, नेक नेक तो बिल्कुल भी नहीं है अभी जैसा दिख रहा है बंगाल में। एंड behind the humdrum of all these assembly elections, let's not forget that there were by-elections also which were held this time in 7 assembly constituencies across 5 states, and the counting for them are also underway at the moment. And these include Davanagere South and Bagalkot assembly constituencies in Karnataka, Baramati and Rahuri constituencies in Maharashtra, Umret in Gujarat, and Dharmanagar in Tripura, and Koridang assembly constituency in Nagaland. And the BJP is leading in 4 constituencies, while the Congress and the Nationalist Congress Party, that is NCP, are leading in 1 seat each. In Davanagere South constituency, Srinivasa T. Dasa Kariyappa of the BJP is leading, while in the Dharmanagar, BJP's Jahar Chakraborty is maintaining a lead of more than 5,600 votes, while in Umret, Harshad Bhai Govind Bhai Parmar of the BJP is leading by more than 8,300 votes, and in Rahuri, Akshay Shivaji Rao Kardile of the BJP is in the lead. And in the Bagalkot constituency, the Congress candidate Umesh Hulappa Meti is leading by more than 10,000 votes, while Sunetra Ajit Pawar of Nationalist Congress Party is leading in Baramati constituency. Sanjeev Ji.
2: संजीव जी पर वापस आएंगे, लेकिन सुपर वीआईपी टैली पर अगर आपकी दिलचस्पी है तो आपको बता दें कि असम के जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्व शर्मा इस समय काफी बड़ी बढ़त पर चले गए हैं, लेकिन असम के जोरहाट से गौरव गोगोई इस समय 3,937 मतों से पीछे चल रहे हैं। केरल के धर्मदम से पेनुराई विजयन इस समय 5,008 वोट से पीछे चल रहे हैं। केरल के कांजिरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, 2,086 मतों से पीछे चल रहे हैं। केरल के निमोम से, जिसकी चर्चा कर रहे थे उमेश जी, राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु के पेरम्बूर से सी जोसेफ विजय यानी सुपरस्टार विजय टीवीके के इस समय बढ़त पर हैं। कोलाथुर से डीएमके के एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। चेपॉक थिरु वालिकेनी से डीएमके के उदय निधि स्टालिन भी इस समय पीछे चल रहे हैं। चूंकि विजय 2 जगह से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं तो तिरुचिरापल्ली ईस्ट से भी सी जोसेफ विजय टीवीके के इस समय बढ़त पर चल रहे हैं। इस समय पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें भवानीपुर से इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के अनुसार अब सुवेंदु अधिकारी पिछड़ गए हैं और ममता बनर्जी इस समय आगे चल रही हैं। नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं, साथ ही साथ थट्टन चावड़ी से एन रंगासामी, जो AINRC से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 3,447 मतों से आगे चल रहे हैं।
1: एब्सोल्युटली संजीव जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द बाई इलेक्शंस, बारामती, सुनेत्रा, अजीत पवार, वी ऑल ऑफ अस नो व्हाट हैपेंड सम टाइम बैक विद अजीत पवार। नाउ was this a foregone conclusion that his wife Sunetra Ajit Pawar would be, you know, kind of winning?
3: That's
1: or
3: right,
1: leading?
3: Because there was a sympathy factor, you know, involved, and you know, even the elder Mr. Sharad Pawar had also said that, you know, there should be no contest, but the Congress still put forth a contest there, yes, you know, for the sake of it. So this was more of a foregone conclusion. But very interesting, you know, that two chief ministers, now Mamata Banerjee has just inched forward,
1: yes,
3: you know, in Manipur.
1: Yes.
3: But earlier, you know, all the three chief ministers, you know, in Kerala, in Tamil Nadu and in West Bengal were trailing.
1: Absolutely.
3: But now Mamata Banerjee has just gone ahead. I don't know how much.
1: Still very early days, Sanjeev.
3: Yeah, still early days.
1: Yes.
3: But I must say that in West Bengal, all eyes are on West Bengal. And in West Bengal, what has played in favor of the BJP, which has been, you know, consistently fighting this Mamata Banerjee government, you know, just as Mamata Banerjee had fought the left to oust it, BJP has also been consistent in its fight against Mamata Banerjee. And the factors that have worked in its favor are basically, you know, they played on the victim, the infiltration card.
1: Yes.
3: It's played on the polarization card, and it's also played on the women's safety card. And despite the fact that it did not have a big leader

0: you know, leading the party in West Bengal.
1: One very important point, Sanjeevji, when we talk about the BJP kind of pushing in Bengal, the passion which was visible this time, the BJP gave it all, be it the Home Minister, the Prime Minister, they held extensive rallies and it was like it was a matter of life and death for them. So this time, the push that they gave with all the passion and everything, it was like that, you know, you just put in everything that you have, that almost like your life depended on that. So it's kind of manifesting. And of course, the Election Commission, which did a splendid job with, you know, the Central Paramilitary Forces and all, which have been doing great job. We saw that over the past few days as well, what happened over there.
0: So the BJP actually, from 2016, it had 3 seats. You know, it went on to 77. And this time, you know, the panic in Mamata Banerjee camp was very visible because of the special intensive revision that was, you know, mandatory in the sense that only Indian voters can vote. So the Election Commission, you know, Mamata Banerjee even went to the extent of Supreme Court, you know, challenging everything. And the panic was very much visible. And last time, if you recall, you know, BJP has a stronghold in North Bengal. So out of the 152 seats in the first phase, in the second phase, which is South Bengal, which used to be Mamata Banerjee's stronghold, you know, Calcutta and Diamond Harbour and all these areas. But from here to, you know, last time Mamata Banerjee had 124 seats out of these 142. So this time the panic was very much visible, you know, on the ground. And, you know, I've seen Mamata Banerjee, you know, reciting shlokas and, you know, Sanskrit mantras, you know, in all her rallies. So the panic was very much visible, you know.
2: जी हाँ, एक और आंकड़े पर आपका ध्यान चाहेंगे. इस समय जो इलेक्शन कमीशन का पोर्टल कह रहा है, जितने भी मतों की गिनती हुई है पश्चिम बंगाल में, उसमें अगर वोट शेयर की बात करें तो 44.04% वोट शेयर जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में 38.17% वोट शेयर नजर आ रहा है. और इस बीच सुवेंदु अधिकारी ने भी कह दिया है कि वो पश्चिम बंगाल फतह कर रहे हैं. वोट शेयर को कैसे देखते हैं?
3: सरकार भाजपा कर रहा है, मान के चलिए. आप लोग जो आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी 100 अप्रोक्स टीम्स. देखिए, भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा. ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रण बूथ है, उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला. क्रैक है.
1: राइट, उमेश जी, वी जस्ट हर्ड सुवेंदु अधिकारी से, आई मीन दैट दे वर मोस्टली, यू नो, द बीजेपी इज, एंड ऑल्सो द ट्रेंड्स काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग और पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ओनली. नाउ a more interesting point I would like to make here, or rather ask you, who would be the chief minister in West Bengal?
4: अभी ये तो
1: सुवेंदु अधिकारी, नो,
4: देखिए,
1: इट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट आई एम आस्किंग.
4: आपके सवाल पर सवाल का जवाब देने से पहले, जब आपने इस के पहले एक संजीव जी से पूछा था ना, वो सुनेत्रा पवार के बारे में, उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि उनको एक तरह से वॉक ओवर दिया गया है. जो शिवसेना ने वहां से कैंडिडेट दे करके, कांग्रेस ने दे करके हटा लिया था, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस गठबंधन ने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी थी, उसके बाद उसको वापस ले लिया था. तो वो तो ठीक है. अब आप बोल रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा. अभी मुझे लगता है कि
1: नाउ व्हाई आई एम आस्किंग यू, मैं क्यों ये पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी हमने सुवेंदु अधिकारी को सुना और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि सुवेंदु अधिकारी ने कितना काम किया है. बिग फेस फॉर द बीजेपी इन इन वेस्ट बंगाल, प्रोबेबली द बिगेस्ट एट द मोमेंट इफ यू लुक एट इट. इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सुवेंदु अधिकारी हमारे अगले मुख्यमंत्री, भाजपा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं?
4: मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अभी कम से कम 1 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगा परिदृश्य. और रही बात यह है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खासतौर पर आप हाल के कुछ वर्षों में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि शुभेंदु अधिकारी ही होंगे या हेमंत विश्व शर्मा ही होंगे या कौन होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल. आप देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पूरा, मतलब एकदम हिस्टोरिक विक्ट्री जिसको कहते हैं, ऐतिहासिक विजय मिली. शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव बने. तो इसलिए ये कहना कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, खासतौर पर आज की भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा मुश्किल,
1: खतरनाक हो सकता है. तो क्या हम कह सकते हैं कि टोपी में से

0: दूसरा खरगोश निकल सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए अच्छा फिर वो थोड़ा सा चर्चा की शुरुआत अभी बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि प्री है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वोटों पर ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है कि कैसे वोट मिल रहे हैं।
0: यू आर प्लेइंग वेरी सेफ उमेश जी, आई अंडरस्टैंड।
2: संजीव जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं।
3: भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया रही है वो चीफ मिनिस्टर पहले डिक्लेयर ही नहीं करते, अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर है तो उसको चलाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जैसे उमेश जी ने बोला कि शिवराज सिंह चौहान सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे लेकिन उनको भी हटा दिया गया, तो बीजेपी की प्रक्रिया पोस्ट पोली होती है, उसके बाद एक प्रक्रिया से जाएंगे ऑब्जर्वर।
2: तो संजीव जी आपका जो इशारा है, क्या असम में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड्स में तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही, क्या वहां चीफ मिनिस्टर में बदलाव देख रहे हैं आप?
3: मुझे वहां नहीं लग रहा, क्योंकि हिमंत बिस्व शर्मा अभी नहीं लग रहा, बाद में बीजेपी क्या करेगी, बिकॉज बीजेपी आपने देखा होगा उत्तराखंड में या कई अदर स्टेट बाकी स्टेट्स में भी चीफ मिनिस्टर बदलती है ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो चीफ मिनिस्टर की है वो ख़त्म हो जाए। जैसे आप केरला में देखेंगे तो केरला में चीफ मिनिस्टर एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी थी उनके खिलाफ, तो केरला में पहली बार लेफ्ट सरकार जो पूरे विश्व में पहली वेस्ट बंगाल पहली
1: केरल की सरकार
3: केरल में सरकार बनी थी 1957 में जी। तो आज अगर केरला में उनकी सरकार खत्म होती है, अगर कांग्रेस वहां यूडीएफ आती है, तो एक तरह से लेफ्ट का खात्मा होगा और लेफ्ट की अब कोई सरकार नहीं बचेगी पूरे देश में। तो जहां लेफ्ट ने मतलब एक हिस्ट्री बनाई थी कि पूरे विश्व में उन्होंने वो
2: जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेफ्ट का खात्मा होना तय नजर आ रहा है।
4: So, coming to Tamil Nadu, for the first time, the AIADMK has nosed ahead or inched ahead of the TVK, and DMK, as we all know, is languishing back. AIADMK inching forward, nosing ahead with 41 seats and the TVK at 39. This is the first time happening when the counting began this morning.
2: जी हाँ बिल्कुल, और जैसा कि तमिलनाडु पर भी चर्चा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के जो ताज़ा रुझान है, भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर आगे चल रही है। एक दिलचस्प आंकड़ा भी आ रहा है उमेश जी, बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे, मुस्लिम बहुल 111 सीटों में से 42 के रुझान आए हैं, जिसमें 17 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 23 पर तृणमूल कांग्रेस। यानी माना जा रहा था कि एक विशेष वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता है, लेकिन इन आंकड़ों से कहानी बदल रही है।
1: बिल्कुल, जो एग्जिट पोल में कई एग्जिट पोल ने यह बताया था कि करीब 10% मुस्लिम वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, तो अगर ये रुझान में जो दिख रहा है इसी तरह से अगर नतीजे आते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि एक तो वर्टिकल ध्रुवीकरण हुआ और उस ध्रुवीकरण में भी जो मुस्लिम वोट बैंक से 10% जो एग्जिट पोल ने अंदाज लगाया है, अनुमान लगाया है, वो वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 27% अल्पसंख्यक वोट है, मतलब जो उसमें मुस्लिम बहुल वोट है सबसे ज़्यादा माना जाता है और बड़ा गजिन भी है, बड़ा ठोस है, खासतौर पर 80 सीटों पर, तो मुझे लगता है कि इसको इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए।
2: जी हाँ बिल्कुल। अब समय हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको ताजा हाल बता दें, असम में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जो कांटे की लड़ाई इस समय तमिलनाडु में हम देख रहे हैं, वहां तमिलनाडु में स्थिति इस समय ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीवीके के फेवर में जा रही है, वहां पर 44 सीटों पर टीवीके आगे है, डीएमके 20 पर बढ़त बनाए हुए है, एआईएडीएमके 38 सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस 43 पर आगे है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस 58 पर आगे है, सीपीएम 29 पर आगे है और सीपीआई 10 पर आगे चल रही है। हिंदी और अंग्रेजी समाचार प्रसारित होंगे बारी बारी से और 10:10 में हम दोबारा जनादेश 2026 के साथ वापस आएंगे। सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सुनते रहिए आकाशवाणी।
5: जनादेश 2026।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 116 के रुझान मिल रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बढ़त बना ली है और वो 73 सीटों पर आगे है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 38 सीटों

0: पर आगे चल रहा है, अन्य चार सीटों पर आगे चल रहे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, यहां 21 मई को मतदान होगा।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
0: असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 88 के रुझान मिल रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भाजपा गठबंधन ने काफी बढ़त बना ली है और वो 69 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। केरलम में विधानसभा की 140 सीटों में से 112 के रुझान मिल रहे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने अच्छी बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वामपंथी गठबंधन एलडीएफ 32 सीटों पर आगे है। भाजपा गठबंधन भी 3 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 79 के रुझान मिले हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार सभी गठबंधनों में कांटे की टक्कर चल रही है। AIADMK गठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है। DMK गठबंधन 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अन्य 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 8 का रुझान मिला है। AINRC 5 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 1 सीट पर आगे है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदिले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनीत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। त्रिमुरा में धर्मनगर में भाजपा उम्मीदवार जाहोर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ये दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि तीर्थयात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया। होर्मुज में फंसे जहाज़ों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाज़ों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यूरोपीय देशों के नेता 2 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के लिए आर्मेनिया पहुंच रहे हैं। आज 30 से अधिक यूरोपीय नेता यूरोपीय राजनीतिक समुदाय सम्मेलन EPC में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देश भर से MSME, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Trends have started coming in from all 4 states and Puducherry Union Territory, which went to the polls. As per early trends, BJP has taken a surprise lead in West Bengal, while in Tamil Nadu, new entrant TVK, led by actor C. Joseph Vijay, is running neck to neck with opposition AIADMK. In Keralam, Congress-led UDF has secured a comfortable lead.

0: जनादेश 2026
1: असम केरलम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम
2: नमस्कार जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। ताजा रुझान क्या है, स्थिति कौन से बड़े उम्मीदवार इस समय बढ़त पर हैं, हम ये लेकर आकाशवाणी पर आते हैं। और इस समय हमारे साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ हैं को एंकर निशित कुमार और राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस समय जो सूरत हाल है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त पर नजर आ रही है, साथ ही साथ असम में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। लेकिन सबसे दिलचस्प टक्कर इस समय तमिलनाडु में देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर नई नवेली सुपरस्टार विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है। डीएमके और एआईडीएमके भी वहां पर जोरदार टक्कर में है, डीएमके पिछड़ती नजर आ रही है, एआईएडीएमके काफी आगे नजर आ रही है। पुदुचेरी में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, केरलम में यूडीएफ एलडीएफ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। उमेश जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका, और आपसे समझना चाहेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में स्थिति बनी है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही बनती नजर आ रही है आपको?
3: देखिए, जो एग्जिट पोल आमतौर पर, तो एग्जिट पोल को लेकर के इस बार जितना विवाद हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। तो एग्जिट पोल एक को छोड़ करके लगभग सभी एग्जिट पोल ने यही बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। तो उस लिहाज से कहें तो जो अभी रुझान दिख रहे हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही हैं जी।
4: इनफैक्ट उमेश जी, इट इज़ नॉट इवन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस इफ आई मे से सो। Because the expected lines was a neck and neck fight, which doesn't seem to be at the moment. That is one. And of course, who would have even thought that Mamata Banerjee, of course, she has inched ahead a bit, you know, in Bhavanipur, where Subhendu Adhikari is also kind of giving her a tough fight. So why I'm saying this is, one is that overall, the TMC tally going down substantially, that is. And the second one, the leader, Mamata Banerjee also struggling to get her foot in.
3: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं उस एक्सपेक्टेड लाइन पर कह रहा था जो एग्जिट पोल कह रहे थे। और दूसरी बात, एक चीज़ ये ध्यान में रखने की है कि ममता बनर्जी की जो यूएसपी रही है उनका स्ट्रगलिंग और फाइटर रोल, आप देखेंगे कि पूरे चुनाव में, खासतौर पर ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनका वो जो फाइटर जो रूप रहा है वो बड़ा कमज़ोर दिखा है, और बार बार वो झुंझलाती हुई दिखती नज़र। और एक चीज़ और है कि जो राजनेता ज़मीन पर होता है उसको अंदाज होता है कि जनता उसके प्रति किस तरह का रुख रख रही है और उसके लिए किस तरह से नतीजे आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका वो आभास था। और निश्चित तौर पर वो पिछले 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, राज्य की पूरी प्रशासन मशीनरी पर उनकी पकड़ है और बाकी सारी जानकारियां उनको मिल ही रही होंगी। तो जो ममता बनर्जी की यूएसपी रही है, फाइटर, योद्धा, लड़ाका, उन्होंने, ठीक है कि हर मुख्यमंत्री से लोग उम्मीद करते हैं कि विकास करेगा, और आज तो विकास का ही दौर है। एक जमाने में चंद्रशेखर कहा करते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, कि विकास से राजनीति नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे कि 2003 के बाद से बिजली, सड़क, पानी, बीएसपी पर राजनीति होने लगी है। ममता बनर्जी से भी इस तरह से उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी उनकी जो यूएसपी थी, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, जो उनका एक रूप रहा है, वो लड़ाका का रहा है, योद्धा का रहा है, वॉरियर का रहा है, जुझारू। वो जुझारूपन इस बार कम नजर आ रहा था, बल्कि झुंझलाया हुआ नजर आ रहा था। जिस तरह से वो उसमें जैसे स्ट्रांग रूम में जाकर के बैठ गई एक दिन 4 घंटे तक, वो कहीं ना कहीं वो
4: क्या आपको क्या क्या कारण लगता है, क्या इस बार वो कमिटमेंट क्यों नहीं है ममता बनर्जी की तरफ से? क्या एक ओवरऑल प्रेशर या 15 साल का एक फटीग फैक्टर भी आपको लगता है कि कुछ?
3: हाँ बिल्कुल, 15 साल तक अगर कोई भी दल सरकार में रहता है तो कुछ ना कुछ तो उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, और वो थी। लेकिन जो बार बार हम लोग कह रहे हैं और उसको रेखांकित किया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का समाज महिलाओं को लेकर के बाकी जो उत्तर भारत के समाज की स्थिति रही, हालांकि वहाँ भी अब चेंज हो रहा है, खासतौर पर शिक्षा के बढ़ते प्रसार के चलते, सूचना तकनीक के क्रांति के चलते, लेकिन पूर्वी भारत में आप देखेंगे कि महिलाओं को लेकर के खास तरह का

0: आदर भाव रहा है महिला एक इस तरह से, कभी वो पीड़ित और मतलब वो शासित टाइप का भाव नहीं रहा है वहाँ। वहाँ जिस तरह से आरजी कर की घटना हुई, ऐसा नहीं कि देश के किसी और इलाके में नहीं हो सकती है, हुई, लेकिन उसको लेकर के सरकार का जो रवैया रहा, जिस तरह से उसको डील किया गया, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि महिलाओं को चाहिए कि 9 बजे रात को के बाद घर से बाहर न निकले, और पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता रहा है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर के ऐसा नहीं रहा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, ऐसे इन सब राज्यों में ऐसा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब कारण रहे हैं और यही वजह है कि ये रुझानों में इस तरह के नतीजे दिख रहे हैं।
1: ताजा हाल बताएं तो पश्चिम बंगाल में इस समय भारतीय जनता पार्टी 92 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी 57 से अब 59 सीटों पर आगे चल रही है। केरलम में जो स्थिति बन रही है वो UDF इस समय बड़ी बढ़त पर नजर आ रहा है। असम में भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 24 सीटों पर आगे है। तमिलनाडु में इस समय TVK 70 सीटों पर आगे चल रही है, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर DMK और AIDMK के बीच ही कड़ी टक्कर है। AIDMK इस समय 60 सीटों पर आगे है, DMK प्लस 38 सीटों पर इस समय वहां पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। पुदुचेरी की स्थिति की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस 3 पर है, AINRC 11 पर आगे चल रही है, और जबकि TVK का वहां पर इस समय खाता नहीं खुला है। तो ये स्थिति है असम में 89 सीटों पर उमेश जी इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, यानी क्लीन मेजॉरिटी से भी काफी ज्यादा सीटें जीतती नजर आ रही है।
0: और होती है
1: जी, और चर्चा आप कर रहे थे कि भारतीय राजनीति में दूसरे मामा का प्रादुर्भाव हो चुका है।
0: बिल्कुल, भारतीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान जो हैं मामा के रूप में ख्यात रहे, लेकिन इस बार हेमंत विश्व शर्मा ने अपने को खुद मामा के रूप में स्थापित किया, और जिस तरह से चुनावी रैलियों में उनको समर्थन मिलता रहा, और वो भी जिस तरह से पूरा प्रोटोकॉल तोड़ करके, सुरक्षा घेरा तोड़ करके जनता के बीच में जाते रहे, तो निश्चित तौर पर वो मामा के रूप में तो स्थापित हुए ही हैं, और उसका नतीजा दिख भी रहा है नतीजों में, कि जहां आप सोचिए कि 126 विधानसभा सीटें हैं असम में, और वहां आप बता रहे थे कि 80 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो लगभग 2/3 मेजॉरिटी, और ये बहुत ही जबरदस्त मेजॉरिटी मानी जाती है, बहुत बड़ी जीत मानी जाती है।
1: तमिलनाडु में TVK 70 सीटों पर इस समय आगे है, AIDMK 60 पर बढ़त बनाए हुए है, और DMK के पास 38 के आसपास की बढ़त है। क्या वहां पर त्रिशंकु विधानसभा की आप स्थिति देख रहे हैं?
0: फिलहाल तो वही लग रहा है, लेकिन एक चीज ये है कि कुछ 1977 जैसा इतिहास दोहराया जा रहा है। आप जानते हैं कि AIDMK के संस्थापक MG रामचंद्रन 1972 तक DMK के साथ थे, जो स्टालिन के पिताजी थे करुणानिधि उनके साथ थे, लेकिन 1972 में उनसे थोड़ा मतभेद हुआ और उससे उन्होंने अलग पार्टी बनाई, और 1977 में चुनाव लड़ा तो भारी जीत हासिल की, 1977 में हासिल की, 80 में हासिल की, 87 तक वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो निश्चित तौर पर इसी तरह की राह पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी TVK जो है वो तमिलनाडु में दिख रही है आगे, और लेकिन जो हंग असेंबली है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पलानी सामी को थोड़ा अफसोस हो रहा होगा कि काश कि वो TVK के साथ समझौता कर लिए होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती थी, उसने कोशिश भी किया, तो शायद नतीजे और इनके फेवर में और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। आप जानते हैं कि जो TVK के संस्थापक हैं विजन, वो चाहते थे मुख्यमंत्री का पद, पलानी सामी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक का पद भी नहीं देना चाहते थे, तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने तो उनको भी पछाड़ दिया है। अभी जो मेरे सामने चुनाव आयोग का डाटा है उसकी वेबसाइट का, तो उसके हिसाब से तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है TVK। तो ये 1977 तमिलनाडु में दोहराया जा रहा है। हाँ, तब 1977 में MGR को स्पष्ट बहुमत मिला था, अभी रुझानों में ऐसा नहीं लग रहा है कि TVK स्पष्ट बहुमत हासिल कर पाएगी। जी,
2: मीनवाइल वी आर जॉइंड इन बाय Amrita Madhu Kaivalya, expert from Guwahati. Welcome, Amrita.
3: Thank you for having me.
2: Yeah, Amrita, we'd like to know about the ground situation there in Guwahati. Of course, we have seen the BJP and the NDA kind of making a clean sweep this time. So what, according to you, have been the defining factor so far as the this kind of a mandate for the BJP goes?
3: It was quite evident even earlier this year that

0: the BJP was in for another term. And the reason specifically for that is that the BJP has delivered on the ground in terms of infrastructural and developmental projects. There is a bit of anti-incumbency against perceptions around the Chief Minister of Assam. But to counter him, I don't think so. There was a very formidable effort from the opposition. You did not have the Congress coming up with a very strong fight against him. You had the Congress making Gaurav Gogoi the president just months ahead of the elections, and you have the Congress stitching an alliance with two other regional parties barely weeks ahead of the elections. So that sort of set them behind in this electoral race. And what you see today is pretty much the work that the BJP has been putting on in the ground in the last few in the last few years, I would say.
1: उमेश जी,
2: अमृता, मैं उमेश चतुर्वेदी बोल रहा हूँ. ये बताइए, आप तो असम से आती हैं, नमस्कार. किस तरह से ये तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को नेता बनाया गया और इसके बावजूद कांग्रेस फाइट करती हुई नहीं दिख रही है? आपने कहा कि फाइट कर रही है, लेकिन रुझान में जो नतीजे दिख रहे हैं उसमें तो फाइट नजर ही नहीं आ रही है. दो तिहाई से ज्यादा बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है. क्या कहना चाहेंगे?
0: जी नहीं, मैं यही कह रही थी कि जैसे कांग्रेस की जो एक चुनावी एक जो फाइट हो रही होनी चाहिए थी कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टीज को, वो नहीं हुई है. इलेक्टोरली अगर हम देखें, तीन लोकल पार्टीज एक साथ आई हैं और ये दो लोकल पार्टीज हमें लगा था कि कांग्रेस को मदद करेगी, इसलिए क्योंकि यही दो पार्टीज थी रीजनल पार्टीज जिनने लास्ट टाइम कांग्रेस जिन्होंने लास्ट 2021 इलेक्शंस में पोस्ट सीए आंदोलन के बाद भी कांग्रेस की काफी वोट्स मतलब ले ली थी अपनी तरफ. तो ये जो अलायंस इन्होंने स्टिच किया था और ये जो कांग्रेस की जो एक इलेक्टोरल एफर्ट रहती है, जैसे आप किसी भी चुनाव पे जाते हैं आपकी एफर्ट रहती है, मुझे लगता है उनमें काफी कमी रही है क्योंकि संगठन आपकी इतनी और कांग्रेस के जितने भी मतलब लीडरशिप है उन्होंने गौरव जी को असम में प्रेसिडेंट के तौर पे चुना जस्ट वीक्स बेली मंथ्स मतलब छह सात महीने पहले ही उनका नाम आया एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस यूनिट इन असम. एंड ये जो अलायंस हुई थी अलायंस भी कुछ हफ्तों पहले ही आई है. तो ये मुझे लगता है कि इन जो एक तैयारी होती है इलेक्शन के लिए वो उनको और ज्यादा करनी चाहिए थी, स्पेशली अगर आपके सामने एक ओपोनेंट जो है जो हिमंत बिश्व शर्मा की तरह एक ओपोनेंट है जो पॉलिटिकली बहुत ही एजाइल है, पॉलिटिकली बहुत अनफॉरगिविंग है. वो बहुत मतलब ही हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही इज ऑन द बॉल ऑल द टाइम, इन द सेंस कि आप वो किसी चीज मतलब ही डजंट लीव अ स्टोन अनटर्न, वो किसी तरीके से कुछ भी मतलब छोड़ते नहीं है, वो हर चीज को देखते हैं. अगर आप देखेंगे उनकी अलायंस तब आपको समझ में आएगी.
2: राहुल गांधी भी बहुत ज्यादा प्रचार करते हुए नहीं दिखे. राहुल गांधी भी
0: जी,
2: जबकि
0: राहुल गांधी
2: गौरव गोगोई उन्हीं के
0: दिखे.
2: जी जी,
0: गौरव जी के साथ
3: जी आपको थोड़े समय के लिए रोकेंगे. पश्चिम बंगाल की ताजा स्थिति इस समय यह है कि 166 सीटों के रुझान आ चुके हैं. 97 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 64 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 पर आगे है और सीपीएम 1 पर इस समय बढ़त बनाती नजर आ रही है. और हमारे साथ शुभनील जुड़ चुके हैं कोलकाता से. शुभनील, आपका बहुत बहुत स्वागत.
4: थैंक यू.
3: शुभनील जी, आज एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ मातम का भी माहौल होगा, लेकिन जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे कि ममता बनर्जी के शासन में बहुत ज्यादा हिंसा फैल रही है, साथ ही साथ उद्योगों का विकास नहीं हुआ, राज्य का जो विकास दर है वो बहुत नीचे रहा, महिलाओं का वो सशक्तिकरण नहीं हो सका जो बीजेपी चाहती है, और साथ ही साथ एक जो उनका बड़ा फैक्टर है डबल इंजन की सरकार, क्या ये सब आज फलीभूत होता नजर आ रहा है? क्योंकि लगभग शतक की तरफ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी. ठीक है कि यह शुरुआती रुझान है, कैसे देखते हैं आप?
4: रुझान जो है वो तो बीजेपी के पक्ष में ही दिख रहा है. सवाल ये होता है कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें जो सबसे सेड और अनसेड जो फैक्टर था वो था एसआईआर, और एसआईआर के मुद्दे पे यहाँ पे जो चुनाव हुआ वहां पे 27 लाख से 30 लाख ऐसे हैं जो अभी भी ट्राइब्यूनल में फंसे हुए हैं, तो उनको

0: फोर के ये चुनाव हुआ वो अपने आप में हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक इथोस है से नहीं जाता है, वो सबको लेके ही चुनाव होना चाहिए था। खैर जो भी चुनाव हुआ उसमें डेफिनेटली एक तो बात यह है कि 15 साल से ममता बनर्जी का सरकार था, उसके चलते एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो अभी दिख ही रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, हालांकि एक तो राउंड का ही रिजल्ट आया है, आगे देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक रुझान का जो सवाल है वो डेफिनेटली बीजेपी के पक्ष में है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पोलराइजेशन भी बीजेपी यहाँ पे एक पोलराइजेशन जो है हुआ है, तो ममता एंटी ममता पोलराइजेशन कह लीजिए या फिर कम्युनिटी के वाइज पोलराइजेशन कह लीजिए,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: पोलराइजेशन भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जहां तक अभी तक जहां जो लग रहा है।
1: कुछ महत्वपूर्ण सीटों के बारे में आपको बता दें तो असम के जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्वा सरमा काफी बड़ी बढ़त पर हैं, असम के जोरहट से गौरव गोगोई 3,937 मतों से पीछे चल रहे हैं, केरल के धर्मदम से पिनराई विजयन 15,570 मतों से पीछे चल रहे हैं, कांजुरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे 3,959 मतों से पीछे चल रहे हैं, कझाकूटम से बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन 4,907 मतों से पीछे चल रहे हैं, केरल के निमोम से जहां पर भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने की तरफ देख रही है राजीव चंद्रशेखर 6,604 मतों से आगे चल रहे हैं, पेरम्बूर से जो नई नवेली पार्टी है टीवी के उसके चीफ सी जोसेफ विजय बढ़त पर चल रहे हैं, लेकिन दो बड़े विधानसभा क्षेत्र जहां से चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं तमिलनाडु के कोलाथूर से एमके स्टालिन डीएमके के फेस पीछे चल रहे हैं, चेपॉक थिरु वलिकेनी से डीएमके के उदयनिधि स्टालिन भी पीछे चल रहे हैं, ईडापड़ी से एआईएडीएमके के ईडापड़ी पलनी स्वामी बढ़त पर चल रहे हैं, और अवनाशी से तमिलनाडु का एक और विधानसभा अवनाशी जहां पर डॉक्टर एल मुर्गन इस समय पिछड़ते नजर आ रहे हैं 2,853 मतों से, क्योंकि विजय जो हैं वो दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो तिरुचिरापल्ली ईस्ट से वो बड़ी बढ़त पर हैं, सत्तूर से नायनार जो बीजेपी के हैं वो इस समय पीछे चल रहे हैं, भवानीपुर जिस पर सबकी नजरें हैं शुभेंदु अधिकारी इस समय 1,670 मतों से पीछे चल रहे हैं, ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की चीफ हैं और वहां की मुख्यमंत्री हैं इलेक्शन कमीशन पोर्टल के अनुसार 3,666 मतों से वो आगे चल रही हैं, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बढ़त पर हैं जबकि थाटन चावड़ी से एन रंगासामी इस समय 3,447 वोट से आगे चल रहे हैं।
2: एंड इफ आई मे ऐड टू दैट आनंद द यूडीएफ हैज ऑलमोस्ट क्रॉस द हाफ वे मार्क इन केरलम ऑलमोस्ट अप्रोचिंग ऑफ कोर्स दीज आर ट्रेंड्स एंड नॉट रिजल्ट्स शोभनिल इफ आई कैन आस्क यू समथिंग दिस इज निशित कुमार दिस साइड शोभनिल कैन यू हियर मी Shovanil. Now, talking of Bengal, this time, as we saw, violence has been the hallmark of, when it comes to Bengal elections. We have seen that, in 2016, be it 2021, even earlier, kind of. Now, this time, with the kind of tightening of screws that the Election Commission and the central leadership has done, and the SIR and other things, of course, and we have seen beyond the optics, if I may ask you, which Mamata Banerjee had her moment in the Supreme Court here. So far as those things are concerned. So how do you see, as in we have also seen, that hordes of people from West Bengal have thronged to the place to cast their votes this time, which was not the case earlier. We have seen, reports or heard of reports like people getting intimidated or threatened for not coming out and voting. So what was the change this time when you saw there on the ground?
1: Shovanil, is par thodi der mein aapke paas wapas lautte hain.
3: जनादेश
1: 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गिनती चल रही है और आकाशवाणी आपके लिए लाया है विशेष कार्यक्रम। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ शुभनील और मधु कैवल्य भी जुड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस राज्य में बढ़त पर है और कुछ हम सीटों के बारे में विवरण भी दे रहे हैं कि जो बड़ी सीटें हैं वहां पर किस तरीके से कौन उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए है।

0: प्रमुख सीटों के बारे में आपको बताएं तो मठभंगा जो पश्चिम बंगाल की सुरक्षित सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के निशित प्रमाणिक आगे चल रहे हैं। दिनहाटा से तृणमूल कांग्रेस के उदयन गुहा पीछे हैं। तूफानगंज से भाजपा उम्मीदवार मालती रवा रॉय पीछे हैं। बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पीछे हैं। इसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी भी पिछड़ रहे हैं। बागड़ा सुरक्षित सीट से भाजपा उम्मीदवार सोमा ठाकुर ने बढ़त बना रखी है। भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पीछे हैं। यहां तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से बढ़त बनाए हुए हैं। राष्ट्र बिहारी सीट से भाजपा के स्वप्न दास गुप्ता आगे हैं। श्यामपुकुर से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शशि पांजा पीछे हैं। शिवपुर से भाजपा उम्मीदवार रुद्रनील घोष ने बढ़त बना ली है। मोयना से भाजपा के अशोक डिंडा पीछे चल रहे हैं, अशोक डिंडा जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं। एग्रा से भाजपा उम्मीदवार दिवेंदु अधिकारी आगे हैं, जबकि आसनसोल दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के अग्निमित्र पॉल आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ सुशील तिवारी जो आकाशवाणी संवाददाता है वो भी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, चूंकि आप चेन्नई में हैं और वहां पर तो एक दूसरे तरह की राजनीति के रुझान हमें नजर आ रहे हैं, चूंकि जो ताजा रुझान है उसमें टीवी के जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है 97 सीटों पर इस समय आगे पहुंच गई है। 214 के रुझान आए हैं। AIADMK 63 पर आगे है और सत्तारूढ़ DMK 37 पर आगे है और उसकी सहयोगी कांग्रेस 3 पर आगे चल रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि तमिलनाडु में आज जैसे जैसे शाम ढलेगी वहां राजनीति का नया सवेरा होने वाला है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक जबरदस्त परिवर्तन दिखा है और किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। लोगों ने ये जरूर शुरू में जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने ये जरूर माना था कि जो विजय की पार्टी है TVC वो थोड़ा बहुत अपने वोट जो है वो वोट परसेंट ले सकती है, वोट शेयर ले सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सीटें उसे मिलेंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तो सनसनी जिसे कहेंगे, आज की सनसनी तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की, वो एक जोसेफ विजय हैं जो कि खुद दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं जहां से वो लड़ रहे थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो MK स्टालिन जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सीट से पीछे चल रहे थे। उनके छोटे भाई, उनके बेटे और डिप्टी CM उदय निधि जो है वो भी अपनी सीट से, जो चेपक सीट है चेन्नई की, वहां से पीछे चल रहे हैं। और चेन्नई में एक तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है DMK का। स्ट्रॉन्ग होल्ड था DMK का, पिछली बार पार्टी ने अधिकांश सीटें जीती थी और इस वक्त सभी सीटों पर TVK जो है उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और एक तरीके से कहा जाए कि जो सिनेमा, जो एक आम तौर पर मनोरंजन का माध्यम है, वो तमिलनाडु में राजनीति में प्रवेश का एक बड़ा माध्यम है, एक बार फिर से साबित हुआ है।
2: सुशील, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द TVK फैक्टर हियर। ऑफ कोर्स नाउ विद ऑलमोस्ट द पार्टी नियरिंग 100 सीट्स नाउ एंड वी सी दैट द DMK एज वेल एज द AIADMK लैंग्विशिंग फार बिहाइंड AIADMK एट 63 and the DMK at 37, the incumbent party. So can we safely say, or rather, you know, it's very evident even now that the TVK or Vijay, he could be, you know, the next leader in Tamil Nadu. And of course, I'm talking of the chief ministerial candidate here. Your say on that?
1: Definitely, because although it is still the leads, the trends, which will convert into the seats in maybe in the later evening, because it is a multi-cornered elections, so the counting may end till the evening or late night at some places. But overall, it seems that Vijay is the big contender for the chief ministership. He will capture the Fort St. George, as they say in the political terms here. But the party will, as per the numbers right now, can fall short of, little short of the majority, which is 118, because of the 234-seated assembly. So it is 118. So they may fall short of some seats.
2: Right, Sushil.
1: Get the majority.
2: Right, Sushil. In which case it becomes a bit more, complex. You know, if it falls short of the 118 mark, as you mentioned.

0: also some little small parties also which are which can change to change sides and go to their fold also. We have our Chennai correspondent Joy with us. She will throw more light on these equations.
1: Hello.
2: Right. जी, Joy, yeah. स्वागत See, है आपका the, और yeah, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जी बताएं.
1: Yeah, the trends show that TVK is securing the whole state of Tamil Nadu, and it is the new gen which has been contributing to that factor. Actually, the Chennai Super Kings cricket quote, I would like to say, it says that whistle podu, and the symbol of TVK is whistle. So I think that it has added some credibility, you know, like the game of cricket in elections. Because as far as the state governance is concerned, there is no major issue which is coming in the factor of DMK. And, you know, like anti-incumbency, we also can't say, because of the star status, the place where Jayalalitha was standing with a great charisma, that charisma has been taken over by Vijay, that we can say.
2: जी बिल्कुल. और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने श्रोताओं को टीवीके के बारे में बता दें. टीवीके यानी तमिलागा वेट्री कजगम, जिसकी स्थापना सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने की थी. 2 फरवरी 2024 को पार्टी बनी थी. पार्टी का मुख्य मकसद तमिलनाडु और पुदुचेरी में राजनीतिक लड़ाई लड़ना था. तमिलागा वेट्री कजगम का अर्थ होता है तमिलनाडु विजय पार्टी. और हमारे साथ यहाँ पर जफर इस्लाम जुड़ चुके हैं, और जफर इस्लाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और जो बताएंगे कि किस तरीके से इस समय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा.
3: सर, जो शुरुआती रुझान है उसको किस आधार पर आप देखते हैं?
4: देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो वेस्ट बंगाल में जनता की आवाज़, जो परिवर्तन चाहती थी जनता, वो उसकी झलक जो है अभी जो रुझान है उसमें दिख रही है. हमने बराबर कहा है, जनता चाहती है वहाँ परिवर्तन, परिवर्तन होकर रहेगा. जो लोगों का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन में है, उनके गवर्नेंस मॉडल पे है, और इसलिए जनता चाहती है कि वैसी सरकार हो जो जनता के हित में काम करे, प्रदेश के हित में काम करे, उसके उत्थान के लिए काम करे. और इसीलिए जनता जो है बिल्कुल मन बना चुकी थी कि वहाँ पर एक बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन आके रहेगा. भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और वहाँ एक अच्छी जो जनता के लिए सरकार देगी.
5: राइट जॉय, इफ यू आर स्टिल विद अस. ओके ओके, she is not with us, it seems. So Umesh ji, as Joy and others were also speaking some time back in the TVK factor we were talking about, now she was also talking about the cinema factor in Tamil Nadu politics. It has always been there, be it the Karunanidhi factor, MGR, Jayalalitha, so on and so forth. You know, we have been seeing this since decades now. Now with this Vijay factor coming in, how much of the new generation, kind of the Gen Z as we call, and others, the younger people, are attracted? And do you also see that the older population, they would have also kind of gone with him this time?
6: बिल्कुल. और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ अपने फिल्म जो अभिनेता होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उनकी मूर्ति बना करके पूजा भी होती है. उसमें से एक अभिनेत्री भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हैं, वो खुशबू सुंदर. लेकिन आप देखिए कि वो किसके साथ जनता जाना चाहती है और लोग जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर टीवीके के साथ, जिसकी व्याख्या अभी थोड़ी देर पहले पूरी तरह से हिंदी भाषी और बाकी देश के लोगों के लिए आनंद ने बताया कि उस पार्टी का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो विजय प्राप्त कर रही है. जेएन जी, जिसके अभी हाल में देखेंगे कि नेपाल के चुनाव में उसका असर दिखा कि एक काठमांडू शहर का 35 साल का मेयर अचानक से देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, बालन शाह, तो कुछ कुछ ऐसा है. लेकिन ये अच्छा, एक चीज़ और भी है कि तमिलनाडु की राजनीति में आप देखेंगे कि जनता एक तरह से फैनेटिक अंदाज में सपोर्ट करती है, बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दिखता है. बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि राजनीति करने वाले लोगों को ही, राजनेता को ही जनता पसंद करती है. वहाँ हीरो फिल्मी दुनिया के जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. लेकिन उत्तर भारत में भी 1984 के चुनाव में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद के दिनों में आप देखेंगे कि वो क्रेज उत्तर भारत भारत में डाउन हो गया। आप देखिए पश्चिम बंगाल

0: चुनाव में भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन किस तरह से, ज्यादातर लोग तो टीएमसी के साथ ही हैं। तो ये एक भारत विविधताओं का देश है और उसमें एक तरह से चीजें हैं, लेकिन एक चीज है जो इस तमिलनाडु के चुनाव के नतीजों में देखने की है, जो परिसीमन की बात हो रही थी अभी लोकसभा चुनाव सीटों को, और जिस तरह से जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की अपने यहाँ व्यवस्था है, और उसका सबसे बड़ा विरोध एम के स्टालिन कर रहे थे, उन्होंने इसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले रखी थी। उनका कहना था कि हमने परिवार नियोजन को लागू किया, मतलब हमने, उन्होंने पूरे दक्षिण भारत के राज्यों को जोड़ने की कोशिश की थी, क्या इसका हम खामियाजा चुकाएंगे कि हमारी सीटें आनुपातिक रूप से कम हो जाएं। तो मुझे लगता है कि वो एक जमीनी समस्या, अपने ढंग से जमीनी समस्या को उठा रहे थे, जनता ने उसे जमीनी मानने से इनकार कर दिया।
1: दक्षिण भारत में अमूमन सफेद कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन से आधारित जो कानून अभी संसद के विशेष सत्र में लाया गया था, काले कपड़े पहनकर आए थे एमके स्टालिन और उनके सांसद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें आप देखिए कि किस तरह से जनता ने उनको नकारा है। तो आने वाले दिनों में इसका भी एक बड़ा असर पड़ेगा, जो इस मुद्दे पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं बन रहे हैं, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन रहे हैं, और जिस तरह से स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, हालांकि आपने सुशील से पूछा तो बोल रहे थे कि छोटी पार्टियां बहुत ज्यादा नहीं जीत पाई हैं, जिस तरह से रुझान दिख रहा है नहीं जीतती नजर आ रही है। पीएम के 6 सीट और 3 और लोग जीत रहे हैं, तो ये 9 लोग मिल करके भी सरकार, जिस तरह से टीबीके को बहुमत मिल रहा है, उसको कम से कम 15-18 सीटों की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं मिल पाएगा। तो मुझे किसी ने लगता है कि किसी न किसी बड़ी पार्टी से, और वो स्वाभाविक रूप से बड़ी पार्टी AIDMK ही हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, जिस तरह से एमके स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करने की कोशिश की थी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश करेगी, लेकिन कई सारे मुद्दे प्रभावित होंगे। एक चीज और देखिए कि दक्षिण भारत के राज्यों को इस बात का बड़ा गर्व रहा है कि वो उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में ज्यादा विकास किए हैं, तो ज्यादा विकास का मतलब तो ये होना चाहिए कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, जेन जी को उनके पीछे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि ऐसा जो रुझान में नतीजे दिख रहे हैं ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, भारत को समझने के लिए एक नजरिए से आप नहीं समझ सकते हैं, एक राज्य में कुछ और मुद्दे प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे राज्य में कुछ और मुद्दे होते हैं, लेकिन एक चीज है, असम और पश्चिम बंगाल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दोनों जगह पर मामला उछलता रहा है घुसपैठ का, अवैध जो घुसपैठिए होते हैं, वैसे तो घुसपैठ अवैध ही होती है, तो वो मामला सबसे ज्यादा आप जानते हैं असम में उठता रहा है। असम में एक नई पार्टी बनी थी 1985 में, असम गण परिषद, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसने सरकार भी चलाई,
2: प्रफुल्ल महंता
0: जी, हॉस्टल से सीधे लोग गए थे दिसपुर में शपथ लेने के लिए, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से, तो वो मामला वहां बहुत, वही मामला पश्चिम बंगाल में है। तो कम से कम भारत के दो राज्यों में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और चुनाव नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। जी,
1: पश्चिम बंगाल से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, भवानीपुर से एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ गए हैं, इस समय 6380 मत उन्हें प्राप्त होते नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी के पास 4822 मत हैं, जो अभी की काउंटिंग है उस हिसाब से। कुछ और हाई प्रोफाइल सीट्स पर हम नजर डाल लेते हैं, तो जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्व शर्मा लगातार आगे बने हुए हैं, लेकिन जोरहट से गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के फेस माने जा रहे थे, बड़ी संख्या से पीछे चले गए हैं। पिनराई विजयन, एक और बड़ा नाम जो केरल के धर्मदम से हैं, वो भी पिछड़ रहे हैं। कांजिरपल्ली से भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट जॉर्ज कुरियन पिछड़ रहे हैं, जबकि कझुकटम से वी मुरलीधरन भारतीय जनता पार्टी के वो भी पीछे चल रहे हैं। नेमोम से राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं और पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट, दो ऐसी सीटें जहां पर सी जोसेफ विजय टीवीके के चीफ हैं, वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जोरदार संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है, और जो भवानीपुर सीट है वहां से लगातार हम देख रहे हैं कि आईपीएल मैच की तरह वहां पर रोमांच बना हुआ है, कभी शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ जाते हैं तो कभी ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। असम में बीजेपी समय 79 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 24 पर आगे चल रही है, जबकि पुदुचेरी में AINRC 7 पर आगे है, बीजेपी 3 पर आगे है, DMK 2 पर आगे है। तमिलनाडु में 100 यानी शतक जड़ दिया है रुझानों में, कम से कम टीवीके ने, DMK 38 पर आगे है, AIADM

0: दोबारा लौटेंगे। कल्याण लाहा आकाशवाणी संवाददाता कोलकाता से जुड़ गए हैं। कल्याण, वहां पर भवानीपुर में जोरदार संघर्ष है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने के बेहद करीब है, बहुत संक्षेप में।
1: हेलो, देखिए जैसे अभी का ट्रेनिंग अभी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुत सारे सीट्स में अभी आगे चल रहा है, और भवानीपुर में कांटे का टक्कर अभी चल रहा है, नेक टू नेक फाइट हो रहा है, बट बीजेपी इज लीडिंग इन मेनी इंपॉर्टेंट सीट्स लाइक इन पानीहाटी, इन नॉर्थ बंगाल दीनहाटा, एंड इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट बीजेपी कैंडिडेट्स इन कोलकाता प्राइम सीट दे आर लीडिंग एट दिस मोमेंट।
0: जी बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। अगर वहां की स्थिति बताएं तो उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं, बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुल्लप्पा मोती आगे हैं, दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दस करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं, राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदीले आगे हैं, बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजीत पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजीत पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और धर्मनगर में भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं।
2: Yeah, Umesh, you know, it's almost nearing 11 a.m. now. Earlier than expected, we would think that probably by noon or by 1 p.m. or so, the picture would get more clearer. But it seems that even at 11 a.m., just 3 hours into the counting or more than that, the picture is getting more and more clearer. And probably if the trend continues, we see this thing standing.
3: अब बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, जैसा कि अभी अतीत का इतिहास जो है, अभी अतीत के जो अनुभव हैं उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं और उस तरह से आप जानते हैं, आज एक खास तौर पर आजकल हालिया कुछ चुनाव में आप देखेंगे कि जनता क्लियर मैंडेट दे रही है, हालांकि तमिलनाडु में ऐसा नहीं दिख रहा है, फिर भी वो लगभग क्लियर मैंडेट की ओर जाता हुआ दिख रहा है तमिलनाडु, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर पढ़ने वाला है जो अभी के रुझान है। जी,
0: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन पर ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता दें कि असम में जो ताजा हाल है, भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 25 पर आगे है, केरल में जो इस समय स्थिति है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 61 पर आगे है, सीपीएम 29 पर आगे चल रही है, सीपीआई 9 पर आगे है, पुद्दुचेरी में इस समय भारतीय जनता पार्टी 3 पर आगे है, एआईएनआरसी 8 पर आगे है, डीएमके 2 पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 141 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाए हुए है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 88 सीटों पर आगे चल रही है, सीपीएम 1 पर वहां पर आगे है। तमिलनाडु में बात करें तो टीवीके ने सबको चौंकाते हुए 106 सीट पर बड़ी बढ़त ले ली है, सत्तारूढ़ डीएमके 35 पर आगे है, जबकि एआईएडीएमके इस समय 68 सीटों पर आगे चल रही है। तो अंग्रेजी और हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी पर, लेकिन 11:10 पर जनादेश 2026 के साथ हम वापस आएंगे और चर्चा जारी रहेगी। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: जनादेश 2026।
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे निकल गई है। अब तक के रुझानों में विधानसभा की 293 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 69 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 6 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा के पास। कल्याण, मतगणना के 3 घंटे बीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल में ताजा स्थिति क्या है?
1: देखिए कनकलता, अभी बहुत सारे सीटों में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 100 से ज्यादा सीटों में अभी

0: बीजेपी लीड में है और टीएमसी बहुत पीछे पड़ा हुआ है, और भवानीपुर जो इम्पोर्टेंट सीट है जिसमें चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रही है, उसमें शुभेंदु अधिकारी लीडिंग में है, और शुभेंदु अधिकारी दूसरे सीट में जो लड़ रहे हैं अभी नंदीग्राम में, दोनों ही सीटों में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का भी लीड में चल रहा है, और पूर्व वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है जो टीएमसी का घर है उसमें भी बहुत सारे सीटों में बीजेपी आगे चल रहा है, और बांकुड़ा पुरुलिया में भी कांटे का टक्कर चल रहा है, और तीनहाटा जो एक इम्पोर्टेंट सीट है उसमें बीजेपी कैंडिडेट अभी आगे चल रहा है।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। असम में विधानसभा की 126 सीटों के रुझानों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। भाजपा 76 सीटों पर आगे है जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं। असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे हैं जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर पीछे चल रहे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 94 सीटों पर आगे है जबकि सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन एलडीएफ केवल 44 सीटों पर आगे चल रहा है। एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है। मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन धर्मादम सीट पर पीछे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों में से 218 सीटों के रुझान मिले हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवे के 100 सीटों पर बढ़त के साथ अन्य दलों से आगे चल रही है। एआईएडीएमके 64 सीटों पर आगे है जबकि सत्तारूढ़ डीएमके 37 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 18 सीटों के रुझान मिले हैं। एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर आगे है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर और डीएमके 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी चल रही है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेथी आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देशभर से एमएसएमई, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Kerala and the Union Territory of Puducherry. And to discuss these trends and the implications for the state politics in the coming days, we have with us two very distinguished panelists with us. We have senior journalist Umesh Chaturvedi with us and political analyst Ashok Tandon. Mr. Tandon and Mr. Chaturvedi, welcome to the program.
1: Thank you.
0: Let's before we begin the program, let's quickly have a look at what the trends are at the moment. Before we do that, so let's look at the trends. As in Assam, the trends are showing that the BJP at the moment, which is in which is the ruling party right now in Assam, it is leading on 77 seats. It's one of its alliance partners, AGP, is leading on 10 seats. The another alliance partner of the BJP or the party that is in NDA, that is BPF, Bodoland People's Front, it is leading on 10 seats. The Indian National Congress is leading on 25. Its alliance partner, Riojar Dal, is leading on one seat. UPPL is leading on one seat. And Badruddin Ajmal's AIUDF is leading on two seats. Vishal.
2: जी, और पश्चिम बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है इस चुनाव में, और यहाँ का चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है, देश की राजनीति को भी और एक दिशा भी देने वाला है। यहाँ पश्चिम बंगाल के जो हमारे पास ताज़ा रुझान इस समय मौजूद हैं, जो मिल रहे हैं हमको, वो ये बता रहे हैं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 152 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।
0: एंड लेट्स गो ऑन टू तमिलनाडु। इन तमिलनाडु द रूलिंग डीएमके इज एट द मोमेंट लीडिंग ऑन 38 सीट्स। Its alliance partner Congress is leading on 4. Another alliance partner DMDK is leading on 1. Whereas the AIADMK, which is right now in alliance with the BJP and part of the NDA, is leading on 69. That's AIADMK leading on 69 seats. BJP is leading on 2 seats. CPI is leading on 3 seats. CPM is leading on 2 seats. The PMK is leading on 7. PTM is leading on 6. And most importantly, actor Vijay's TVK party, which was formed just 2 years ago and is making its electoral debut in these elections, that party is leading on 105 seats. Another party, VCK, is leading on one seat.
2: जी, उमेश चतुर्वेदी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। तमिलनाडु, ये जो पश्चिम बंगाल के जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं, वो एक तरीके से दिख रहा है कि एग्जिट पोल जो आए और उनके नतीजे जो आए, वो लगभग सही साबित होते दिख रहे हैं। भाजपा ने बहुत अच्छी बढ़त वहाँ पर बना ली है।
3: बिल्कुल, अब तो रुझानों में वो बहुमत प्राप्त कर चुकी है, तो ये तो बड़ी बात है कि आप देखिए कि जो पार्टी 2011 में बमुश्किल 4% वोट हासिल करती है, 2016 में वो 10% वोट, 10% से कुछ ज़्यादा वोट हासिल करती है, 2021 में वही पार्टी आते आते एकदम से उछाल लेती है और 38%, और जो ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, उस समय वो करीब 48% वोट पाई थी। अब देखिए कि स्थिति पलट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब तक के जो रुझानों में जो वोट परसेंट जो चुनाव आयोग का डाटा दिखा रहा है, 44% से कुछ ज़्यादा ही वोट हासिल कर चुकी है, और रुझानों में तो आगे बढ़ती हुई दिख ही रही है, बहुमत प्राप्त कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो 77 सीटें हासिल की थी, उसमें से उसके अलावा उसने 38 सीटों पर वो 5% के वोटों के मार्जिन से हारी थी, और करीब 43 सीटें ऐसी थी जिस पर 10% के मार्जिन से वो हारी थी। तो वो क्या है कि इन सीटों पर ये जो 38 और 43 जो करीब 81 सीटें हैं, इन 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, और जो 77 सीटें उसके खाते में पहले से थी, उसको वो तो मान के चली रही थी, क्योंकि वो एक कहिए कि अलग तरह के सिचुएशन में उसने इस तरह की जीत हासिल की थी, तो मान के चल रही थी, तो उसने पूरा काम किया। और जो 80 सीटें वहां मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं, उन 80 सीटों में से भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी सीटों पर वो आगे बढ़त बनाई हुई है। तो ये कहना कि ममता बनर्जी के पक्ष में एक अल्पसंख्यक वर्ग का पोलराइजेशन था, वो भी इस धारणा को तोड़ता हुआ नजर आता है। तो ये एक तरह से देखेंगे तो एग्जिट पोल की ओर से जो एक्सपेक्टेड था, उसी लाइन पर वहाँ के चुनाव नतीजे दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल के।
0: Mr. Tandon, I'll come to you now. You know, if you look at all the five states, union territories where the election is being held,

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ ही अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिस प्रकार की विकास की प्यास और आवश्यकता पूर्वोत्तर को थी, उसी को देखते हुए आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक महिला विरोधी तुष्टिकरण वाली सरकार को बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया है और मोदी जी की सरकार को लाने के लिए वो वहाँ पे तत्पर है। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है, इसका मतलब हम सरकार जब चलाते भी हैं तो अनलाइक DMK, अनलाइक लेफ्ट पार्टी या अनलाइक TMC, हमारी सरकार डिलीवर करती है, इसलिए तीसरी बार भी हमारी सरकार बनती है।
1: जी दीपेंद्र, हमारे संवाददाता BJP प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से बात करते हुए, उमेश जी यहाँ पे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल को एक लास्ट फ्रंटियर के रूप में देखा जाता था अभी तक, कि उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में बात करें तो भाजपा अपना परचम लहरा चुकी थी। ये एक ऐसा मात्र राज्य बचा था जहाँ पर कि BJP भाजपा बहुत दिनों से और बहुत सालों से मेहनत कर रही थी। जनसंघ के संस्थापक जो हैं शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका गृह राज्य माना जाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा का सत्ता में आना, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है और राष्ट्रीय राजनीति पे इसके क्या असर आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं?
2: देखिए, माना नहीं जाता है, उन्हीं का गृह राज्य है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। वहीं कलकत्ता के रहने वाले थे, उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि 1967 में जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो संयुक्त विपक्ष के ने चुनाव लड़ा था, तो उसमें 24 परगना जिले की गोसाबा सीट से भारतीय जनसंघ के गोपाल चंद्र मंडल जीते थे। पहली बार वहाँ जीती थी भारतीय जनता पार्टी 1967 में, तब उसका नाम भारतीय जनसंघ होता था। 58 सीटें लड़ा था भारतीय जनसंघ उस बार, लेकिन एक सीट पर जीत मिली थी। तो निश्चित तौर पर जिस राज्य के निवासी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ के संस्थापक, वहाँ जीत के एक अपने मायने हैं। दूसरी क्या है कि एक चीज़ जो हम पूरी चर्चा में छोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल हल्के नहीं बल्कि नक्सलवाद के उभार के बाद से देखेंगे तो चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़े बहुत नहीं, 58 लोगों की मृत्यु हुई थी ऑन द रिकॉर्ड, मारे गए थे चुनावी हिंसा में। जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसमें 75 लोग मारे गए थे। ये पहला चुनाव है जिसमें एक भी मौत नहीं हुई है, ये बड़ी बात है, इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग आजकल बड़ा सवालों के घेरे में रखा गया है कि उसने एक तरह से 2.5 लाख केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और BSF और ITBP और CISF के जवानों को उतार करके उसने चुनाव कराया, और हम भूल जाते हैं कि KJ राव 2005 में चुनाव आयोग के एडवाइजर थे और उन्होंने अगर इस तरह से कड़ाई नहीं की होती तो शायद बिहार में भी, जो वो भी चुनावी हिंसा और बूथ लूट के लिए जाना जाता था, वहाँ पारदर्शी और स्वच्छ मतदान नहीं हो सकता था। तो इन जो पश्चिम बंगाल में जीत जो है ना, पूरब का द्वार है पश्चिम बंगाल, वहाँ देखिए असम में जीत चुकी है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरुणाचल में है, त्रिपुरा में है, अब वहाँ एक पश्चिम बंगाल एक प्रश्न प्रदेश बन के रहा था, तो अब प्रश्न प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने हल कर लिया है। चुनाव आयोग को भी हम लोगों को बधाई देनी चाहिए कि उसने हिंसा मुक्त चुनाव कराया है, बहुत छिटपुट हिंसा हुई है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की ओर से एक मैसेज भी आया है, बाकी 4 राज्यों में चुनावी विजय यात्रा पर रोक चुनाव आयोग ने नहीं लगाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगा दिया है। यह देखते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उस पर एक जो आरोप लग रहा है, तो मुझे लगता है कि चुनावी हिंसा को रोकने के लिए वो बड़ी पूरी तरह से मुस्तैद है। और पश्चिम बंगाल की जीत जो है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो अब अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं, या उसके ठीक अगले साल फिर एक साल बाद राष्ट्रीय चुनाव होंगे, तो इन चुनावों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा, उत्साह का काम करेगा। और हर चुनाव में जब जीत मिलती है किसी भी पार्टी को तो उत्साहित होती है, उत्साहित तो कांग्रेस भी होगी क्योंकि UDF को जीत मिल रही है केरल में, तो ये इस तरह से भी देखा जाना चाहिए।
3: जी अशोक जी,
4: मैं इसमें थोड़ा खेल प्रेमियों के लिए एक रोचक जानकारी देना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, टेनिस, इनके कई लोकप्रिय खिलाड़ियों को टिकट

0: दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को टिकट दिया था, और इसी तरह अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर शिव शंकर पॉल को मैदान में उतारा, और आगे देखें तो जो टीएमसी ने जो स्वपन बर्मन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको उतारा, इसी तरह से और बहुत नाम
1: जी,
0: है
1: जी, अशोक जी, वी हैव विद अस बीजेपी स्पोक्सपर्सन तुहिन सिन्हा हैज जॉइंड अस ऑन लाइन राइट नाउ। मिस्टर सिन्हा, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026। सर, व्हाट आर योर इनिशियल यू नो कमेंट्स ऑन योर थॉट्स ऑन द ट्रेंड्स दैट आर कमिंग इन?
2: वेल, इट्स नो लॉन्गर यू नो जस्ट द ट्रेंड्स, बिकॉज़ द ट्रेंड्स हैव held on for the last 3.5 hours now.
1: Right.
2: So very clearly, the BJP is headed towards a 3-2 win. Of course, in Puducherry, it's an NDA government which seems to be on its way. But in Assam, it's a very decisive win. In West Bengal, again, it's a very comprehensive win. It's not a close election at all. And if the present trends hold, we are on course to get more than 175 seats at least. Now, very clearly, it's a rejection of the Diamond Harbor model of governance, where intimidation of women, threats and crime were holding sway. And people have expressed their faith in BJP's promise to revive, the rule of law in the state. So it's end of TMC's Gunda Raj in West Bengal.
1: तोहिन जी, आपसे मैं खासकर वेस्ट बंगाल की बात करना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि हम जो ट्रेंड्स भी देख रहे हैं, 170 सीटों पे बीजेपी पहले अभी ऑलरेडी लीड कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ पर जहाँ सरकार थी जिसकी अब तक, वो सिर्फ 93 सीटों पर है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कौन सा एक जो फैक्टर था वो बीजेपी जो अपना इतनी इसने बढ़त ले ली पिछले इलेक्शन में 77 सीटें थी?
2: हमारा पूरा संवाद ही जनता से भय बनाम भरोसा
1: जी।
2: तो जो टीएमसी के आतंक का माहौल पिछले 15 सालों से चल रहा था
1: जी।
2: और पिछले 45 दिन में तो टीएमसी के अगर नेताओं का भाषण आप सुने
1: जी,
2: तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर तो ये लोग व्यवहार ही नहीं कर रहे थे। इनका पूरा आचरण एक माफिया एम्पायर का था, लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। तो आज महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। अगर आप देखें, रीता देवनाथ जी बड़े मतों से रीता देवनाथ जी जीत रही हैं, रेखा पात्रा जी जीत रही हैं। तो महिलाओं ने जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि जब सोशल वेलफेयर के द्वारा महिलाओं को बेनिफिट्स भी मिलता है, तब भी महिलाएं उस पार्टी को वोट नहीं देगी जो उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती है, जो गुंडा राज के जरिए उनको भय के वातावरण में रहने पर मजबूर करती है। तो निश्चित रूप से महिलाओं ने बड़ी संख्या में हमें वोट दिया। और ये जो भाजपा का परफॉर्मेंस रहा है पश्चिम बंगाल में, प्रेसिडेंसी का क्षेत्र जो हमारे लिए कठिन क्षेत्र माना जाता था, वहां पर भी हमारे सीट्स बड़ी संख्या में हमारी सीट्स में बढ़ोतरी हुई है। नॉर्थ बंगाल तो हमारा स्ट्रांग एरिया है ही, पर पूरे बंगाल में इंक्लूडिंग वो मथुआ बेल्ट में इस बार लोग संशय पैदा कर रहे थे कि मथुआ कम्युनिटी शायद वोट ना दे, SIR में कुछ त्रुटियां आई हैं, उस वजह से मथुआ कम्युनिटी के गढ़ों में भी वहां पर भी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई हमारे पक्ष में। तो मेरे ख्याल से पूरे एक मत में बंगाल की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और टीएमसी के भय के वातावरण को पूरी तरह से नकारा है, एक करारा जवाब दिया है।
1: मिस्टर सिन्हा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन एंड दिस टाइम अबाउट यू नो द असम। असम, यू आर द बीजेपी लेड एनडीए इज लुक्स यू नो टू बी हेडिंग टुवर्ड्स forming the third consecutive government now. The interesting thing here is that in the past two elections, the BJP was not able to get a majority on its own. It was not able to cross the six figure of 60. But this time, as we can see, the trends are showing
2: us. In Assam, it's very clearly, was very clearly a report card versus Congress party's minority card election.
1: Right.
2: And people have preferred the report card. So in Assam, this time it was always meant to be a one-sided election, and the results show for themselves. The massive infrastructure development which has taken place across the state of Assam,
1: right,
2: women empowerment, and of course we have succeeded in circumventing the demography distortion which Congress was presiding over pre-2016. So all of these factors have actually led to a massive pro-incumbency vote in our favor.
1: Right.
2: That explains the Assam verdict in our favor.
1: Mr. Sinha, thank you so much for speaking to Akashwani.
2: Thank you.
1: That was BJP spokesperson Tuhin Sinha speaking to us. Now, my next question is to both Mr. Tandon and Umesh Chee, both of you. You know, when we look at, we were talking about

0: किला माना जाता था केरलम को, वहाँ से भी अभी धीरे धीरे दरक रहा है।
1: आज़ादी के बाद ये पहला मौका है, वैसे तो पहली बार 1957 में केरल में ही चुनी हुई, कोई दुनिया की चुनी हुई पहली वामपंथी सरकार बनी थी। तो ये तो सही है कि आज़ादी के बाद भारत में पहली बार कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां वामपंथ की सत्ता में सीधी भागीदारी हो या सत्ता जिसके हाथ में है। और जो अनुभा जी ने जो पहले सवाल पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, पिछले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 25 सालों के अंतराल के बाद 133 सीटों के साथ अपने दम पर, हालांकि गठबंधन में चुनाव लड़ा था डीएमके ने, अपने दम पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। इसका मतलब जनाकांक्षाओं का एक बड़ा उफान उनके साथ था, और आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके विरोध में, कभी भाषा के मुद्दे पर, जबकि भाषा वहाँ गौड़ हो चुकी है, हिंदी का मामला इतना सिर्फ राजनीतिक ढंग से

0: सत्ता में सीधी भागीदारी हो या सत्ता जिसके हाथ में है। और जो अनुभा जी ने जो पहले सवाल पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, पिछले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 25 सालों के अंतराल के बाद 133 सीटों के साथ अपने दम पर, हालांकि गठबंधन में चुनाव लड़ा था डीएमके ने, अपने दम पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। इसका मतलब जनाकांक्षाओं का एक बड़ा उफान उनके साथ था और आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके विरोध में, कभी भाषा के मुद्दे पर, जबकि भाषा वहाँ गौड़ हो चुकी है, हिंदी का मामला इतना सिर्फ राजनीतिक ढंग से उछाला जाता है। श्रीधर बेम्बू जो जोहो के संस्थापक हैं उन्होंने कह दिया था कि भैया अगर आप हिंदी नहीं सीखोगे तो बड़ी कठिनाई होती है, तो उनको भी एक तरह से ट्रोल किया गया था। और वो जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने से इनकार, आप जानते ही हैं तमिलनाडु अकेला राज्य जहां नवोदय विद्यालय नहीं है अभी भी। तो केंद्र की नीतियों का विरोध में राजनीति करना, 133 अकेले दम पर, 234 में 133 पाना, ये बड़ी बात थी। तो निश्चित तौर पर ये हार ममता बनर्जी की हार से कहीं कमतर नहीं है, ये भी बड़ी हार है तमिलनाडु की। और दूसरा जो केरल में आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस उभर रही है, ठीक है अभी जीती है तो माना जाएगा कि उभर रही है, लेकिन केरल में जो जीत हो रही है वो विकल्पहीनता के चलते यूडीएफ की जीत है। अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार, ठीक है कि उसको 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, नेमम पलकड़ और एक तीसरी सीट है, तो लेकिन उसने वोट शेयर उसका लगातार बढ़ रहा है, पिछली बार के 16% की तुलना में, अभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन शायद 20% से ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है कि आगे अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुझे लगता है जो आपने अभी पिछले सवाल में पूछा था ना कि पूरब का द्वार है पश्चिम बंगाल, वहां कब्जा हो गया, तो अब वो कंसंट्रेट करेगी दक्षिण के राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में तो उसकी उपस्थिति मजबूत पहले से है ही, तेलंगाना में मजबूती से वो बढ़ ही रही है, तो अब वो कंसंट्रेट करेगी, तो मुझे लगता है कि अगला उसका टारगेट केरल ही होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को खुशियां मनानी चाहिए क्योंकि उसकी सत्ता में वापसी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। जी
1: अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: केरल के बारे में, केरलम के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, पिछले चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने जीत हासिल की थी दोबारा, क्योंकि उससे पहले हमेशा बदल होता रहा था। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर रही केरल में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहाँ काम बहुत अच्छा है। तो पहले ये माना जाता था कि जो यूडीएफ है, कांग्रेस लेड यूडीएफ, क्योंकि उसमें केरला कांग्रेस है, उसमें मुस्लिम लीग है, तो जो हिंदू वोटर था वो अंत में जाकर जब देखता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं तो वो एलडीएफ को वोट दे देता था, क्योंकि केरला में लेफ्ट फ्रंट को हिंदू पार्टी माना जाता है। लेकिन इस बार ज़्यादा जोर लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष तौर से जब वो त्रिवेंद्रम की म्यूनसिपैलिटी जीत गए तो उनको लगा कि अब हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो हमको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, इसलिए राजीव चंद्रशेखर को वहाँ भेजा गया और उन्होंने पूरा दमखम लगाया, और उसके चलते अगर वो 2-3 सीट अगर जीत रहे हैं या लीड कर रहे हैं, लेकिन उनका मत प्रतिशत बढ़ने वाला है। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान एलडीएफ को हो रहा है ऐसा दिखता है, क्योंकि पहले अगर आखिरी मोमेंट पर संघ और भाजपा का वोट एलडीएफ को चला जाता था जिसके कारण वो जीतते थे, इस बार अगर वो नहीं जा रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाह रही है, तो हो सकता है अंत में चलकर ये एलडीएफ की हार का एक कारण ये भी बने कि जो हिंदू वोट है जो एलडीएफ को मिलता था वो इस बार बढ़ गया है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाह रही है और वोट प्रतिशत बढ़ाकर आगे विकल्प बनना चाहती है। तो शायद केरल की जब एनालिसिस होगी केरलम की, तो ये एक फैक्टर भी ध्यान में रखा जाएगा।
1: And now let's go over to Kolkata, where Akashwani correspondent Kalyan Laha is with us. Kalyan, welcome to the program. What is the latest that you have for us from West Bengal?
3: The latest news is West Bengal mein jo hai abhi, BJP is leading in 156 seats. And Trinamool Congress is leading in nearly 82 seats. And in a major fight in the Bhavanipur seat, sometimes we note that the Trinamool Congress is Mamata Banerjee is leading, and sometimes we see that the Shubhendu Adhikari is leading, and there is a neck-to-neck fight we are witnessing here. And in a significant development that in all the districts where Trinamool Congress candidates were sitting position, and they are trailing, and BJP is leading in many seats. in several districts where there was no presence of BJP.

0: कल्याण, वेस्ट बंगाल में इस बार जो काउंटिंग के दौरान जो सुरक्षा इंतज़ाम किए गए, बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम है और पिछले कई चुनावों के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं?
1: हाँ, देखिए आपने सही बोला है एकदम। पिछले चुनाव और लोकसभा हो और विधानसभा है, हमने देखा है कि बहुत वायलेंस होता था। इवन काउंटिंग के दिन भी बहुत वायलेंस होता था, एजेंट को जो अपोजिशन एजेंट्स को मारा पीटा जाता है, ऐसे भी हम इंस्टेंसेस देखते हैं। बट अभी जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए, टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, 3-लेयर सिक्योरिटी है आपका काउंटिंग सेंटर में, अंदर एकदम अंदर है आपका CAPF। और इसमें और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है हिस्ट्री में जैसे देखा नहीं गया पहले, पुलिस ऑब्जर्वर भी काउंटिंग सेंटर में है बट उसको एकदम भीतर में अलाउड नहीं है। जो सीनियर एक IPS ऑफिसर होगा सारे काउंटिंग सेंटर में है और ऑब्जर्वर भी है और राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जैसे में हम देखे कि वोटिंग के दौरान 23rd में और 29th में जो वोटिंग हुए, कोई भी वायलेंस ऐसा मेजर नहीं हुआ है, अभी तक कोई वायलेंस का इंसिडेंट नहीं है, पूरे एकदम शांतिपूर्ण से सभी जगह जगह में काउंटिंग हो रहा है।
2: जी कल्याण, अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम, ये ऐसे जिले रहे हैं जहां पर कि 118 सीटें 294 में से, यानी कि 40% सीटें इन्हीं जिलों से आती हैं। और 2021 में TMC ने कुल 103 सीटें इन्हीं 6 जिलों से पाई थी। इस 2026 में इस बार क्या स्थिति है वहाँ की, कुछ जानकारी आपके पास है ताज़ा?
1: देखिए अभी तक जो ट्रेंडिंग अभी दिख रहा है इस जिले में, सारी जिले में जैसे आप मेंशन किया है अभी, BJP बहुत सी जगह में इस जिले में सीट जो कंस्टिट्यूएंसी है लीड कर रहे हैं। अभी देखिए मुर्शिदाबाद में भी BJP बहुत सारे सीट्स में लीडिंग कर रहे हैं, दक्षिण 24 परगना में भी लीडिंग लीड कर रहे हैं और उत्तर 24 परगना में भी लीड कर रहे हैं। अभी BJP की स्थिति अभी बहुत अच्छा है, बाकी अगर पास्ट इलेक्शन के हम कंपेयर करें तो अभी बहुत पुख्ता स्थिति है BJP का।
0: जी कल्याण, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड बिफोर वी टेक द प्रोग्राम अ लिटिल फर्दर, विशाल, लेट्स गिव आवर लिसनर्स द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग।
2: जी ताज़ा रुझान हम अपने श्रोताओं को बता दें, तमिलनाडु से जो हमारे पास ताज़ा रुझान आ रहे हैं, पेरम्बूर सीट से TV के उम्मीदवार C. Joseph विजय बढ़त बनाए हुए हैं, कोलातूर से DM के उम्मीदवार MK स्टालिन पीछे चल रहे हैं, हार्बर से DM के उम्मीदवार PK शेखर बाबू पिछड़ रहे हैं, चेपक तिरुवल्लिकेणी से DM के उम्मीदवार उदयनिधि मारन पीछे हैं, अन्ना नगर से ऑल इंडिया अन्ना DM के उम्मीदवार S. गोकुल इंदिरा पीछे चल रहे हैं, सैदापेट से DM के उम्मीदवार सुब्रमण्यम पीछे हैं और माइलापुर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पीछे चल रहे हैं। श्री पेरम्बूर सुरक्षित सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के सेल्वा पेरुनतगई पीछे चल रहे हैं, कटपड़ी से DM के उम्मीदवार दुरई मुरुगन पिछड़ रहे हैं, पेन्नागरम से कांग्रेस उम्मीदवार GKM तमिल कुमारन पीछे चल रहे हैं, धर्मपुरी से PM के उम्मीदवार सौम्या अंबुमणि बढ़त बनाए हुए हैं, किलपेन्नातूर से DM के उम्मीदवार पिटचांडी के पीछे हैं, एडापड़ी से ऑल इंडिया अन्ना DM के उम्मीदवार एडापड़ी पलनीसामी आगे चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है ये, और गोबी चेट्टीपलयम से TV के उम्मीदवार सैनगोट्टियन KA बढ़त बनाए हुए हैं, अवंशी सुरक्षित सीट से भाजपा के डॉक्टर L. मुरुगन पीछे हैं, कोयम्बतूर उत्तर सीट से भाजपा उम्मीदवार वनती श्रीनिवासन पिछड़ रहे हैं, कोयम्बतूर दक्षिण से DM के उम्मीदवार V. सेंथल बालाजी बढ़त बनाए हुए हैं, तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से TV के प्रमुख C. Joseph विजय आगे चल रहे हैं, कुरिंजीपड़ी सीट से DM के उम्मीदवार MRK पनीरसेल्वम पीछे हैं, करईकुड़ी से NT के उम्मीदवार सीमन पिछड़ रहे हैं और तिरुपत्तूर से DM के उम्मीदवार पेरिया करुप्पन बढ़त बनाए हुए हैं, बोडीनयाकुरनूर से DM के उम्मीदवार O. पनीरसेल्वम बढ़त बनाए हुए हैं, सत्तूर से भाजपा उम्मीदवार नैनार नांगेरतरन पीछे हैं और राधापुरम से DM के उम्मीदवार अप्पवू M. पिछड़ रहे हैं।
0: और इसके अलावा 5 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे, चलिए आपको उनके रुझान बताते हैं। तो जैसा कि मैंने भी कहा था कि 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी आज हो रही है। ये 7 सीटें हैं, गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडंग और त्रिपुरा में धर्मनगर। इनमें से 4 सीटों पर

0: भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार आगे हैं, चल रहे हैं। बागलकोट कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुल्लप्पा मेती आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण में कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिका अर्जुन आगे हो गए हैं। अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदिले आगे हैं। बारामती से पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुनेत्रा अजीत पवार बढ़त बनाए हुए हैं। और नागालैंड में कोरीडांग से भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई इमेचेन आगे हैं। वहीं त्रिपुरा में धर्मनगर से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं।
1: जी अनुभा, कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्या वहां पर इस समय ताजा स्थिति है। असम की अगर हम जानू कबारी सीट की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के भाजपा के आगे चल रहे हैं और लीड बनाए हुए हैं। असम से ही जोरहाट सीट से जो है गौरव गोगोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं।
0: आई विल यू नो विशाल, व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज दैट गौरव गोगोई इज एक्चुअली द सिटिंग एमपी राइट नाउ फ्रॉम जोरहाट। ही वन द यू नो मैसिव मार्जिन इन 2024 इलेक्शंस एंड टू सी हिम यू नाउ लीडिंग इन द असेंबली इलेक्शंस। Before you give any more trends, I want a comment from both Umesh ji and Ashok ji on this.
2: So it's very interesting. On the eve of the election, yes, Hemanta Biswa said, I want him to win. I want Gaurav Gogoi to win and come to the assembly, and then I will show him what exactly we have done, my performance. Because sitting in Lok Sabha, he may not be observing my performance in Assam, but unfortunately he is losing. So having won the Lok Sabha election, Gaurav Gogoi is trailing and he was the Congress face, yes, for, yes, the Assam, exactly, election. He was perhaps emerging as a very popular, he's a very good parliamentarian, no doubt about it. So he was, that's why he was asked to go and contest the assembly election and perform well as far as Congress is concerned, because Congress had been ruling Assam for a very long time. And only when they lost Hemanta Biswa Sarma, he left, yes, Congress and joined BJP. That was a huge loss for Congress. But now he is trailing. But Hemanta Biswa wanted him to win and become leader of opposition so that he can face to face tell him the performance of the Hemanta Biswa government in Assam.
0: Umesh ji,
3: Tarun Gogoi के पिछड़ने के संबंध में आपने सवाल पूछा है।
0: गौरव गोगोई,
3: सॉरी गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के बेटे, सॉरी, हाँ जी। देखिए, तरुण गोगोई निश्चित तौर पर कांग्रेस का असम में चेहरा थे, और जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, वो हाफ हार्टेड जिसको कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ा है। और एक चीज़ और ध्यान में देने की है कि असम के प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे, पवन खेड़ा प्रकरण भी वही हुआ, और जिस तरह से इसको उछाला गया और जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने भी उसको टैकल किया, जिस पर कि अभी पवन खेड़ा को दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, तो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि वो जीत सकती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एक चीज़ और भी था कि कांग्रेस के तीन जो कैंडिडेट की लिस्ट तीन जगह तैयार हो रहे थे, एक प्रियंका गांधी तैयार कर रही थी, एक भूपेश बघेल कर रहे थे, और तीसरा राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो उनके स्टार चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने शायद एक ही दिन असम में प्रचार किया। तो निश्चित तौर पर आप जब किसी को नेता प्रोजेक्ट करते हो और उसके पीछे अगर पूरी तरह से खड़े नज़र नहीं आते और उस नेता का कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व तो नहीं होता जिस तरह से कि हेमंत बिस्व शर्मा का दिख रहा है, तो ये ऐसे ही नतीजे आने थे। तो एक चीज़ तो ये है कि कांग्रेस अगर, जैसे कि टंडन जी बता रहे थे कि अगर गौरव गोगोई जीत गए होते तो शायद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए जो राहट की सीट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता तो शायद वो भी सीट कांग्रेस के खतरे में पड़ सकती थी। कह सकते हैं कि वो सीट कांग्रेस बचाने में कामयाब रही है, जोरहाट की लोकसभा सीट। तो मुझे लगता है कि इस तरुण गौरव गोगोई की जो का पिछड़ना है वो कांग्रेस के लिए एक आईना हो सकता है कि आपको किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए और किस तरह से अपने लोगों को साध के रखना भी चाहिए, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा कहा जाता है कि वो पहले तरुण गोगोई के ही लेफ्टिनेंट थे, हालांकि मेरे पास जानकारी ये भी है कि वो अहमद पटेल के भी लेफ्टिनेंट थे और उनके लिए भरूच में भी काम करते थे। लेकिन किस तरह से वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और ना सिर्फ वो असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर आयातित नेताओं को इस तरह से नंबर वन की सीट नहीं मिलती रही है, इस परंपरा को भी वो तोड़ने में कामयाब होते हैं, तो निश्चित

0: तौर पर उनके चमत्कारिक नेतृत्व के सामने गौरव गोगोई की जो स्थिति है वो शोचनीय है कही जाएगी, कांग्रेस के लिए चिंता की बात है।
1: जी अशोक टंडन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
2: हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस नेतृत्व का जो फेल्योर है वो केवल चुनाव जितवाने तक नहीं है, वो अपने नेताओं को संभाल के रखने की भी एक समस्या है। और हेमंत बिस्व शर्मा उसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। वो कांग्रेस के स्टालवर्ड थे पूरे नॉर्थ ईस्ट के, असम के। वो कई लंबे समय से राहुल गांधी से समय मांगते रहे थे, और ऐसा जो हमने रिपोर्ट देखी मीडिया में, जब उनको समय मिलता है तो हेमंत बिस्व शर्मा उनको पूर्वोत्तर की राजनीति समझा रहे हैं और वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं जो नेतृत्व से निराश होकर कांग्रेस छोड़ी है जिन्होंने, और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस नेतृत्व अगर चुनाव नहीं जितवा सकता, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को तो संभाल सकता है। एक एक करके जो लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस, और कई वरिष्ठ नेता छोड़ रहे हैं और ऐसे युवा नेता भी छोड़ रहे हैं, एक तो उनको कांग्रेस में भविष्य इसलिए भी नहीं दिखता कि नेतृत्व तो एक परिवार के हाथ में है, चाहे पार्टी हारे या जीते नेतृत्व तो एक परिवार के हाथ में ही रहना है, तो ऐसे में हमारा भविष्य क्या है। तो ये सोचकर भी कांग्रेस को, मैं समझता हूँ, और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं कि ये जो एक जिंक्स टैच को तोड़ा जाए कि कांग्रेस क्यों ही एक परिवार के नेतृत्व में रह सकती है, कांग्रेस इतनी लंबी पुरानी स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी है, क्यों नहीं उसमें कोई नेहरू गांधी फैमिली के बाहर का नेतृत्व आ सकता है। तो ये मैं समझता हूँ जो सोच चल रही है कांग्रेस के कुछ नेताओं में, उनको अब मुखर होकर सामने आना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और पार्टी समाप्त होना कोई अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र में राष्ट्रीय दल दो रहने चाहिए। अभी लेफ्ट फ्रंट खत्म हो गया तो बाकी तो सब क्षेत्रीय दल रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के अंदर इस पर मंथन होना चाहिए।
3: जी हम क्योंकि बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट असम, वेरी क्विक कमेंट बिफोर वी गो इनटू ब्रेक एट 12 नून फ्रॉम बोथ ऑफ यू। असम, यू नो, इट्स द फर्स्ट इलेक्शन दैट्स बीइंग हेल्ड इन असम आफ्टर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑफ 2023। अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग, यू नो, सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। How do you see, what is the impact? Ashok ji, very quick comment.
2: I think a major issue, one of the major issue has been infiltration from across the border.
3: Right.
2: And Hemanta had made it a point that we will not allow this kind of a thing to happen. So if you look at the earlier Assam movement, agitation, that was the issue. Why we should allow Bangladeshis to settle in Assam.
3: Right.
2: So I think that has gone home very well with the people of Assam.
3: Umesh ji, bahut quick comment.
0: अब तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को ही सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बल्ले बल्ले की बात है। बिल्कुल
3: जी।
1: और अब यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और समाचारों का वक्त हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश बुलेटिन प्रसारित होंगे, उसके बाद हम 10 मिनट बाद 12:10 पर आपसे फिर मिलते हैं।
3: बट उसके पहले क्विकली आई विल गिव यू एन अपडेट। इन असम द बीजेपी इज लीडिंग ऑन 80 सीट्स, एजीपी इज लीडिंग ऑन 9, AIUDF इज लीडिंग ऑन 2। इन केरल द CPM इज लीडिंग ऑन 30, द CPI इज लीडिंग ऑन 11 एंड CPM इज लीडिंग ऑन 30 सीट्स एंड विल बी बैक।
4: आकाशवाणी नेरम 12 மணி।

हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: மிஸ்ஸியம்மா படத்திற்காக பீலீலா பாடிய பாடலை கேட்டோம். இனி தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்காளம், யூனியன் பிரதேசம், புதுச்சேரி ஆகியவற்றின் சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலுமான கலந்துரையாடலின் நேரடி ஒலிபரப்பு டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செயலி செய்ய கேட்கலாம்.
1: जनादेश 2026
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम
3: वेलकम बैक टू आकाशवाणीज स्पेशल प्रोग्राम जनादेश 2026 वेयर वी आर डिस्कसिंग द ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स कमिंग इन फ्रॉम द असेंबली इलेक्शंस दैट वर हेल्ड इन 4 states and 1 union territory in the month of April. Once again, we have with us in studio senior journalist Umesh Chaturvedi and political analyst Ashok Tandon. And right at the beginning of this section of the program, let's give you the latest trends coming in.
4: Ji Anubha, aur sabse pehle agar hum Assam ke jo rujhan aa rahe hain un par nazar dalein, to Assam mein Bharatiya Janata Party 126 seaton mein se 79 seaton par badhat banaye hue hai. असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे चल रही है. AIUDF 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस जो है वो 23 सीटों पर आगे चल रही है. केरलम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है और CPI 12 सीटों पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 12 सीटों पर आगे चल रही है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी जो है वो 56 सीटों पर वहाँ पर

0: आगे चल रही है.
1: इफ यू टॉक अबाउट पुदुचेरी देन द AIADMK इज लीडिंग ऑन वन द ruling AINRC, which is part of the NDA alliance, is leading on 10 seats. BJP, part of the NDA alliance in Puducherry, is leading on 4 seats. DMK is leading on 4. Congress is leading on 7. And independents are ahead on 3 seats. And talking about Tamil Nadu, the AIADMK is leading on 64 seats. BJP, the AIADMK partner, is leading on 3 seats. The DMK, which was in government till, the present government, is leading on 43. Its alliance partner, Congress, is leading on 5. IUML is leading on 1. Actor Vijay's TVK, which is being seen as the biggest disruptor in these elections in Tamil Nadu, is leading on 106 seats. And quickly, Vishal, why don't you give the...
0: जी पश्चिम बंगाल के अगर हम रुझानों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 191 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. 286 सीटों के हमें जो हैं इस समय रुझान मिल रहे हैं और 293 सीटों के लिए वहाँ पर गणना हो रही है, चुनाव वोटों की गिनती हो रही है. और AISF एक सीट पर आगे है, AITC 91 सीटों पर आगे चल रही है तृणमूल कांग्रेस.
1: जी एंड नाउ लेट्स गो ओवर टू चेन्नई फ्रॉम वेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट सतीश कुमार श्रीवास्तव इज ऑनलाइन विद अस. मिस्टर श्रीवास्तव, वेलकम टू आकाशवाणी जनदेश 2026.
2: Namaskar, ma'am.
1: Namaskar, sir. Sir, this is the first, these elections, you're based in Chennai, talking to us from Chennai. What is your first assessment of what's happening in Tamil Nadu? We just saw that actor Vijay's TVK leading on 106 seats, a very, very big surprise, because if we go by the exit polls, hardly anybody had given, any credence to TVK emerging as probably not just kingmaker, but as forming the next government in the state.
2: Yes, ma'am. Actually, the youth is with the TVK.
1: Gee.
2: That is the first thing that youth voters like from that college students and till 30 years age youth is with the TVK, and that 30 year age number percentage of voters is more than near about 20% voters of Tamil Nadu is that is. Second thing, the Tamil Nadu public want to change the DMK, AIADMK, DMK, AIADMK. They want the changing of that.
1: Right.
2: This pattern.
1: जी तो आपको जी
0: जी कुमार श्रीवास्तव जी, जो आपने कहा कि युवा जो है वो टीवीके के साथ जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या टीवीके में ऐसा क्या आकर्षण युवाओं को लगा कि वो टीवीके की तरफ खींचे चले गए वोटर के तौर पर?
2: एक तो जो इनका फैंस क्लब था, जो इन्होंने इनके फैंस थे, ये केवल अभी चुनाव में इस बार उतरे हैं, लेकिन इसकी तैयारी ये पिछले कई सालों से कर रहे थे, लोगों की मदद करना, और इन्होंने युवाओं को जोड़ रखा था. दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि एक अभिनेता के रूप में जो विजय
1: सतीश जी जी सतीश जी
2: इनकी एक
1: मुझे आपको यहाँ पर माफी चाहूंगी, रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन GVL नरसिम्हा जुड़ गए हैं. मिस्टर नरसिम्हा, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026.
3: नमस्कार जी.
1: नमस्ते सर. ये जो आप हम रुझान देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी लेड एनडीए असम में ऑलमोस्ट अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, और बाकी जगह भी जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके उम्मीद के मुताबिक नतीजे नजर आ रहे हैं आपको?
3: बिल्कुल, पूरी तरह बीजेपी के जो पूर्वानुमान था, जो लक्ष्य था, उसके अनुकूल आज के परिणाम सब लगभग सभी राज्यों में आ रहे हैं. ये उस असम में तीसरी बार हम और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे, यही हमारा एक आकांक्षा थी, एक लक्ष्य था, वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है. और असम की जनता को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे सरकार उनके उम्मीदों पर खरी उतरी है, इसलिए असम की जनता ने और बड़ी बहुमत से बीजेपी की सरकार वहां बना रहे हैं. और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है. एक बड़ा राज्य होने के नाते पश्चिम बंगाल का देश के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा उनका स्थान है, और ऐसे राज्य में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा में सीट 42 सीट पश्चिम बंगाल से आते हैं, और ऐसे राज्य में एक क्षेत्रीय दल के

0: खिलाफ लड़ते हुए एक बड़े जीत को हासिल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम पश्चिम बंगाल की जनता को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक तरह से टीएमसी के शासन से एक तरह से बहुत ही दुखी होकर और वहाँ जिस प्रकार की करप्शन, भ्रष्टाचार और गैर संवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ एक तरह से बीजेपी को चुना है मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के उनके नेतृत्व में बीजेपी को, यहाँ बीजेपी के सरकार बनाकर ही केवल विकास के रास्ते पर बंगाल आगे बढ़ सकती है। इसी आशा के साथ, इसी विचार के साथ वहाँ की जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा जीत दिया है, ये उनके लिए धन्यवाद। और पुडुचेरी में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है तो यही हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का हमारे लिए विषय है।
1: मिस्टर नरसिम्हा, इफ यू लुक एट दी, यू नो, इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु, बीजेपी ऑन इट्स ओन इज लीडिंग ऑन 3 seats, सेम वी सी दैट इन केरल बीजेपी इज अगेन लीडिंग ऑन 3 seats, वाइल इन पुदुचेरी इट्स लीडिंग ऑन 4 seats. सो ऑल्दो इट मे बी यू नो पार्ट ऑफ द अलायंस, हाउ डू यू सी दीज ट्रेंड्स दैट the BJP is making an effort to make expand its footprint, especially in Kerala and Tamil Nadu, the southern states. How do you see these trends coming in?
0: See, Kerala, this would be the first time that a BJP BJP would have its presence in the state assembly. You've seen how BJP formed, BJP won the local corporation elections in Trivandrum, Thiruvananthapuram, and BJP has been increasing its vote share election after election, but our attempt this time was to make a strong presence in the assembly, and that will make a foundation that will help us to form a foundation for future success for the BJP. So we are quite happy that BJP is leading in some seats, and we will also see a big rise in BJP vote share in Kerala, which should be a sort of a ladder for us to grow on our own in future. When it comes to Tamil Nadu, our main aim in Tamil Nadu was to defeat the DMK Congress combined, because this is it is the DMK which ran a lot of negative campaign against the BJP and the central government. They in fact tried to create an impression that BJP was anti-South by alleging that delimitation was going to be harmful for the for the southern states. So all this propaganda, for this propaganda, the BJP always wanted to defeat the DMK, and that was our primary aim, and that certainly is coming true in today's election results. But as we all see, the TVK, which came on the horizon as a new party, certainly has taken Tamil Nadu, has given a new alternative to the people of Tamil Nadu, and they have swung heavily in TVK's favor. So it appears to be hung assembly in Tamil Nadu for the last 3-4 hours. We see a hung assembly scenario. We'll see how it pans out, but it will certainly be an anti-DMK, anti-Congress government in Tamil Nadu, which is likely to be certainly pro-center and work towards realizing the dreams of Prime Minister Narendra Modi ji as far as development is concerned.
1: Mr. Narasimha, thank you so much for joining Akashwani.
0: Thank you, ji.
1: That was BJP spokesperson GBL Narasimha.
2: जी अमीश चतुर्वेदी जी, तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, एक तरीके से पूरा बड़ा उलटफेर वहाँ पर देखने को मिला है, बिल्कुल एक राजनीति में ट्विस्ट एकदम से देखने को मिल रहा है वहाँ पर। टीवी के 105 सीटें पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है, और लगभग अब लगता है कि बहुमत की तरफ भी बढ़ती दिखाई देगी, लेकिन अभी देखना होगा कि उसको कितनी सीटें और कहाँ पर अभी मिलती हैं। कुल मिलाकर के आप जो तमिलनाडु में ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है?
3: देखिए, ये तो बता रहा है कि जिस तरह से तमिलनाडु में एक्टर को लेकर के, फिल्मी जो दुनिया के लोग रहते हैं, जो सितारे रहे हैं, उनको लेकर के जो एक खास तौर का फैनेटिज्म दिखता रहा है, उसकी एक पुनरावृत्ति दिखती है। लेकिन एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा, थलपति विजय की एक फिल्म रही है घीली, तमिल फिल्म है घीली, उसमें उन्होंने एक डायलॉग दिया था, यह एरिया हो या वो एरिया, हर जगह का विजेता मैं ही हूँ। तमिलनाडु के जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि वो हर जगह के विजेता हैं, हर तरफ के लोगों के उन्होंने

0: एक तरह से लोगों को आकर्षित किया है, लोगों की बातों को रखा है और लोगों को उम्मीदों पर, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है।
1: जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चेन्नई से सतीश कुमार श्रीवास्तव ऑनलाइन जुड़े हैं। जी श्रीवास्तव जी, चेन्नई में आप हैं और इस समय वहां पर जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे, आप इससे पहले भी हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो टीवी के साथ जो है युवा मतदाता तमिलनाडु का राज्य का वो सबसे ज्यादा जुड़ा है जाकर के, और उसने अपील किया है युवा मतदाताओं को टीवी के पार्टी ने या विजय ने, अभिनेता विजय जो हैं, जो उसके नेता हैं, उन्होंने ऐसा क्या सामने रखा वहाँ के मतदाताओं के सामने कि जो युवा मतदाता हैं उससे बहुत प्रभावित नजर आए?
2: सर, एक तो जो कहते हैं ना कि ये जो अभिनेता वाला फैक्टर है यहाँ तमिलनाडु में,
1: जी
2: ये तो है ही है। और उसके बाद ये इन्होंने कई जगह इनके जो फैंस क्लब इन्होंने बनाए हुए थे यहाँ पर, तो ये जो इनका फैंस क्लब है, ये जब ये अभी राजनीति में अटकलें लगाई जा रही थी कि तलपति विजय राजनीति करेंगे, उस समय भी इनका ये फैंस क्लब जमीनी स्तर पर जाकर के काम कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था। और जो जो एक एक मैं पहले भी बताया कि ये डीएम के एआईडीएम के ये दोनों पार्टियां आ रही थी जनता इनको इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रही थी, तो इस तीसरे विकल्प का भी इनको फायदा मिला। और युवाओं के आकर्षण, एक जो अभिनय इनका था अभिनेता के रूप में युवाओं के रूप में के बीच में, ये उस समय भी लोकप्रिय थे जब अभी राजनीति की अटकलें लगाई जा रही थी।
0: एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इसमें रजनीकांत और कमल हासन, इन दोनों की क्या भूमिका रही इस चुनाव में?
2: सर, रजनीकांत और कमल हासन कि जो इसमें इन इन मतलब इनके साथ या इनके विपक्ष में वो नहीं रहे, वे साइलेंट रहे। वे जब राजनीति में आने के का जब उनका प्रयास शुरू हुआ, तो उस मतलब जो इनका काम राजनीति में आने के पहले जन सेवा का जो इनका कार्य था टीवी का, वह कार्य टीवी के का वह कार्य न तो रजनीकांत का था और ना कमल हासन का था, तो इसका भी इनको फायदा मिला, जनता भी इनसे जुड़ी, केवल युवा वर्ग तो इनके साथ था ही, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो जो उम्र दराज थे और उनके विचार में परिवर्तन आया।
3: जी मिस्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आकाशवाणी जनादेश 2026। Mr. Chandran, I want to come to you and I want to come back to Assam now. In Assam, we've seen for long years, Badruddin Ajmal's AIUDF had been a very decisive force in Assam politics, but we saw in the 2024 elections, he himself lost his, you know, constituency Dhubri by one of the biggest margins. Now he's contesting at the age of 76. He's contesting his very first, you know, assembly election. Last assembly election, Assam, Congress and AIUDF were together. This time they're, you know, contesting separately. So has that also made an impact? Because the trends show us that AIUDF is leading only on two seats.
0: I think he himself is leading, if I'm not wrong. He himself is leading, but there was no alliance with the Congress.
3: Yes.
0: And there was no alliance actually led by Congress. There were no other smaller parties also in the... Congress wanted to revive its fortunes on its own. And they thought that Gaurav Gogoi, being a young, dynamic leader, may be able to turn the table. But unfortunately, it has not happened. But as far as this fringe group is concerned, no, they were actually trying to corner all the Muslim votes in Assam, and that has been a setback for the Congress for quite some time. So, but I think the factor which has weighed very heavily in favor of BJP and Hemanta Biswa Sarma is that their, you know, call that they will not allow infiltration. Mm. They will in fact send back the Bangladeshi infiltrators, and that I think is the core sentiment in Assam for a very long time, because Assam has been flooded with infiltration from Bangladesh, and many of them were not even a legitimate people coming into Assam. So all the infiltrators, so they will now be pushed back. That was one of the main agenda.

0: agenda of Biswa Sarma. So let's see what happens. But I personally feel that the Congress needs to do some introspection in Assam. Yes, it was a very powerful party in Assam earlier.
1: जी उमेश चतुर्वेदी जी, महिला मतदाताओं की अगर हम बात करें, असम की हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की बहुत बड़ी, भाजपा की बहुत बड़ी ताकत रही है महिला मतदाता हैं, और अरुणोदय एक योजना जो है भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार ने वहाँ पर चलाई और महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये भेजे हैं, ये इसका असर भी आप देखते हैं चुनाव नतीजों पर?
2: बिल्कुल, ये तो हर जगह दिख रहा है। आप देखिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लड़की योजना, ये झारखंड में माई योजना, छत्तीसगढ़ में इसी तरह की योजना, पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने वो दे रही थी, लक्ष्मी क्या योजना, नाम था भाग्य, नहीं लक्ष्मी कुछ ऐसे दूसरा नाम है, तो उस योजना का। लेकिन एक चीज़ देखिए कि पश्चिम बंगाल में वो करामात क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ आरजी कर के मामले को लेकर के जिस तरह से सरकार का रवैया रहा उसको लेकर के महिलाओं में एक क्षोभ रहा और उसका असर दिख रहा है। लेकिन असम में ऐसा नहीं है, और दोनों राज्यों में एक चीज़ बार बार देखना चाहिए, घुसपैठ का मामला असम से उठता है। आप देखेंगे कि घुसपैठ को लेकर के सबसे बड़ा सवाल पहली बार असम में उठा था 1985 में, तो एक सरकार ही बनी थी असम गण परिषद, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो घुसपैठ के मामले पर ही उभरी थी और वो सरकार बनाने में भी कामयाब रही थी। लेकिन वही मामला पश्चिम बंगाल में भी आया, और सिर्फ महिलाओं का मामला ही नहीं है, बाकी कई सारे मामले हैं। ठीक है कि वो एक मामला है महिलाओं ने वोट डाला, लेकिन एक चीज ये देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 2021 के चुनाव में महिलाओं का 10% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ममता बनर्जी को मिला था, लेकिन इस बार जाहिर है कि वो महिलाओं ने साथ छोड़ दिया। उन्होंने जो लक्ष्मी योजना है जिसमें वो 1500 रुपये महीने दे रही हैं, और ये वादा भी किया था कि 500 रुपये और देंगी चुनाव जीतने के बाद, वो काम नहीं आया। तो महिलाओं का देखना ये है कि किन जगहों पर वो उनके साथ ये सहयोग कर रही हैं सरकारें या पार्टियाँ, और किस जगह पर वो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये दोनों ही चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो असम में उनकी सुरक्षा के साथ कोई चिंता नहीं जुड़ी हुई है, तो इसलिए असम में तो कामयाब रहा, हेमंत बिस्व शर्मा को समर्थन मिला, ममता बनर्जी को इसका समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये राज्यवार हिसाब से देखें तो अलग अलग ढंग से उसको आप व्याख्यायित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं।
0: जी, ये महिला सुरक्षा का मुद्दा बंगाल में बहुत जोर पकड़ गया था, और अभी हम देख रहे हैं कि वो जो रेप विक्टिम की माँ है वो लीड कर रही है चुनाव में। तो वो जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था, जो महिला उत्पीड़न हुआ था और वो बलात्कार का मामला हुआ था, तो उसके चलते बंगाल में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। तो केवल ये नहीं है कि महिलाओं को आप सुविधा क्या देते हैं, मुझे लगता है महिलाओं के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है महिला सुरक्षा, जिसके बारे में लोगों का विश्वास ममता के प्रति डगमगा गया था, और वो शायद इसलिए चुनाव में भी, ये परिणाम में भी उसका कुछ ना कुछ असर दिखाई दे रहा है।
2: अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो ये कहा था आरजी कर मामले पर, आरजी कर जैसे मामले हो सकते हैं, आपराधिक कहीं भी हो सकते हैं, सवाल ये है कि उसके साथ डीलिंग कैसी हुई, उसको लिया कैसे गया, सरकार ने उस पर कैसे किया। तो आमतौर पर आप मोटे तौर पर आप देखेंगे कि ममता सरकार लिपापोती करती हुई नजर आई, और एक बड़ा बयान, ये शायद उत्तर भारत में चल भी जाता कुछ और राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि 9 बजे रात के बाद महिलाएं सड़कों पर ना निकलें, बाहर ना निकलें। ये बात पश्चिम बंगाल में, जो क्योंकि वहाँ महिला को सम्मान की नज़र से देखा जाता है, वहाँ दुर्गा की धरती है, शक्ति की धरती है, तो उस राज्य की महिलाओं ने इसे एक अलग ढंग से लिया, और ये शायद इसी वजह से उनकी लक्ष्मी योजना कामयाब नहीं रही। और असम में आप देखेंगे कि बार बार एग्रेसिव ढंग से हेमंत बिस्व शर्मा घुसपैठ का मुद्दा उछालते हैं, बार बार यहाँ तक तो ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो किसी को रहने ही नहीं देंगे, घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें, सिर्फ महिला योजना नहीं है, महिलाओं का साथ देना, सुरक्षा देना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत की 1500 या 2000 या 1500 रुपया देना।
1: जी, प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो झालमुड़ी खाई, और उस इलाके में भाजपा जो है वहाँ चारों सीटों पर आगे चल रही है, झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नयाग्राम, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट करने का मतदाताओं से जो एक एक ये एक एक तरीका है, ये कितना असर करता है?
2: बिल्कुल, देखिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है ना कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, संचारक थे, बड़े रिसर्च होता रहा है। मुझे लगता है कि एक रिसर्च नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी होना चाहिए, और एक उनकी टाइमिंग कि कब कैसे

0: कनेक्ट करना है। आप याद कीजिए, बिहार चुनाव होने वाले थे तो उसके कुछ दिन पहले यहीं इंडिया गेट पर दिल्ली में उन्होंने लिट्टी चोखा खा करके एक तरह से पूरे बिहार को कनेक्ट कर लिया था। और जो लिट्टी चोखा नहीं खाता है, जो उसको पसंद भी नहीं करता था या जानता नहीं था, वो भी लिट्टी चोखा के पीछे दौड़ पड़ा। तो ये कनेक्ट करने का उनका तरीका है। उन्होंने, आप देखिए, उस दिन उन्होंने एक बात भी बोली। वो पूछता है जो झाल मुड़ी बेचने वाला कि प्याज खाते हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता। तो वो भी एक बात थी, एक सीधे सीधे वो जनता के मर्म को छूने वाली बात थी। और उसके बाद ये देखिए कि सिर्फ झाल मुड़ी ऐसा, ठीक है कि बंगाल जाने वाले सब लोग जानते हैं कि झाल मुड़ी क्या होता है, लेकिन झाल मुड़ी ने बंगाल के झाल मुड़ी को ही नहीं बल्कि बंगाल के मर्म को छू दिया। और उस मर्म के जरिए उन्होंने एक तरह से बंगाल के दिलों में पैठ बना ली। तो एक तो रिसर्च ये होना ही चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेटर हैं, तो वो कनेक्ट कर लेते हैं, सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं। ममता बनर्जी यही आरोप लगा रही थी ना कि ये जो लोग भाजपा वाले हैं वो यहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं। हालांकि ये बात भी याद रखना चाहिए कि अभी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के 200 साल होंगे और उसकी शुरुआत उसी कलकत्ता में हुई थी 30 मई 1826 को। और मतवाला एक बड़ा मशहूर पत्रिका होती थी, बड़ी मशहूर, वो भी उसी बंगाल से निकली। रामानंद दोषी जो बहुत बड़े मतलब विचारक थे बंगाल के, उन्होंने हिंदी में प्रवासी पत्रिका निकाली। तो ये कहना, सवाल ये नहीं है कि हिंदी में आप बात करके कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है कम्युनिकेशन। हम सब लोग यहाँ पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, चारों लोग बैठे हुए हैं, टंडन जी तो हम लोगों में सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो कनेक्ट करना होता है। अब वो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस इलाके में कैसे कनेक्ट करना है। अगर वो बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हैं तो पहली लाइन बोलते हैं कि मतलब भोजपुरी में बोलते हैं, वहाँ लोगों को भोजपुरी से कनेक्ट करते हैं। उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंडी बोली से बोलते हैं, पंजाब जाते हैं पंजाबी में बोलने लगते हैं, केरल में भी 4 शब्द मलयालम को बोल लेते हैं। तो वो एक उनका कनेक्ट करने का तरीका है और ये नतीजे तो दिखा रहा है कि किस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है।
1: अशोक जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस व्हाट अमेश जस्ट सेड अबाउट द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट्स, यू नो, डायरेक्टली विद द वोटर्स?
2: No doubt about it. He is a great communicator, but you know, sometimes innovation is very important. No, I'll give you a very small example. Till he emerged on the political scene at the center, no party leader of any party was wearing the party badge on his jacket or shirt or coat. And not only that, he in fact told the party members that why the symbol of lotus is in saffron color, because on the EVM machine the lotus will be white. He started wearing the white lotus symbol on his jackets and all that.
1: Right.
2: No, these are very small things. Every lectern, wherever he used to address a public meeting, there used to be the symbol of the BJP. He invariably sits in the front seat of his car. The light on his head was always on, so that people could see him.
1: Right.
2: So these are small, very little things in politics which do matter. Then not only the boat ride which he did, you know, around Howrah Bridge, then on, because when the campaigning ends, he went to Bellur Mat. Yeah. No, anybody could have gone there. Mamta could have gone or anybody. No, his going to Bellur Mat was criticized. Why he is doing election politics and religion? But it was his, you know, innovative idea. Right. Getting blessings from Bellur Mat, having a boat ride around the Howrah Bridge. So all these things are, and one thing I may tell you.
1: Yeah.
2: He himself is a lone think tank. He is not going by any advisor. He does not have any think tank. He himself is the think tank.
1: Right.
2: About all these innovation which he does in politics is his own brainchild.
3: Right. जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से आकाशवाणी समाचार ने विशेष बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी।
5: पहली बार जो है
4: नहीं, ये निरंतर 3 चुनावों में आप भाजपा का ट्रेंड देखें। 2011 के विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे, 2016 में हमने 3 सीटें प्राप्त की और 10% वोट प्राप्त किया, 2021 में 77 सीटें, मुख्य विपक्षी दल 38% वोट। तो जो ट्रेंड दिख रहा था वो दिखा रहा था कि 12 वर्षों के नितत सतत प्रयत्न, निरंतर संघर्ष और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफल दिखाई दे रहे हैं।
5: कांग्रेस बहुत आश्वस्त है, क्या

0: मुझे लगता है कांग्रेस को आश्वस्तता के पैमाने पर पुनर्विचार करना चाहिए। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें थी, लगातार तीसरी बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने वहां बहुत शानदार काम किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, और उससे हम कह सकते हैं असम में जो हमें हैट्रिक मिली है ये पूर्वोत्तर की दृष्टि से भी एक अभूतपूर्व कार्य।
1: और अब समय है एक रुझान, कुछ रुझान बताने का।
2: जी प्रमुख उम्मीदवारों,
1: जी विशाल,
2: प्रमुख उम्मीदवारों के सीट्स पर हम नजर डाल लें कि तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएम के उम्मीदवार एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अब पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फिलहाल पीछे हो गए हैं, लेकिन नंदीग्राम से बढ़त बनाए हुए हैं। पुदुचेरी में तट्टन चावड़ी सीट से AINRC उम्मीदवार एन रंगासामी काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन मंगलम सीट पर वे पिछड़ रहे हैं।
1: Ashok ji, I'll draw your attention to what Sudhanshu Trivedi was, he said a lot of things, but he also mentioned the fact, he was talking about the organization, the BJP as a party's organization, it's the way they approach things. So he talked about Home Minister Amit Shah's ranniti, ki unki ranniti bhi ek factor rahi. Aap uske bare mein kya kahenge, jis tarah se pura chunav ko unhone organize kiya hai?
3: Dekhiye, pichle कई चुनावों में, राज्यों के भी और लोकसभा के चुनावों में भी, हमारे पत्रकार मित्र ये पूछते थे कि जब इनको मालूम है कि हम जीत रहे हैं तो फिर इतना जोर क्यों लगाते हैं
1: जी।
3: अब सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में, एज वी से, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, आप हर तरह से अपना पूरा जोर लगाइए, और उसके लिए योजनाओं को ग्राउंड पर, ज़मीन पर उतारना है। तो जब योजना ड्राइंग बोर्ड पर बनती है तो उसको ज़मीन पर उतारने के लिए आपके पास जो हैं एक ऐसे लोग चाहिए जो उसको मूर्त रूप दे सके। तो इस मामले में अमित शाह पूरी तरह से खरे उतरते हैं, वो हर चुनाव में ज़मीन पर उतरते हैं, स्वयं जा जाकर एक एक चीज़, जिसको पन्ना प्रमुख और ये एक एक बूथ का हिसाब लेते हैं और स्वयं वहाँ पर बैठकर उसको योजना को कार्यान्वित करते। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ हम ये और नहीं भूलें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नीचे की इकाई बना रखी है जिलों के उस स्तर पर, वो लगातार उसको एक तरह से सींचा भी जाता है। लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो पीछे रहकर ज़मीनी स्तर पर इसको एक तरह से ताकत देते हैं और ये लोग मानते भी हैं। और इस वजह से जो मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी, बहुत पार्टियाँ उनके इस पूरे कैंपेन मैकेनिज़्म को कहीं इतनी बुरी तरह से पिछड़ जाती हैं। जैसे कांग्रेस हर चुनाव में इनकी सिस्टम से, इलेक्शनियरिंग से, कैंपेनिंग से, स्ट्रेटजी से बहुत दूर रहती है, लेकिन ममता बनर्जी के पास क्योंकि खुद की मशीनरी भी थी, स्ट्रेटजी भी रही है और वो सत्ता में भी रही हैं, तो वो इस बार भी एक डटकर मुकाबला करती हुई दिखाई दी है। लेकिन बाकी पार्टियां कहां गई बंगाल में? बंगाल में जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने, लेफ्ट फ्रंट ने और कांग्रेस ने पूरा मैदान छोड़ दिया, और बंगाल जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल पहले कुछ थी ही नहीं, उसको आपने इतनी आगे बढ़ने दिया। तो ये सब पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव मशीनरी है, जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से हर कार्यकर्ताओं को लगाना है और राज्यों से भी कार्यकर्ताओं को भेजना है, तो ये तो एक सीखने लायक चीज़ है जो बाकी दलों को सीखना पड़ेगा। सिर्फ उसकी आलोचना करने से बात नहीं बढ़ेगी
2: जी। जी चतुर्वेदी जी, ये जो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने भाजपा कहा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में खासतौर पर, कि भाजपा के राष्ट्रवाद को पश्चिम बंगाल की मतदाता ने स्वीकार लिया है इस बार और उस पर मोहर लगाई है, मूलतः जो हम अभी तक देखते आ रहे थे 2021 तक की, जो मूलतः बांग्ला भाषी लोग थे, जो मारवाड़ी नहीं थे, जो बाहर से आकर नहीं बसे थे, उनका जुड़ाव इन चुनावों से पहले तक भाजपा के साथ पूरी तरीके से नहीं देखा जाता था, एक तरीके से बाहरी पार्टी की छवि थी भाजपा की वहाँ पर। तो जो बीजेपी का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, उससे इस बार बांग्ला भाषी लोगों ने ज़्यादा आइडेंटिफाई किया अपने आप को?
4: देखिए, इसको ना थोड़ा सा और हम पीछे ले जाना चाहेंगे। ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है, उसका गठन उन्होंने 1997

में किया था, और 1998 में वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब टंडन जी भी सरकार में होते थे, उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उसके पहले के चुनावों को आप देखेंगे, खासतौर पर राम मंदिर के आंदोलन के उभार के बाद, कोठारी बंधु जिनका बलिदान हुआ था राम मंदिर के आंदोलन में 1991 में, तो कोठारी बंधु उसी कलकत्ता से आए थे। आप देखेंगे उस समय का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का वो 10% से ज़्यादा था, जो सुधांशु त्रिवेदी अभी 2011 की बात कर रहे हैं, 10% का, 16 की बात कर रहे हैं, तो 10% से ज़्यादा था। लेकिन ममता बनर्जी जब आती हैं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के, तो ये वोट बैंक घटने लगता है। आप देखेंगे कि 4% पर आ जाता है। हालांकि 1998 में एक सीट जीती थी, तपन सिकदर दमदम से जीते थे, 1999 में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तपन सिकदर दमदम से, और शायद कृष्णानगर से सत्यव्रत मुखर्जी जी जीते थे, 2 लोग जीते थे। और एक चीज़ और देखिए कि ममता बनर्जी दबाव बहुत बनाती थी, उनकी छवि ही रही है लड़ाका।

0: तो कोठारी बंधु उसी कलकत्ता से आए थे। आप देखेंगे उस समय का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का वो 10% से ज़्यादा था, जो सुधांशु त्रिवेदी अभी 2011 की बात कर रहे हैं, 10% का, 16 की बात कर रहे हैं, तो 10% से ज़्यादा था। लेकिन ममता बनर्जी जब आती हैं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के, तो ये वोट बैंक घटने लगता है। आप देखेंगे कि 4% पर आ जाता है। हालांकि 1998 में एक सीट जीती थी, तपन सिकदर दमदम से जीते थे। 1999 में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तपन सिकदर दमदम से, और शायद कृष्णानगर से सत्यव्रत मुखर्जी जी जीते थे, 2 लोग जीते थे। और एक चीज़ और देखिए कि ममता बनर्जी दबाव बहुत बनाती थी, उनकी छवि ही रही है लड़ाका की, लड़ने वाले की। तो वो क्या करती थी कि जब समता पार्टी वाला मामला आया, तहलका वाला मामला आया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता चुन ली थी और उसके बाद वो सरकार से अलग हो गई थी। और एक चीज़ और भी है कि टंडन जी ज़्यादा गहराई से बता पाएंगे, हम तो रिपोर्टर के नज़रिए से देखे हैं कि तपन सिकदर जैसे वरिष्ठ नेता को ममता बनर्जी के दबाव में मंत्रिमंडल से हटाया भी गया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 4% जो 2011 और उसके 2004 में या 9 में दिखती है 4% के आसपास, उसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ही साथ रहा है। अब ममता बनर्जी का उभार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। आप देखिए कि बलबीर पूंजी का एक राज्यसभा में दिया हुआ भाषण याद आता है, उन्होंने कहा था कि हमारी ममता दी तो साक्षात दुर्गा है। लेकिन ममता बनर्जी जो है, जब 2011 में सत्ता पाती हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती हैं, वैसे तो साथ छोड़ना और लेना उनका चलता रहा है, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक को खाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बदलती है और आप देखिए कि 2016 में उभरना शुरू करती है, और 2019 में तो उसने लोकसभा चुनाव में जो किया था, आप देखिए 18 लोकसभा सीटें जीत लेना, ये मामूली बात नहीं थी। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ता है। तो ये कहना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पहली बार वहाँ आ रहा है, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बंगाल ने 1991-92-98 में भी देखा था, समझा था, पकड़ा था। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 1967 में जो विपक्षी दलों की कांग्रेस के खिलाफ जो गोलबंदी हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और 24 परगना जिले की गोसाबा सीट से जनसंघ के गोपाल चंद्र मंडल चुनाव जीते थे, रिजर्व सीट थी। तो ये ठीक है कि सत्ता में पहली बार आ रही है
1: जी। अशोक जी,
2: मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि दर्श हमारे श्रोताओं को ये जानना आवश्यक है कि ममता बनर्जी का इमर्जेंस कैसे हुआ। ममता बनर्जी, सौगत राय, दास मुंशी, ये कांग्रेस के यंग टर्क्स हुआ करते थे और ये कांग्रेस के गढ़ को वहाँ मजबूती से संभाले हुए थे, हावड़ा हो, कलकत्ता हो या। लेकिन हुआ क्या कि केंद्र में कांग्रेस सरकार जब से वाम दलों के ऊपर निर्भर रहने लगी, और विशेष तौर से नरसिम्हा राव के समय पर, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। आप हमको पश्चिमी बंगाल में तो वाम मोर्चे से लड़ने को बोलते हो, केंद्र में आप उनके साथ सरकार बनाकर चलते हो। तो ममता बनर्जी ने उस समय एक लीड रोल लिया कि आप तय करो, या तो आप वाम दलों के साथ सहयोग करोगे या फिर हम नहीं लड़ेंगे वाम दलों के साथ। इस पर नरसिम्हा राव और कांग्रेस की मजबूरी रही, बाद में भी हमने देखा यूपीए के समय भी मजबूरी रही। तो इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर, देखिए उन्होंने नाम क्या दिया कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस, अंग्रेजी में इसको ग्रास रूट लेवल कांग्रेस कहते हैं। और ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली वो नेत्री थी, और धीरे धीरे पहले तो वो कांग्रेस का ही वोट बैंक खा गई, फिर वो लड़ी वाम दल से, वाम मोर्चे से लड़ाई करते करते उन्होंने वाम मोर्चे को भी समाप्त किया, लेकिन खाली जगह तो रह नहीं सकती थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो धीरे धीरे वहां पर विकल्प के तौर पर उभरी, और आज उसने तृणमूल कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर कर दिया।
1: एंड नाउ टाइम फॉर सम रिजल्ट्स, जस्टिन। So we have 2 results coming in from the assembly by-elections. 7 assembly by-elections were also held along with the state assembly elections. And the 2 results that have come in have both gone in favor of Bharatiya Janata Party. In Nagaland, in the Koridang assembly seat, Bharatiya Janata Party's Dau Chair Im Chen has won. Whereas in Tripura, again, BJP's candidate Jahar Chakraborty has won from Dharamnagar. So both the seats gone to Bharatiya Janata Party from the by-elections that were held. And now let's go straight to Kolkata, where Akashwani correspondent Sandeepan Das Gupta is with us. Sandeepan, welcome to the program.

0: इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ वहाँ पर, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये जो रिवीजन हुआ वहाँ पर, अब ये जो कोर वोट बैंक था वो डाइल्यूट हुआ है वहाँ पर?
1: नहीं, देखिए जो 83 लाख वोट काटे गए हैं वेस्ट बंगाल के SIR में, उसमें हिंदू वोट ज़्यादा थे, ऐसा नहीं है कि ये माइनॉरिटी वोट थे, लेकिन ये भी साथ में सच्चाई है कि जो वोट काटे गए थे वो या तो मर गए थे या वहाँ रहते नहीं थे। तो ये SIR पर बहस मुझे लगता है बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इसी से वोट परसेंटेज बढ़ी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर 100 वोट पर हम परसेंटेज देखते थे 60 आती थी, अब 80 वोटों पर देखी जा रही। 20 वोट जो थे वो सचमुच में ही डेड वोट था, या तो वो लोग मर गए थे या वोटर नहीं। लेकिन इसको अगर धर्म या उसके साथ जोड़कर देखें तो ये 83 लाख वोट जो कटे, इसमें ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के बहुत सारे वोट काट दिए गए जिसके कारण ये हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जो मैंने अभी पूछा भी प्रश्न उनसे कि जो ये दो फैक्टर आए, अवैसुद्दीन ओवैसी भी वहाँ गए और हुमायूं कबीर सडनली खड़े हो गए कि मैं वहाँ पर एक बाबरी मस्जिद बनाऊँगा, और हमने देखा नौजवान मुस्लिम किस तरह से ईंटें लेकर और पत्थर लेकर वो मस्जिद बनवाने के लिए निकले, और इसलिए फिर ये भी आरोप लग रहा था कि हुमायूं कबीर को तो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। लेकिन कुछ भी हो, ये अल्पसंख्यक वोट में सेंध तो लगी है, इसमें दो राय नहीं है। कहाँ कहाँ लगी है, कितनी लगी है, ये देखने की बात। फिर हम एक चीज़ और नहीं भूलें कि बहुत लंबे समय तक जब वाम मोर्चा सत्ता में था तो मुस्लिम वोट वाम मोर्चे को भी ज़्यादा जाया करते थे, उससे पहले कांग्रेस को भी जाते थे। तो ये जो एक ट्रेंड है, अभी तो भाजपा भी कहेगी कि भाई 2-4% वोट हमें भी मिले हैं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी, मैं समझता हूँ इसके लिए हमको इंतज़ार करना चाहिए।
2: And before we move forward, let me share with our listeners that of the results that have come in from Puducherry, Chief Minister N. Rangasamy has won from one of the constituencies. He contested elections on 2 constituencies and he has won from Thattan Chavdi. Mr. Ashok Tandon, I want to ask you, and then Ashokji, Umeshji, I want to get back to you. In Puducherry, Union Territory, but obviously it has an assembly, 30 seats. And if you look at this Chief Minister, you know, he's seeking a second consecutive term, but he's been in power as Chief Minister since 2001, in the sense that off and on he's been there. So he's been a very popular Chief Minister. How much of what is happening, you know, and for, in fact, even his party, AINRC, is ahead in Puducherry. How much is it to do with his personal, connect with the people, his personal charisma with what's happening in Puducherry?
1: See, traditionally, Puducherry, DMK used to leave Puducherry to the Congress party. And it used to be invariably Congress chief minister.
2: Yes.
1: And now because of changes which have taken place, now it is BJP, AIDMK plus this particular individual who is very popular there.
2: Yes, the chief minister.
1: So it is not really a victory of BJP. BJP is not having much seat there. But turning Puducherry in favor of BJP and AIADMK is something very phenomenal. Traditionally, it used to be Congress which was ruling in Puducherry.
2: In fact, it's interesting because what you're saying about Congress, N. Rangasamy, the present chief minister, he became chief minister and he, you know, as a Congress chief minister in 2001 and then in 2006. Mm-hmm. Later on, it was only in, he had to, of course, he resigned in 2008 and then 2011, he formed his own party, which is AINRC. So, and after that, of course, he joined hands with the BJP and now there's an NDA government. Umesh ji, aap kuch kehna chahenge?
3: Dekhiye, wo Bharatiya Janata Party ki to jeet se zyada wo नारायण स्वामी जी की जीत कही जाएगी। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ इलाका है, तीनों राज्य पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी और तमिलनाडु और असम को भी जोड़ लीजिए, तो इन तीनों में एक चीज़ देखिए कि जो आक्रामक नेतृत्व है, पुदुचेरी को छोड़ दीजिए, तो उस जो जनता के पक्ष में आक्रामक है उसको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, जैसे TVK को वहाँ, भारतीय जनता पार्टी को, और वहाँ असम में हेमंत विश्व शर्मा को भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी एक चीज़ और है कि जो SIR का सवाल पूछा था, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, मैं दूसरे फेज का जो पश्चिम बंगाल का जो 29 अप्रैल को चुनाव हुआ था उसको मैं मतलब नहीं देख पाया हूँ उस तरह से, लेकिन फर्स्ट फेज में जो 152 सीटों पर

0: हुए थे, आप देखेंगे कि SIR की तुलना में, पिछले साल की तुलना में, जो गिनती के हिसाब से देखेंगे, काउंटिंग के हिसाब से, तो 26 लाख ज्यादा वोट पड़े थे, ज्यादा वोट पड़े थे, मतलब परसेंटेज के हिसाब से भी नहीं, गिनती के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि सिर्फ SIR एक मुद्दा तो था, लेकिन सिर्फ SIR ही एक मुद्दा नहीं रहा।
1: और इस बीच आनंद कुमार हमारे संवाददाता भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से जुड़ गए हैं। जी आनंद, इस समय आप वहाँ भाजपा मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्या माहौल है कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह देख रहे हैं आप वहाँ पर इस समय?
2: बिल्कुल, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं बीजेपी के फेवर में, उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफी यहाँ पे हर्ष का माहौल है। और जितने भी हमारी बीजेपी प्रवक्ताओं से बात हुई, बीजेपी लीडर से बात हुई है, सबका कहना है कि जो वहाँ भय का माहौल था उसकी समाप्ति हुई है, और प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में उनके गवर्नेंस मॉडल को लेके लोगों ने वहाँ भरोसा दिखाया है कि वहाँ एक चेंज की जो बदलाव की जो जरूरत थी वो साकार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इलेक्शन के जो रिजल्ट आ रहे, जो ट्रेंड है, उसका असर मेजोरिटी लेवल से काफी आगे पहुंची हुई है। और इसी तरह से आसाम में देखे तो वह तीसरी बार वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनाने जा रही है अपनी, तो इन सब को देखते हुए इनमें काफी उत्साह भरा हुआ है। और सबसे अच्छी बात इसमें एक और खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, शाम के समय पहुंचेंगे, और वो पार्टी कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर को लेके। उन्होंने जिस तरह से मेहनत की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वहां आगे बढ़ाने में, और इन सबको, इन पांचों राज्यों में जो बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर वहां पे बात होगी, किस तरह से उन्होंने गवर्नेंस मेडल को वहां स्थापित किया है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, असम हो, और वहाँ पुदुचेरी में भी एनडीए की वहाँ पे बढ़त है, और डीएमके भी, डीएमके वहाँ पे देखे, अगर तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके भी वहाँ पिछड़ती नजर आई है। तो जिस तरह से इनका एक गवर्नेंस मॉडल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस तरह से बात हुई है दोनों स्टेट में देखे, आसाम और वेस्ट बंगाल में, तो निश्चित रूप से लोगों ने एक बहुत मजबूत भरोसा दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लीडरशिप को लेकर।
3: आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे पास समय रह गया बहुत कम, पर इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, लेट अस गिव यू द लेटेस्ट ट्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी। इन असम, बीजेपी हैज ऑलरेडी टेकन लीड इन 79 सीट्स, इट्स एलाय एजीपी इज लीडिंग ऑन 9 सीट्स एंड बीपीएफ इज लीडिंग ऑन 10। इन केरल बीजेपी इज अहेड ऑन 2 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 60 सीट्स। इन पुदुचेरी द AINRC इज लीडिंग ऑन 6 and BJP is leading on 3. In Tamil Nadu, TVK is leading on 108 seats, whereas in West Bengal, the BJP is leading on 192 seats. And that's all we have time for in this segment of the program. We will be back at 1:10 p.m. Till then, do remain with us and do listen to the Hindi and English bulletins.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों में तय नजर आ रहा है। विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 191 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में धर्मादम सीट से मुख्यमंत्री और सीपीएम उम्मीदवार पिनराई विजयन ने बढ़त बना ली है। नेमोम सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। एक सीट AINRC, एक सीट भाजपा और एक सीट डीएमके ने जीती है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य उम्मीदवार 2 सीट

0: पर आगे चल रहे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने एनडीए के लिए 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है, क्या कहना है आपका?
1: जी जी, आप सही बोल रहे हैं कि एनडीए जो है लगभग 100 की सीटें जो है ना वहां पर आगे चल रही है यहाँ पर। और मेजर सीट्स की बात करें जहां पर कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट थे जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो खुद ट्रेलिंग है, वो खुद पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से,
0: जबकि उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
1: हाँ, लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड्स होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे हैं। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए है, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई, वहां से लड़े, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
0: राकेश जी, ये बताइए,
1: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर, जो अखिल गोगोई वो मार्जिनली आगे हैं, जो बट इट इज इन द फिफ्थ राउंड में है, यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रद्युत बोर्दोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। मेरा बहुत
0: धन्यवाद, धन्यवाद राकेश
1: जी।
0: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनादेश 2026
1: असम केरलम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम
2: एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम जनादेश 2026 में। इस कार्यक्रम में आज सुबह से हम ला रहे हैं आप तक नतीजे चुनावों के। चार राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में जो चुनाव हुए उसके नतीजे सुबह से हम लगातार रुझान जो भी हमें मिल रहे हैं वो हम आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इन रुझानों पर इन नतीजों पर चर्चा के लिए विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अगर हम ताज़ा रुझानों पर नज़र डालें तो
3: Vishal, before we start do that, let's introduce once again introduce our panelists to our listeners. We have with us, of course, senior political analyst Mr. Ashok Tandon, who's been with us for the last couple of hours, and now joining us on the program is another political analyst, N.K. Singh. Mr. Singh, Mr. Tandon, welcome to the program again.
4: Thank you.
2: जी और रुझानों पर नजर डाल लेते हैं। अब असम से जो हमें ताज़ा रुझान मिल रहे हैं, इस समय असम गण परिषद 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है वहाँ पर। रुझानों से जो हमें लग रहा है 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। केरलम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर वहाँ बढ़त हासिल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 63 सीटों पर आगे चल रही है।
3: Talking about Puducherry, the AINRC, which is a part of the NDA government that is in a power there at the moment, it is leading on 5 seats. The other partner in the alliance, BJP, is leading on 2, while the DMK is leading on 3 and the Indian National Congress is leading on 6. Let's move on to Tamil Nadu. In Tamil Nadu,

0: वो सीधे सीधे जो बोल रहे थे उसका भी प्रभाव पड़ा। और डीएमके ने जो पिछले चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उसमें कई वादे वो जो हैं अभी पिछले 5-6 महीनों में पूरा करना शुरू किए
1: जी।
0: तो इसका भी जनता जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है कि आप किस लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे विद्यार्थियों को लैपटॉप, अब इनको याद आया 3-4 महीना पहले कि नहीं हमने हमको विद्यार्थियों को लैपटॉप देना है, उसके पहले ये शांत पड़े हुए थे। तो ये कई चीजें थी और उसी में वहां पे ये पिछले दो सालों से जो इनकी पार्टी थी वो जगह जगह जमीनी स्तर पे जाके काम कर रही थी और जो इनका अभिनेता की छवि थी समाज के बीच में वो तो थी ही। युवा वर्ग जो कि 20% मतदाता है
1: जी,
0: वो तो सीधे तौर पर विजय को देख रहा था
1: जी।
2: जी धन्यवाद सतीश जी। एन के सिंह जी, तमिलनाडु के जो हम नतीजे अब देख रहे हैं और जिस तरीके से टीवीके ने एक तरह से हैरतअंगेज प्रदर्शन किया है, पहली बार विधानसभा चुनाव में ये उत्तरी पार्टी तमिलगा वित्री कशगम, और ये जो प्रदर्शन है टीवीके का, क्या ऐसी क्या इन्होंने मतदाताओं के सामने क्या विचारधारा अपनी रखी इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा जो कि मतदाता खींचे चले गए?
3: देखिए ट्रेडिशनल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम ये एक फ्रेम बनाते हैं कि ये विचारधारा इसकी क्या रही होगी, भाजपा की ये है कांग्रेस। मतदाता जरूरी नहीं कि इन चीज़ों से मुतासिर बहुत ज़्यादा होता हो आज का मतदाता, और तमिलनाडु का तो कल्चर रहा है कि फिल्म वर्ल्ड से आए लोग, आप देखते होंगे कि कई बार अगर फिल्म की दुनिया का कोई मर जाता है तो 10-20 लोग सुसाइड कर लेते हैं,
1: मंदिर बनते हैं,
3: कुछ लोग मंदिर बनवा देते हैं, तो वहां पे पेंशेंट फॉर हीरोज, फिल्म हीरोज, ये कुछ अजीब सा है जो कि बाकी दुनिया को समझ में नहीं आता लेकिन वहां पे है। तो अगर आप देख रहे हैं कि विजयन अचानक 2 साल में ये मेटियोरिक राइज होता है और इलेक्शन स्केल पे वो क्वांटम जंप लेते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जनता का आशीर्वाद उनको उनके फिल्म का जो पास्ट है। आप देखें तमिलनाडु की सारी पार्टियां, जयललिता का मुझे याद है जब जयललिता को करप्शन चार्जेस में जेल किया गया तो अगले इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया
1: जी।
3: तो ये अजीब राज्य है जहाँ अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बेहद पैरामाउंट है, इतनी पैरामाउंट है कि लिंग्विस्टिक आधार पे, इसके अलावा जो उनका अपना कल्चर है उसके आधार पे ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को वहाँ पे एक्सपेंशन में दिक्कत आती है, जहाँ जहाँ भी कल्चरल स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटीज हैं वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, तो बीजेपी को ये दिक्कत आ रही है। लेकिन ये जो इनका राइज है ये बताता है कि नहीं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग तमिलनाडु में कुछ अलग होता है
1: जी। बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू नो यू रेज दैट बीजेपी, इट्स नॉट जस्ट बीजेपी मिस्टर सिंह दैट यू नो वी सीइंग ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट, वी ऑल्सो सी कांग्रेस। नाउ बीजेपी एंड कांग्रेस बोथ आर नेशनल पार्टीज, बीजेपी इज ऑफकोर्स यू नो आउट ऑफ 31 स्टेट्स एंड टेरिटरीज इट्स ऑलरेडी यू नो रूलिंग इन 21, सो इट्स And still we see that, you know, it's still trying to make footprints, it's still trying to make inroads in a state like Tamil Nadu and Kerala. It's particularly about Tamil Nadu, even if, you know, the present government, DMK seems to be on the way out and a new outfit, a new party, which is actor Vijay's TVK is on the way in. But it's still a regional party. So we still see that the national parties, BJP and the Congress, are still not, you know, being able to get their, you know, get a foot in, so to speak. In not, I wouldn't say that they have not been able to get a foot in, but they're still trying to, you know, make a space for themselves. So it's still the regional parties which are ruling the roost. Mr. Tandon, what would you say?
4: No, if we are talking about Tamil Nadu, as I said earlier, since independent, Congress was the dominant party in Tamil Nadu. If I may say, perhaps it was the only party in politics. It produced Kamraj. But then once they aligned with a regional party, that started the downfall of the Congress in Tamil Nadu. And it led to literally wiping out. And now they are a very junior partner of the DMK in this particular election and in the earlier elections also. So the blame really lies on the national party like Congress. Why did they? See, just to avoid a defeat, they aligned with the regional party and then they literally helped the regional party to grow. I mean, if there is one regional party, then obviously another regional party will come up, and that is the history.

0: That Rajan J. Pallan has won by a margin of over 26,000 votes. And the other seat where the Congress candidate has won is Haripad, where Ramesh Chennitala has won by more than 23,300 votes. So those are the results that we have right now.
1: Ji, N.K. Singh ji, Keralam ki baat kare to jo LDF hai, wo 35 seaton par badhat banaye hue hai. और कांग्रेस का नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन इस बार निर्णायक बढ़त बना ली है इस बार उसने, और 103 सीटों पर यह गठबंधन आगे चल रहा है. एलडीएफ का पिछड़ना केरलम में एक तरीके से जो वाम राजनीति देश की थी उसमें एक आखिरी किला केरलम माना जाता था. अब ये नतीजे क्या बता रहे हैं कि वाम राजनीति अब किस दिशा में जा रही है, क्या उसकी स्थिति होने वाली है आने वाले समय में?
2: देखिए, एक बात तो है कि वाम आदर्श जो आइडियोलॉजिकल इसके बोरिंग्स हैं वो कभी डाई नहीं करेंगे. वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वाम भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसलिए फेल हुआ कि भारत आइडेंटिटी ग्रुप्स में बटा हुआ है. और जब जब कोशिश की कि नहीं ब्रॉडर गरीबों का एक आइडेंटिटी वो बनाए जिसमें शोषित हों, एक्सप्लॉयटेड हों, प्रोलेटेरिएट हों, ये हो नहीं पाया क्योंकि वो फिर वापस जाति में चला जाता था, धर्म में चला जाता था. तो आइडियोलॉजी फेल हो गई, इसमें कोई दौर नहीं, इंडिया में इलेक्टोरली फेल हो गई, लेकिन आइडियोलॉजी तो रहेगी. हाँ, यहाँ पे है तो ये तो केरल में आप जानते ही हैं कि वो अल्टरनेट करते हैं. आज यहाँ हैं, आज उन्होंने कांग्रेस को दिया है, अगली बार वो फिर लेफ्ट को देंगे. तो ये अल्टरनेट कर, उनके पास विकल्प है और दोनों गवर्नमेंट्स फेयरली ओके करती है. पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो वहाँ बहुत ही स्मूथ चलती हैं और वेलफेयर की स्कीम सारी इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी होती है. मैं चूंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं केरल के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखता हूँ तो ताजुब होता है. इवन जुडिशियल प्रोसेस आप देखें तो वहाँ पे अगर किसी को चार्जशीट कर दिया गया है तो 91% केसेस में उसका कन्विक्शन सर्टेन है
0: जी.
2: जबकि बिहार में इसके ठीक उल्टा है, सिर्फ 8% रेट ऑफ कन्विक्शन या 11% होता है, बाकी लोग छूट जाते हैं. तो क्वालिटेटिव आप देखें ज्यूरिसप्रूडेंस के भी स्तर पे तो मुझे लगता है केरला बेस्ट गवर्न्ड है और ये अल्टरनेट एक विकल्प है तो करते हैं. बाइपोलर सिस्टम है. हाँ, जब बीजेपी इसमें चली जाएगी, जब बीजेपी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो ये ट्राईपोलर हो जाएगा. और आप जानती हैं कि वहां पे तीन समूह हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड
0: मल, जो हिंदू मलयाली पॉपुलेशन
2: जी. और ये एक ही पोस्ट डाल है, उसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए एजवाज हैं, मुस्लिम्स हैं, तो जिसे कांग्रेस को ब्रांड किया गया आपकी बार की मुस्लिम्स पार्टी है, विच वॉज नॉट द केस क्योंकि कांग्रेस को इसे आप देख रही हैं कि वोट मिला है, सबका मिला है. तो मुझे लगता है कि ये कहना, और कांग्रेस इस वजह से नहीं जीत रही है वहां पे कि कोई यहाँ पे से केंद्र में बैठा मेहनत कर रहा है
0: जी,
2: वो वहां पे कांग्रेस का अपना वजन है, अपना स्ट्रक्चर है
0: जी,
2: जिसकी वजह से जीत रही. तो मुझे लगता है कि कुल मिला के देखें तो केरल एक डिफरेंट स्टेट है और वेरी वेल गवर्न्ड स्टेट है, वहां की मैच्योरिटी समझ में आ रही है
0: जी. एंड लेट्स गेट बैक टू गुवाहाटी वेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट अमृता मधु कैवल्या इज विद अस. अमृता, अर्लियर यू नो आई वाज टॉकिंग टू यू एंड वी वर टॉकिंग अबाउट गौरव गोगोई एंड नाउ द रिजल्ट हैज कम इन. गौरव गोगोई हैज लॉस्ट द जोरहाट असेंबली सीट टू हिज बीजेपी राइवल. What were the factors for his? Because, the Jorhat seat as it is, the sitting MLA was from BJP. But the fact that he had won the bigger, the Lok Sabha constituency, and yet he has lost the assembly constituency in the same segment.
3: I think initially just looking at the, I don't know the numbers, exact numbers, and I don't know how the numbers are stacked against Gaurav, but and which areas have not voted for him.
0: Mm-hmm.
3: But I must tell you that Hiten Goswami, his rival, is an old BJP hand.
0: Yes.
3: He is not a new face and he's been in that area. I have roots in Jorhat and mm-hmm. I have family in Jorhat, and I know that Hiten Goswami is very he's very popular, he's very liked simply because of the fact that he's there for people. He's there with people. If there is a small function somewhere, you see Hiten Goswami being around with his presence. I think people were expecting Gaurav to win this seat because his father has been one of the promised leaders, political leaders of the state, and he hails from that area.
0: Yeah.
3: But Gaurav also has not been particularly present in the constituency much, because he has to deal with his duties as the deputy Lok Sabha leader of the Congress in

0: bring a positive change which can create Sonar Bangla. And they see that change coming under the leadership of Shri Narendra Modi. Second reason, the appeasement politics of Mamata Banerjee has been rejected. This country belongs to everyone, and the majority, the Hindu class, cannot be treated like a second-grade citizen. Third, women empowerment. This has to come. And the Bharatiya Janata Party government will ensure that in West Bengal, Mamata Banerjee, being a female, was seen standing with goons of TMC who were targeting females and violating their dignity.
1: जी एन के सिंह जी, सोनार बांग्ला जो अभी उन्होंने कहा भाजपा प्रवक्ता ने मिस्टर भाटिया ने, कि सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव था भाजपा ने रखा वहाँ पर, और तुष्टीकरण की राजनीति जो वहाँ पर बांग्ला पश्चिम बंगाल में होती रही, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भाजपा ने सवाल उठाए और उन्होंने बताया भी, तो क्या आपको ये जो बातें इन्होंने बताई भाटिया जी ने कही कि जीत का कारण है, क्या इससे आगे भी कुछ और आपको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके पीछे इससे आगे भी कुछ और है?
2: देखिए, ये सवाल थोड़ा डीप, इसका एनालिसिस की जरूरत है। डेमोक्रेसी एक वादा करता है, और हमारा संविधान का जो हमारा प्रीएम्बल है वो वादा करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सबके लिए करता है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह। क्या आज एक अफसर, एक मंत्री का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें कि एक गरीब का बच्चा पढ़ता है, तो उस काउंट पे आप फेल रहे 70 साल से? आखिर जनता को क्या वजह है कि वो हिंदू मुसलमान, चाहे यादव ठाकुर राजपूत ब्राह्मण, ये क्यों करना पड़ रहा है, वो आइडेंटिटी ग्रुप्स में क्यों जा रही है? जब इसको एनालाइज करेंगे कि डेमोक्रेसी के इस सिस्टम में जो किरदार थे वो लोग फेल हो गए वो डिलीवर करने में, तो मजबूरन उसको वापस, आप देखें कि सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे जब जयप्रकाश के आंदोलन के बाद ये शुरू हुआ, तो आपने देखा कि किस तरह लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सारे लोग उभरते हैं। क्या वो डिलीवर कर पाए? अगर नहीं किया तो नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी एक ब्रॉडर कैनवास लेके आ रही है, और वो अपने, क्योंकि अभी देखा आपने गौरव भाटिया ने फिर वापस आ गए, बोले कि हिंदुओं को इस तरह दबने नहीं देंगे,
3: जी जी
2: वो कहा ना, तो अंत में आके यहाँ पे रुकता है। और तब हम रेशनल जो थिंकिंग होती है उसकी जगह हम अपने पहचान समूह के साथ रहते, वो हमें ज्यादा सुरक्षा देता है, ये हमारा मानना हो जाता है। तो हमें लगता है कि इसकी डीप एनालिसिस की जरूरत है कि बीजेपी का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है और कांग्रेस क्यों वो ग्राउंड्स देती जा रही है बीजेपी को। उसकी वजह यह कि लीडरशिप में वो शिद्दत से लड़ने का जज्बा नहीं है जो कि बीजेपी के लीडरशिप के पास है।
3: जी, एंड नाउ बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी हैज जॉइंड अस। मिस्टर त्रिवेदी, वेलकम टू आकाशवाणी। हेलो जी, आकाशवाणी के जनादेश 2026 में आपका स्वागत है।
4: जी
3: सुधांशु जी, अभी जो नतीजे आ रहे हैं भाजपा के लिए तो बहुत ही ज्यादा आशावान, बहुत ही बढ़िया नतीजे आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
4: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं कहना चाहूंगा कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठकर अब ज्वार से सुनामी का रूप धारण कर रही है, और ये एक ऐतिहासिक युगांतकारी निर्णय है। और आसाम में हमने शानदार सफलता हासिल की, हम 100 सीटों के आसपास आ रहे हैं, जो अभूतपूर्व है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, और पश्चिम बंगाल में हमारा नेतृत्व, और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता के चलते हुए संगठन की गतिशीलता, अमित शाह जी की रणनीति, और सबसे मिलकर भारतीय जनता पार्टी आज वो काम कर रही है जो मात्र 15 साल पहले कल्पना से परे माना जाता था।
3: जी,
4: बंगाल में हम 2011 में अप्रासंगिक दल से 2016 में 3 सीटें 10% वोट, 2021 में 77 सीटें 38% वोट, आसाम में हम 2011 में केवल 3-4 सीटें थी, आज लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कड़ी मेहनत, अच्छी नीति और कुशल नेतृत्व के द्वारा क्या अचीव किया जा सकता है वो दिखाई पड़ रहा है।
3: जी, और एक जो हमेशा एक भाजपा का जो एक नैरेटिव है कि डबल इंजन की सरकार, आप जो केंद्र में हमेशा हम चुनावों में देखते हैं कि जो भाजपा प्रधानमंत्री भी कहते हैं और आपके नेता भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का सीधे सीधे फायदा राज्यों को भी होगा।
4: बंगाल में पहली बार डबल इंजन की सरकार आई है, तो निश्चित रूप से अगले 5 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में विकास की दिशा में दिखाई पड़ेगा।
3: जी सुधांशु जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सो व्हाट आई वाज आस्किंग मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर टंडन, आई विल आस्क यू आल्सो, द Prime Minister and all the BJP leaders, when they go out campaigning, they've been talking about, they've been emphasizing the fact, and you know, that why people should vote for BJP, because it gives them the advantage of a double engine government. So it seems to be, you know, I am not sure, but do you think that that's also

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आ गए। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहाँ 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर।

0: और आखिरकार जो इंसिडेंट है हुआ है, उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है, लैक ऑफ जॉब है, और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है, और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट आईयूएमएल ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टीएम शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, आईयूएमएल 22 और सीपीआई 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में एआईएनआरसी की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, हाँ लगातार तीसरी बार सरकार, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
1: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनुर पेगु विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, एआईयूडीएफ 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
3: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
1: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम, उनका भी योगदान रहा है जीत में।
3: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीस मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहां पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहां पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेके बैठे हुए हैं, दो दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घर

0: बाजी है, जो अलायंस बाजी है बीजेपी रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 80 सीट 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3,123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7,317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4,194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3,633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3,219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खास तौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है, उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहां?
3: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। अब पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए

0: जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताओ कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और क्या करता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है, वहीं लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि एक क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर, 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता, सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर, पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: वेलकम बैक टू आकाशवाणी स्पेशल प्रोग्राम ऑन द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। The elections that were held in four states and one union territory. You are with us on Janadesh 2026. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Vishal Sharma, and we have a panel of two very distinguished guests in our studio. Once again, we have senior political analyst N.K. Singh and senior journalist Umesh Chaturvedi with us. Both of you, welcome to the program.
3: Thank you.
4: जी, स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से, अतिथियों से हम बात भी करेंगे, चुनाव नतीजों पर चर्चा भी करेंगे, और फिलहाल सबसे पहले डाल लेते हैं नज़र अभी तक के जो लेटेस्ट जो हमारे पास ताज़ा रुझान है और जो हमारे पास परिणाम इस समय हमें जो मिले हैं। असम की अगर हम नज़र डालें तो असम में भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 22 सीटों पर उसने जीत हासिल कर ली है। असम गण परिषद 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 2 पर उसे विजय मिली है, और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अभी तक उसे कोई सीट नहीं मिली है, कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 21 सीटों पर आगे चल रही है।
2: If we talk about Kerala, then the INC or the Indian National Congress, which is part of the UDF, is leading on 44 seats. It has won 19 seats till now. Its partner IUML is leading on 20 seats, has won 2 seats, and Kerala Congress is leading on 5 seats, has won 2 seats, whereas the BJP is leading on 2 seats, and the CPM, which was part of the present government, the LDF government, CPM is leading on 20 seats. It has won 7 seats. CPI is leading on 4 seats. It has won 4 seats so far.
4: पुदुचेरी के नतीजों पर नज़र डालें तो AIADMK को 1 सीट मिली है,

0: एआईएनआर कांग्रेस को 9 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है, एक सीट पर वो आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और 2 पर वो आगे है। डीएमके 3 सीटों पर आगे चल रही है, एक सीट वो जीत चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, एक सीट जीत चुकी है। ये हुई पुदुचेरी की जानकारी और इसके बाद अब बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ।
1: राइट जी, तमिल टॉकिंग ऑफ तमिलनाडु, नाउ वी हैव रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स फ्रॉम अबाउट 234 सीट्स। The DMK, which was in government till now, is leading on 52 seats. It has won only one seat so far. TVK of actor Vijay, that's Tamilaga Vettari Karagam, is leading on 106 seats. It has won 2 seats right now. The AIA DMK, which is part of the NDA alliance along with BJP, is leading on 54 seats. It hasn't managed to win any seat till now. The BJP is leading on 1 seat and not won any seat till now.
0: पश्चिम बंगाल के रुझानों और नतीजों पर नज़र डालें तो अभी तक हमें वहाँ से कोई नतीजा तो अभी तक घोषित नहीं किया गया है पश्चिम बंगाल से, लेकिन रुझान हमारे पास लगातार आ रहे हैं। 293 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। 293 सीटों में से 194 बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के साथ बीजेपी ने वहाँ पर, भाजपा ने जीत हासिल कर आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। 194 सीटों पर आगे है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर आगे चल रही है।
1: एंड जॉइनिंग अस ऑनलाइन नाउ वी हैव पॉलिटिकल एनालिस्ट विनय सिंह बिहारी, हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कोलकाता। मिस्टर विनय सिंह बिहारी, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026।
2: Thank you
1: Mr. Bihari, you know, we were just telling our listeners the trends.
2: You can name me Vinay ji.
1: So abhi hum apne haan ji bilkul hum apne shrotaon ko bata rahe the ki jo West Bengal se jo trends rujhan aaye hain usme साफ दिख रहा है कि इस बार अब भाजपा जो है वो अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। 193 सीटों पर उसको बढ़त मिल चुकी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 95 सीटों पर अभी जो है उसको बढ़त मिली है। आप ये जो रुझान आ रहे हैं, आप इसमें सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं कि जो पिछली बार की 77 सीट्स थी उसके कंपेरिजन में अब डबल से भी ज़्यादा जो है इस वक्त बीजेपी उन सीटों पर आगे बढ़ी हुई है?
2: एक तो एंटी इनकम्बेंसी लहर थी और सत्ता विरोधी लहर थी, ये तो साफ जाहिर हो रहा था। हम लोग बाजार जाते थे, ऑटो रिक्शा वालों से बात करते थे, सामान्य लोग बिल्कुल खिलाफ बोल रहे थे। आज से नहीं, 3 महीने पहले से जहाँ भी हम जाते थे, चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है। और ये जो 26,000 अध्यापकों की नौकरी बिल्कुल एकदम से, वो 8 साल से 10 साल से नौकरी कर रहे थे और 26,000 अध्यापकों की नौकरी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि कुछ गड़बड़ किया था इन लोगों ने, और जो आरोप था कि जो प्लेन कापी जमा करके आए हैं बिना कुछ लिखे, अपना नाम और रोल नंबर लिख के चले आए हैं बस, वो सिलेक्ट हो गए, और जो मेरिट लिस्ट में जो मेहनत करके गए थे वो नहीं चुने गए। तो 26,000 अध्यापकों की नौकरी का जाना ये बहुत बड़ा शॉक था नई पीढ़ी के लोगों, युवाओं के लिए, कि फिर हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, इससे भी महत्वपूर्ण एक और बात मैं बताना चाहूँगा, बांग्लादेश में जो खालिदा जिया के हटने के बाद जो हिंसा हुई, एंटी हिंदू, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था, और इसी दौरान यहाँ मुर्शिदाबाद कांड हो गया जिसमें वो वक्फ बोर्ड के आंदोलन के बहाने से वहाँ दो हिंदुओं को मार दिया गया गांव में घुस के। वो एक खास कम्युनिटी के लोगों ने घुस के दो हिंदुओं को मार दिया
1: जी।
2: और जो उस तरह का उबाल हुआ और जो यहाँ के पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में जो शॉक एक लगा
1: जी,
2: वो एक बहुत बड़ा शॉक हम लोग देख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात, हम बिल्कुल देख रहे हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं। तो वो शॉक, एक दो जो शॉक लगे, एक तो 26,000 नौकरियों का अचानक से जाना, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार ने किया है इसलिए 26,000 नौजवान युवाओं की नौकरी चली गई, और अब पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, अनिश्चय भविष्य हो गया। और सेकेंडली, वो जो बांग्लादेश बगल में है, पश्चिम बंगाल के बगल में, जैसा कि आप जानती हैं,

0: ट्रेन से अगर चाहे तो 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाएंगे बांग्लादेश, बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। तो इतने नज़दीक एक देश में एंटी हिंदू हत्याएं हो रही हैं और यहाँ मुर्शिदाबाद जैसा कांड हो रहा है, तो यहाँ के हिंदुओं में एक पैनिक क्रिएट हो।
1: जी जी विनय जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार का और सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव रखा, उसने मतदाताओं को किस हद तक छुआ?
0: जी जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स ने छुआ। ये इन एडिशन क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और उस तरह के कल्चर को लेकर जो बात छिड़ी, पश्चिम बंगाल का कल्चर ये तो नहीं था कि हत्याएं हो
1: जी,
0: एंटी हिंदू चीजें हो, सांप्रदायिक बातें हो, ये तो नहीं था जो जो सत्तारूढ़ दल ने किया। तो उसके उसको लेकर, इन मुद्दों को लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से लोगों को कन्वे किया कि देखिए बंगाल की संस्कृति रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से शुरू होकर के और अनेक कलाकार बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हुए, उनकी संस्कृति रही है। मार काट और गाली गलौज और हिंसा नहीं रही है, सांप्रदायिकता नहीं रही है। तो इसको लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से यहाँ रह के काफी उन्होंने जनसभाएं की
2: जी,
0: और इतना बढ़िया उन लोगों ने कन्विंस किया है कि अद्भुत है। और यहाँ शुभेंदु अधिकारी या अन्य भाजपा के लोग भी बहुत ही बढ़िया से उन लोगों ने कन्वे किया है। मुख्य बात यह है कि आम लोगों को उन लोग जो वो बोलते थे वो उनके हृदय में उतर जाता था, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे यहाँ के लोकल भाजपा के नेता हो शुभेंदु अधिकारी और यहाँ के जो भाजपा अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के वो श्रमिक, तो इन लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली ढंग से उन लोगों ने इस बार अद्भुत ढंग से ये हुआ है।
1: धन्यवाद विनय जी हमारे साथ हमसे बात करने के लिए। एनके सिंह जी, अब बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है वो लगभग अब बिल्कुल साफ होती दिख रही है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो डबल इंजन की सरकार, अब हम बंगाल में किस तरीके के बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं?
3: ये एक टेस्ट केस होगा जिसमें कि बीजेपी एक उस इलाके में जो कल्चरली बहुत स्ट्रांग रहा है, जिसकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और अपनी समझ रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो इसमें नेशनलिज्म का सूत्रपात ही यहीं से हुआ है, बंग भंग का जो हुआ मूवमेंट वहीं से नेशनलिज्म मूवमेंट आया है। तो आज बीजेपी जो उसको ओन अप करती है दरअसल वो बंगाल का है। तो अब जब गवर्नेंस पे जब आप आ रहे हैं तो क्रॉस करेंट्स होंगे, और माइंड यू वहाँ पे 27-28% मुसलमान है, तो आप वहाँ पे कैसे लेके, यूपी में तो आपका कम है 18-19% है, लेकिन वहाँ पे एक साइजेबल नंबर है। वहाँ पे डेवलपमेंट क्या सबका साथ सबका विकास वाला हो पाएगा? और होगा तो जो दो वर्गों के बीच में इतनी इस चुनाव के बाद से दुराव हो गया है, उसको इफेक्टिवली आप कैसे कंट्रोल करेंगे, डिलीवर करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और वो भी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज आपकी ख़त्म हो गई हैं। ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया है, अगर आप जंगल महल एरिया में देखेंगे तो एमएसएमई सेक्टर इस समय तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल इन्हीं दो जगहों पे अच्छा रहा है। लेकिन नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम का, तो वो भी नेशनल एवरेज से सवा गुना बंगाल का ज्यादा है। तो उस चैलेंज को आपको लेना पड़ेगा कि डेवलपमेंट भी करें, डेवलपमेंट दिखाई भी दे, सोशल फीचर्स जो हैं, जो सामाजिक दुराव हो गया है उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे, क्योंकि अब आप गवर्नेंस में हैं
2: जी।
3: तो मेरे ख्याल से ये चैलेंज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रहेगा
2: जी। एंड वी हैव रिएक्शंस कमिंग इन फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। लेट्स फर्स्ट लिसन इन टू व्हाट बीजेपी एमपी रवि किशन सेड ऑन द रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स दैट हैव कम इन टुडे।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास, पूरे बंगाली समाज को, गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और उनका वहां बैठना, सेना बल को लगाना, और बंगाली हिंदू, बंगाली सनातनी, बंगाली हर व्यक्ति अपने आप को आजाद कराना चाहता था उस भय की।

0: दुनिया से, वो माफिया और गुंडों से, उस बम के आतंक से, उन हत्याओं से। बंगाल एक सुनार बंगला हुआ करता था, एक लिटरेचर, एक अध्यात्म की जगह, माँ दुर्गा की शक्ति। आज दोबारा बंगाल अपने अस्तित्व को पा लिया, अपनी पहचान को दोबारा पा लिया, दोबारा बंगाल अपने कदमों पे, अपने अध्यात्म, अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ेगा। समस्त भारत को इस बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारत की जीत हुई, भारत के विचारों की जीत हुई कि भारत में एक अलग राज्य बना के ये लोग रह रहे थे, वो ऐसा राज्य जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपोटियों का पूरा आतंक मचा हुआ था, उससे आज हम लोग मुक्त हुए, हमारा भारत मुक्त हुआ 2047 के सपनों में। अब बंगाल इकोनॉमी में आगे बढ़कर हम लोगों की रीढ़ की हड्डी बनेगा इस भारत की। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को।
1: जी, विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त जीत पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कुछ कहा, ये सुनते हैं।
2: बंगाल की जीत एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बंगाल में जिस विचार

0: तो हम मोदी जी को
1: जी, विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त जीत पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कुछ कहा है, ये सुनते हैं।
2: बंगाल की जीत एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बंगाल में जिस विचार को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन्म दिया था, उस विचार का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, और इसलिए बंगाल की जीत हमारे लिए बहुत भावनात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। असम में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, पुद्दुचेरी में हमारी सरकार बनने जा रही है, एनडीए ने तमिलनाडु में भी अच्छा किया और केरल में भी हमने अच्छा किया है। इन पांच राज्यों के चुनावों का जो परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत शानदार है, उसका हम अभिनंदन करते हैं।
3: And now let's listen into what senior Congress leader Imran Pratap Gadhi had to say about the results that are coming in.
4: नतीजों के बाद अगर और मगर का बहुत प्रश्न नहीं रह जाता है। ठीक है, पार्टी ने एक निर्णय लिया था, उस निर्णय के साथ गए थे, लेकिन अंततोगत्वा मैं ये कह सकता हूं कि तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन बुरी तरह से हारा है। बाकी जो भी ताकतें जीती हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ खड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि विजय की जीत पर भी उनको बधाई देता हूं, और मैं ये कहता हूं कि वो जीत हमारी हार नहीं है।
3: Mr. N.K. Singh, we just heard Imran Pratap Gadhi, senior Congress leader, saying he was congratulating the BJP, but he's saying their win is not our loss. How do you interpret that?
5: No, उन्होंने BJP को नहीं congratulate किया, विजय को किया, विजय को.
3: My bad. Sorry. Yeah.
6: So, there is a logical fallacy. Yeah. When you study logic, there is a fallacy which is described as a selective appropriation of facts.
3: जी.
6: Here. Imran Gadhi is saying कि साहब वो हमारी हार नहीं।
3: Mr. Singh, I will interrupt you here because BJP leader Rajiv Pratap Rudi is online with us. Mr. Rudi, welcome to our program.
7: Hi.
3: जी, Mr. Rudi, your comments on the way the BJP has, you know, almost made a clean sweep of these elections.
7: So, let's start with West Bengal.
3: Yes.
7: Now, we never had a government in West Bengal. This is the first time since independence we have had a government there. Yeah. Now, we're going to have a government there. Now, this mandate was truly between the Prime Minister and Mamata Banerjee because we did not have any leadership to project. Now, having said that, it's a fact that with this election, the presence of the Prime Minister has been reimposed and reiterated at the national level that he's just not there in Delhi and other states. He's there even in a place like West Bengal. That how did we reach them? We reached them through the schemes and the programs of the Prime Minister, which possibly was perceived there but not implemented.
3: Right.
7: Now, it's a loss to TMC, whatever maybe the reasons, could be arrogance, could be incumbency, but end of the day, it's a victory of the BJP and the Prime Minister. That's part A. Assam, we had a government.
3: Hmm.
7: We have gone back to the government again. We shall be going back to the government again. So that's not an issue. And the performance of the government and the Prime Minister's leadership has been restored. Then we go to Tamil Nadu. Well, there is a surprise element. We may not be there, but the fact is that DMK is not there anymore. And with a surprise, which many people say was not a surprise, but that's a debatable factor.
3: Yeah.
7: So let us see how the government is formed there in Tamil Nadu. And coming back to Pondicherry is, of course, a very pleasant victory for the BJP again, because we have positioned Kerala, of course, we do not exist, but end of the day, the major states which have gone to the elections, which had stakes in the whole election, was primarily starting from West Bengal. So it's a great achievement for the workers, for the leaders, for the people who have toiled there, the workers and the leaders who had gone there. Phenomenal, I must say.
3: Mr. Rudi, अभी आपने जैसे कहा कि तमिलनाडु और केरल में ऑफकोर्स बीजेपी ने बहुत ज़्यादा तो नहीं सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जो एक आगे इन राज्यों में जो अपनी बढ़त अपनी बनाने की जो कोशिश में बीजेपी आगे बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे?
7: देखिए, आप फिर एक छोटे से सवाल पर चले आए कि जहां हमें जीत हुई है उसकी चर्चा आपने छोड़ दी, जहां हम अभी संघर्ष में है उसकी चर्चा कर दी। तो पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल, और ये मैंडेट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में। दूसरी तरफ हमारे विरुद्ध में वहां अगर किसी को अगर सामने देखा गया था तो ममता बनर्जी को, वो अब नहीं रही। तो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से कि भारत की पकड़ और देश के प्रधानमंत्री की पकड़ पश्चिम बंगाल में। उसके आगे हम लोग आते हैं असम में, जहां हमारी सरकार थी, फिर से एक बार प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार फिर से एक बार वहां बनेगी हेमंतो के नेतृत्व में। जहां तक तमिलनाडु का है, हम वहां पर मेजर प्लेयर नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीएमके अपने आप को ये बात साबित करना चाहते थे कि हम फिर से सरकार में आ रहे हैं। वहां एक बड़ा सरप्राइज है, जो हमारे जैसे लोगों के

0: ये और सबके लिए बड़ा सरप्राइज है, लेकिन ये सच्चाई है। तो वहां भी परिस्थिति सबके लिए बदल चुकी है, ना वहां डीएमके है ना वहां एआईडीएमके है, वहां एक तीसरी पार्टी उभर के आ चुकी है। रहा पांडिचेरी, तो वहां बहुत ही खूबसूरत परिणाम, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में जीत हासिल की है, और मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में वहां भी हमारी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से पूरे भारतवर्ष में, और केरल में हमारी उपस्थिति कम थी, हम वही रह गए, और प्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरे भारतवर्ष में अपनी ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिख रहा है।
1: राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी उमेश चतुर्वेदी जी, रूडी जी ने जो कहा कि पूरा श्रेय जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में खासतौर पर जो जीत है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, और इस बार जो हमने देखा प्रचार के दौरान भी, अमूमन प्रधानमंत्री जो हैं हमेशा प्रचार के बाद दिल्ली लौट आते थे, लेकिन अब की बार कई बार वो कोलकाता में रहे, राजभवन में रुके, रात रात भर रुके और दो दो दिन तक रुके, और इसके अलावा जो है जो मोदी जी ने जो कहा वहाँ पर कि हर सीट पर मैं उम्मीदवार, इसने कितना असर किया?
3: मोदी जी का जब से भारतीय राजनीति में उभार हुआ है और जितने भी चुनाव होते हैं लगभग हर जगह वो ऐसी ही बात कहते हैं, तो इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेक जो है सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा संभावनाएं भी थी पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए उन्होंने पूरी जान लगा दी। पीछे की जो गलतियाँ थी 2021 में भी आप याद कीजिए, लगता था भारतीय जनता पार्टी को कि वो सरकार बना लेगी, तो मुझे लगता है कि उन गलतियों से सबक सीखने की एक कोशिश थी और जो कोई भी कसर बाकी रह जाए ऐसा उन्होंने किया। और एक चीज पश्चिम बंगाल की हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी जी ने भी उसी पर बहुत जोर दिया, देखिए, और हम लोग चुनौतियों की बात कर रहे थे, एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में नई सरकार के लिए वहां का पारा क्लब जो कह सकते हैं, जो मोहल्ला क्लब है, वो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि जो कट मनी का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, पश्चिम बंगाल में बहुत पुराने समय से पारा क्लब रहे हैं जहां लोग लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो इन कमेटियों को, क्योंकि सीपीएम के बरक्स जब वो चुनाव जीत करके आई थी ममता बनर्जी, तो सीपीएम की जो स्थानीय लोकल कमेटियां जो होती थी उन कमेटियों की तुलना में उन्होंने पारा क्लब को मजबूत किया था, 1,01,000 रुपये का वो दिया था, सहयोग दिया था। बाद में वो पारा क्लब इतने ताकतवर हो गए कि स्थानीय जो प्रशासन था उस पर भी वो हावी रहने लगे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लब बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, तो इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज जो चर्चा में हम लोग बहुत भूल जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीता है उसके तो कोशिशों को हम लोग याद करते ही हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो वहाँ शिक्षकों को, अब हर राज्य में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सरकारी नौकरी वाला तबका है वो शिक्षक का है, खासतौर पर प्राथमिक शिक्षक, शिक्षकों को अभी भी छठवें वेतनमान का के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम आप सरकार में आते ही आपको सातवां वेतनमान देंगे, और एक चीज़ और है कि ये हर शिक्षक कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं ये भी बड़ा रोल प्ले किया है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि कितनी जल्दी उनको ये देने जा रही है।
1: Mr. Singh, I want to come back to you and I want to stay on with West Bengal, that like we're saying, Trinamool Congress at the moment has been, you know, is leading on 94 seats. That's less than half the, not less than, but that's like little more than half the seats that it won the last time. But that doesn't mean that the party or the its leader, Mamata Banerjee, is finished. You know, it still has a stronghold. What do you see next for the party and for its leader, Mamata Banerjee?
4: No, that will be the task of the BJP now, whether to finish it for good, I mean completely.
1: But is it going to be that easy for BJP?
4: Well, it depends how it is conducting itself in the governance. And what Umesh has said is very valid. The entire power structure is such that in the authority, civil society is playing a vital role in corruption. Mm-hmm. Now you have to do two things. One, eliminate this corruption. These bodies should not be a den of corruption. Mm-hmm. And still, they should be harbinger of your policies. So how to convert these units into a non-corrupt unit, well-functioning, well-oiled units, and still, and that is a non-state organizations, yeah, non-state actors, and still further your policy.

0: disease through that. So that is an uphill task. And the day you stop giving them cut in the deals, that is when Mamata Banerjee's role will come in.
1: Okay.
0: So BJP has to be very cautious in approaching the process of governance.
1: Right.
2: जी एन के सिंह जी, पूरे अगर राष्ट्रीय फलक पर हम बात करें तो जो दो गठबंधन हैं मुख्य तौर पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और अब पश्चिम बंगाल और असम, ये जो जीत हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की, तो जो ये इंडिया ब्लॉक है अभी तक आपको क्या लगता है कि ये एक विभिन्न मुद्दों पर एक एक दिखाता तो है कि हाँ विरोध प्रदर्शन जैसी सहमति तो दिखती है इंडिया गठबंधन में, लेकिन जो एक राजनीतिक मतभेद इनके बीच में बने हुए हैं अभी भी, जो इसके गठबंधन के जो सहयोगी हैं, और संख्या बल के आधार पर ये गठबंधन जरूर बना ले रहे हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक सामंजस्य की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं ये इंडिया ब्लॉक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और केवल बस पार्लियामेंट में कुछ प्रदर्शन के दौरान तो कुछ सहमति बनती दिखती है, लेकिन जब वोट शेयरिंग या सीट शेयरिंग की बात आती है, समझौते की बात आती है चुनाव में जाने से पहले, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। क्या आपको लगता है कि ये लेक कर रहा है इंडिया ब्लॉक?
0: सेफोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, IUO, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, ये बिल्कुल जीरो पे है। इंडिया ब्लॉक दरअसल एग्जिस्ट नहीं करता
1: जी।
0: और जब भी ऐसे चैलेंजिंग ओकेजंस आते हैं, जैसे दिल्ली का इलेक्शन है तो आप और कांग्रेस, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है तो कांग्रेस और TMC, तो वहां पे ये एक्सपोज हो जाता है कि नहीं, हम अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे। चलिए ये भी ठीक है, नेशनल लेवल पे तो सहचित्ता हो, देयर मस्ट बी सम कॉमन प्रिंसिपल्स ऑन विच यू थ्राइव, लेकिन वहां पे भी आप पाएंगे कि कम से कम यहां पे ममता बनर्जी को अगर आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो तमिलनाडु में सारे मिलके कांग्रेस को सपोर्ट करें, पर ये तो कभी नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है कि अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स बिल्कुल जीरो पे है और इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट नहीं करता। वो कुछ ऐसे ही किताबों में है, कभी कभी पार्लियामेंट में दिखाई पड़ जाता है ओकेजन स्पेसिफिक। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए अब यूनिटी करनी पड़ेगी, और वो ऐसी हो कि जब जब जनता सत्ता से नाराज हो तो कम से कम उसको दिखाई दे कि हाँ एक यूनिटी है, हम उधर जा सकते हैं। अगर ये विकल्प नहीं रहेगा तो वो मजबूर होके सत्ता के साथ खड़ी होगी, सत्ता को वोट देगी, तो ये मजबूरी ना आए इसके लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन यूनिटी की जरूरत है। लेकिन क्या कांग्रेस, जो रैलिंग पॉइंट है, आज गिरे दिन में भी कांग्रेस को 13 करोड़ वोट मिलते हैं, आज गिरे दिन में भी सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई अगर बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिल रहे हैं तो 13 करोड़ कांग्रेस को भी मिलते हैं, हम कांग्रेस को, लेकिन क्या ये बरकरार रहेंगे
1: जी?
0: इसके लिए अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आपको, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और राहुल गांधी पे है जो कि पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो क्या उन ओकेजंस पे वो वाकई खड़े होके सहचित्ता बना पाते हैं? मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस बुरी तरह मिस कर जाती है।
1: लेट्स मूव ऑन टू तमिलनाडु। लाइक वी आर सेइंग दैट इट सीम्स ऑलमोस्ट सर्टन नाउ दैट TVK ऑफ एक्टर यू नो विजय इज ऑन इट्स वे टू मेक द नेक्स्ट गवर्नमेंट, बट फ्रॉम व्हाट वी कैन सी द रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स शो दैट द पार्टी इज all in all, you know, 107 seats. It has won 5 seats. It is leading on 102. So it's still about 11, it's still short. 11 seats short of the majority.
0: Yeah.
1: Now, before the results, Vijay had very clearly said that it will not align with any party. But what now do you see if it falls short of the majority? Where do you see it moving? DMK, AIADMK, or even BJP, if it can?
0: A very valid question at this juncture. This was the question that was to be delved deep into. See, one thing is there, willy-nilly.
1: Yeah.
0: All these months that I had been tracking this leader,
1: yeah,
0: I found that there is a very palpable lurch towards BJP.
1: Okay.
0: He may not say there, and he had said openly that BJP is number one enemy, number two enemy perhaps.
1: Yeah.
0: DMK is also enemy. But now I think that somewhere they will align with BJP and its group.
1: Right.
0: So I think 11 members not difficult.
1: Yeah.
0: And they will amass that much of a strength and will form the government.
3: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूँगा कि चुनावों के पहले, मतलब जब चुनाव

0: प्रक्रिया चल रही थी, तो अमित शाह ने भरपूर कोशिश की कि AIDMK के साथ TVK का और NDA का जो वो है पूरा अलायंस बन जाए, लेकिन जो पलानी सामी जी हैं वो एकदम से तैयार नहीं हुए और वो तो विजयन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देने तक को तैयार नहीं थे।
1: उमेश, यही टैक्टिकल होशियारी विजयन ने की कि वो साथ में वो भी नहीं गए तो आज इतनी सीटें मिली है, वरना AIDMK आज चीफ मिनिस्टर बना रहा होता और विजयन सेकंड नंबर पे होते
0: जी।
1: तो ये अच्छा हुआ कि विजयन ने अपना किया और उससे उनको गेन हुआ।
0: तो अनुभा जी के सवाल का जवाब यही है कि ज्यादा संभावना यही है कि बीजेपी मीडिएटर बने और AIDMK के साथ सरकार बने।
2: और एट द एंड ऑफ द डे यू नो पॉलिटिक्स नथिंग बट
1: चीफ मिनिस्टर, आई एम सॉरी, और चीफ मिनिस्टर हो विजयन और AIDMK डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए
2: जी। जैसे मैं कह रही थी कि राजनीति कॉम्प्रोमाइज का ही दूसरा नाम है और ये तो जो जो जो संतुलन होता है कौन बनेगा कि सब तो चलता ही रहता है। सो वी आर रीचिंग द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम एंड बिफोर वी वाइंड अप दिस सेगमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम लेट्स क्विकली गिव यू अनदर अपडेट ऑन द ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स कमिंग इन। विशाल
3: जी, असम की 126 में से सभी सीटों के रुझान हमारे सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 28 सीटें जीत चुकी है।
2: इन केरल द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 38 सीट्स। इन पुदुचेरी AINRC इज लीडिंग ऑन
3: और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।
2: एंड दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर इन दिस सेगमेंट। डू जॉइन अस एट 7:10 PM व्हेन वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। थैंक यू, नमस्कार।
4: जनादेश
5: 2026। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों के अनुसार सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना तय नजर आ रहा है। विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में आगे हैं। रुझानों के अनुसार विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94, AJUP 2, AISF 1, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 4 के परिणाम मिले हैं। भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं और 78 पर आगे चल रही है। कांग्रेस 21 सीटों पर आगे है और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 1 सीट पर विजय हासिल की है, जबकि 9 पर आगे है। असम गण परिषद 8, AIUDF 2, RJRD 2, तृणमूल कांग्रेस 1 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 में से 15 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। AINRC ने 9 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 पर आगे है। कांग्रेस ने LJK 1 सीट पर आगे है। AIADMK ने 1 सीट जीती है। NVMK 1 सीट पर आगे है। DMK ने 1 सीट जीती है और TVK 1 सीट पर आगे है। निर्दलीय को 1 सीट मिली है और वो 2 पर आगे है। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 23 के परिणाम मिल गए हैं। कांग्रेस ने 11 सीटें जीती हैं और 52 पर आगे है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं और 21 पर आगे है। IUML ने अब तक 2 सीटें जीती हैं और 2 पर आगे चल रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 6 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं और वो 5 पर आगे है। RSP ने 3, भाजपा 2, RJD 1, RMPOI 1, केरल कांग्रेस जैकब 1, CMPKSC 1 तथा निर्दलीय 4 सीटों पर आगे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 2 TVK 106, DMK ने 1 सीट जीती है और 54 पर आगे है। AIADMK 54, IUML 2, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 2, DMK 1, VCK 1 और CPIM 1 और अन्य 1 सीट पर आगे है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम. पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं. असम और पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है. स्वतंत्रता के बाद पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 148 सीटों के जादुई आंकड़े की आवश्यकता होगी. विधानसभा में 294 सीटों में से 292 के रुझान मिल गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 194 सीटों पर आगे चल रही है, एक पर आगे है. तृणमूल कांग्रेस 91 सीटों पर आगे चल रही है और उसने एक सीट जीत ली है. भारतीय कांग्रेस पार्टी और AJUP दो दो सीटों पर आगे है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा AISF को एक एक सीट पर बढ़त प्राप्त है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं. असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है. विधानसभा की 126 सीटों में से 39 के परिणाम मिले हैं. भाजपा ने 31 सीटें जीती हैं, उसके सहयोगी AGP को दो और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीट मिली हैं. AIUDF एक सीट मिली है. शेष 87 सीटों पर मिले रुझानों के अनुसार भाजपा 50, AGP 6, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5, कांग्रेस 21, AIUDF 1, रायजोर दल 2 और अन्य 2 सीट पर आगे हैं. भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालू कबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं. भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोहार सीट पर हरा दिया है. 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. और अब बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र से, जो इस समय भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं. जी दीपेंद्र, पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा का शानदार प्रदर्शन हो रहा है, कैसा माहौल है मुख्यालय में?
2: जी लवलीन, पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जो है जश्न का माहौल है और पार्टी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं. खासतौर पे बंगाल की जो झालमुड़ी है और वहाँ की रसगुल्ला जो बहुत ही फेमस है, एक दूसरे को खिलाकर जश्न मना रहे हैं. बता दूं कि BJP पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और वहीं लगातार तीसरी बार असम में भी सरकार बनेगी. शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुँचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. उनके स्वागत के लिए जो है पार्टी मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो चुकी है. दिल्ली पुलिस के अलावा जो SPG की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है और मुख्यालय में आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी कर दी गई है और पार्टी कार्यकर्ता खास तौर पे मुख्यालय के अंदर और बाहर काफी संख्या में यहां मौजूद हैं और वो जश्न मना रहे हैं. जी लवलीन,
1: धन्यवाद जानकारी के लिए दीपेंद्र. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम TVK के इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है. TVK ने विधानसभा की

34 सीटों में से 101 पर बढ़त बना ली है और एक पर वो आगे है। राज्य में विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है। कांग्रेस एक पे बढ़त है, चार उसने जीती हैं। AIADMK 50 बढ़त, PMK 5, DMK 2, IUML 2 और भाजपा 2। केरल में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 64 के परिणाम मिल गए हैं। कांग्रेस ने 28 सीटें जीती हैं, 36 पे वो आगे चल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 14 सीटें जीती हैं, 11 पर आगे चल रही है। IUML ने अब तक 7 सीटें जीती हैं, 15 पर आगे चल रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे चल रही है। केरल कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं और 3 पर आगे है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड में एक एक सीट जीती है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में एक एक सीट पर आगे है। कांग्रेस ने कर्नाटक में एक सीट जीती है, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP दूसरे उपचुनाव में आगे चल रही है। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 में से 21 सीटों के रुझान और परिणाम मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे है और 2 सीटें जीत ली हैं। AINRC ने 9 सीटें जीत ली हैं, एक पर बढ़त बनाई है। कांग्रेस ने एक सीट जीती है, DMK ने एक जीती है और एक पर आगे बढ़ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Assam Legislative Assembly is 64 seats. In Kerala, trends and results available for all 140 seats. Congress has won 5 seats and leading in 57 constituencies. States ruling CPM has won 4 seats and is ahead in 23 seats. And its ally CPI is leading in 9 seats. RSP 3, Kerala Congress is leading in 7 and BJP in 2 seats. Results have also come in from Puducherry out of 13 results declared. Ruling AINRC has won 6 seats and is leading in 4 seats. Congress has won 1 seat and is ahead in 6 seats. DMK has won 1 seat and is leading in 3 seats. BJP has won 2 seats and is leading in 2. As per Election Commission, barring Puducherry, several rounds of counting are due to be taken up. In assembly by-elections for 7 constituencies across 5 states, BJP has won a seat each in Gujarat, Tripura and Nagaland and is leading in 1 each in Maharashtra and Karnataka. Congress has won a constituency in Karnataka, while in Maharashtra, BJP ally Nationalist Congress Party, NCP, is leading in the other constituency where by-polls was held. Here is the overall tally in West Bengal. BJP is leading in 190 and has won 6 seats. TMC leads 89, wins 2. In Assam, BJP leads in 38, wins 43. Congress leads 21. In Tamil Nadu, TVK leads in 95, wins 11. AIADMK leads 47. And DMK leads 56 and wins in 3. And that is the end of this news bulletin.
1: Neram 4 mani 10 nimidam. Akash Vani.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்ட் 100.1.
1: தேநீர் நேரம் கேட்பதற்கு முன்
3: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஒரு ஆகாஷவாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Nakshan has invited applications for the post of Chief Executive Officer Managing Director in Indo-Russian Rifles Private Limited, a defence sector joint venture. The position requires senior-level leadership experience in defence, manufacturing or allied strategic sectors. The last date for receipt of applications is 7/5/2026, up to 15 hours, and the detailed eligibility conditions and qualifications and requirements and application format is available on the website. Kindly visit www.ddpmod.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान असम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सीनियर असिस्टेंट एक पद सामान्य वर्ग के लिए, जबकि एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वेतन स्तर रहेगा L5। कुल पद हैं 2, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, जबकि असिस्टेंट का एक पद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। वेतन स्तर L4, कुल पद 1 और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की वेबसाइट www.nidj.ac.in अथवा नेशनल करियर सर्विस www.ncs.gov.in पर भी आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2 तथा सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1। विभाग हैं जनपद अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विद्युतीय एवं सूक्ष्म कणिका अभियांत्रिकी विभाग, सूक्ष्म कणिका एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग तथा यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग। कुल पद 15 हैं, जिनमें से अनारक्षित 8 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। एसोसिएट प्रोफेसर के कुल पद हैं 10, जिनमें 4 सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। जनपद अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विद्युतीय एवं सूक्ष्म कणिका अभियांत्रिकी विभाग में ये पद उपलब्ध हैं। प्रोफेसर के कुल 5 पद हैं, जो जनपद अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विद्युतीय एवं सूक्ष्म कणिका अभियांत्रिकी विभाग में उपलब्ध हैं, और कुल 5 पदों में से 4 सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि 1 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नियमित पद एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और प्रोग्रामर। संविदात्मक पद हैं चेयर प्रोफेसर, विजिटिंग फेलो और रिसर्च असिस्टेंट। ऑनलाइन आवेदन जमा करने, आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि है 7 मई 2026। संलग्नकों के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि है 13 मई 2026। चेयर प्रोफेसर के लिए नामांकन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in/rac। मत्स्य पालन विभाग सहायक आयुक्त मत्स्य पालन के 2 पदों की रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत पात्रता मानदंड जैसे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बायोडाटा प्रारूप आदि के लिए आप देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट www.dof.gov.in। पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में 2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। पदों के नाम हैं उपाध्यक्ष मुंबई पोर्ट प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 28 मई 2026।

0: अभ्यर्थियों को आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से भेजना होगा onlinevacancy.shipmin.nic.in। अधिक जानकारी के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.shipmin.gov.in। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं। पद के नाम हैं कोर्ट मास्टर 2 पद, प्रधान निजी सचिव 1 पद तथा वैयक्तिक सहायक 1 पद। पदों के बारे में अधिक जानकारी, विवरण, नियम और शर्तों आदि के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट आप देख सकते हैं। वेबसाइट का पता है jalshakti-dowr.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास आज उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी बराबर हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ आज मैं हूं मुनीश शर्मा और हमारे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: हेलो मुनीश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट मुनीश। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. BJP heads for landslide victory in West Bengal Assembly elections.
1: और दोस्तों, असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने को है तैयार।
2: In Tamilnadu, actor turned politician Vijay's party TVK delivers a super hit on debut, ruling DMK on the third spot. Chief Minister MK Stalin trails.
1: और केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF स्पष्ट बहुमत की ओर।
2: NDA ऑन वे टू रिटेन पावर इन पुदुचेरी।
1: जबकि विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीत ली है।
2: Yes, sir. Now, listeners, it's time for a segment, Dateline Indian, which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India's rise as a global medical and wellness destination. And well, listeners, today someone sitting thousands of kilometers away chooses India for the surgery, recovery or even peace of mind.
1: दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि देश में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया भर से लोगों को सीमाएं पार करके यहां खींच लाती है? घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए। चलिए आज इसी के बारे में बातें करते हैं।
2: Yes, and across the world today, healthcare is becoming expensive, waiting periods are getting longer, and lifestyle diseases are quietly rising. So people are asking a very practical question: where can I get high quality treatment without draining my life savings?
1: और इसीलिए इसका जवाब तेजी से भारत बनता जा रहा है। भारत इस क्षेत्र में कोई इत्तेफाक से कदम नहीं रख रहा है। ये एक ऐसा देश है जहां इलाज हमेशा से जीवन का एक हिस्सा रहा है, चाहे वो सर्दी जुकाम होने पर दादी नानी का काढ़ा हो या फिर सुबह सवेरे पार्कों में किए जाने वाले योग सत्र। हमने डॉक्टरों और पारंपरिक उपचारों दोनों पर ही भरोसा किया है।
2: ऑफ कोर्स, एंड हीलिंग हियर हैज ऑलवेज बीन होलिस्टिक। नाउ दैट सेम फिलॉसफी इज रीचिंग द वर्ल्ड, इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन टू पावरफुल पीपल।

0: illness. On one side, there's advanced medical care, including complex surgeries, organ transplants, cancer treatment that are performed with cutting-edge technology.
1: और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वेलनेस और रोकथाम भी है. योग, आयुर्वेद, ध्यान, ये ऐसी पद्धतियां हैं जो बीमारी का इंतजार नहीं करती, बल्कि उसको होने से रोकती हैं. तो एक ऐसी जगह जो आपकी बीमारी का इलाज भी कर सके और आपको ये भी सिखाए कि भविष्य में उससे कैसे बचा जाए, भारत ठीक यही चीज पेश करता है.
0: Yes, and through the flagship Heal in India initiative, the government is positioning the country as a premier destination for integrated and holistic healthcare. It has two vibrant pillars. First is medical tourism, which focuses on curative interventions such as complex surgeries by specialized hospitals and healthcare institutions.
1: दोस्तों wellness tourism दरअसल ये योग, आयुर्वेद, naturopathy और अन्य आयुष पद्धतियों जैसी पारंपरिक प्रणालियों के जरिए निवारक और समग्र कल्याण पर केंद्रित है. और ये दोनों स्तंभ मिलकर भारत के medical value travel ecosystem की नींव को बनाते हैं.
0: And let's create a simple hypothetical example. A patient from another country comes to India for heart surgery. The procedure is successful, the cost is far lower than back home. And the bonus point is that during recovery, they're introduced to yoga, breathing techniques. They're guided on diet through Ayurveda. They learn ways to manage stress. They don't leave with stitches alone. They leave with a new lifestyle.
1: लेकिन क्या ये एक तरह की अलग तरह की स्वास्थ्य सेवा नहीं है? और पूरी दुनिया इसे जरूर नोटिस तो कर रही है. हर साल लाखों विदेशी पर्यटक भारत आते हैं. असल में एक ही साल में 5 लाख से ज्यादा लोग खासतौर पर मेडिकल उपचार के लिए यहां आए, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. और इसकी वजह असल में कुछ खास बातें हैं. पहली तो है क्वालिटी. भारत में कुशल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों का एक बड़ा समूह पहले से मौजूद है.
0: Yes, and the second reason, Munish, is that technology hospitals here follow global standards with strict safety and quality checks. And third, and this surprises many, it includes affordability. Treatments that cost a fortune elsewhere are available here at a fraction of the price.
1: और ये नहीं भूला जा सकता है अभिषेक कि भारत योग की जन्मभूमि और आयुर्वेद का घर है. एक ऐसी धरती जहां उपचार सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है. आज इन परंपराओं को न सिर्फ सहेज कर रखा गया है, बल्कि इन्हें सक्रिय रूप से बढ़ावा भी दिया जा रहा है. जो लोग आयुष उपचार के लिए भारत आना चाहते हैं, उनके लिए खास वीजा की व्यवस्था है. और अब तो बीमा में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भी शामिल हैं.
0: एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स आर रिकॉग्नाइजिंग इंडियास लीडरशिप इन होलिस्टिक हेल्थ. एंड स्लोली द वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग वी हैव नोन फॉर सेंचुरीज, दैट इज हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट क्योरिंग डिजीज, इट्स अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस.
1: दोस्तों एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए. हम कितनी बार तनाव को नजरअंदाज कर देते हैं, हम कितनी बार अपनी देखभाल करने में देर कर देते हैं. हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या होगा अगर वेलनेस कोई बाद का विचार न होकर हमारे जीने का एक तरीका बन जाए.
0: एंड दैट्स द आइडिया इंडिया इज शेयरिंग विद द वर्ल्ड. एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इन रैंडम, देयर इज अ क्लियर विजन बिहाइंड इट. न्यू मेडिकल हब्स हैव बीन प्लान्ड, प्लेसेस वेयर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड वेलनेस एग्जिस्ट टुगेदर.
1: और अब तो भाई अभिषेक देखिए कि हवाई अड्डे जो हैं वो मरीजों का स्वागत करने के लिए खास मदद की व्यवस्था कर रहे हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विदेश में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए भारत में अपने पूरे इलाज की यात्रा की योजना बनाना आसान बना रहे हैं, सलाह मशवरे से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक. इसलिए अब ये कोई मुश्किल काम नहीं रहा, ये पूरी तरह से आसान भी है और सुचारू भी है.
0: एंड टू साइट सम स्टैटिस्टिक्स मुनीश, according to the medical tourism index 2020-21, India ranks 10th among the top 46 medical tourism destinations globally, 12th among the world's top 20 wellness tourism markets, 5th among the top 10 wellness destinations in the Asia Pacific region. And India is becoming a place where the world comes to heal, a country where science meets a tradition, where recovery includes both medicine and mindfulness.
1: दरअसल दोस्तों प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक उत्कृष्टता तक भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा आंदोलन का सिर्फ अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि वो देखभाल, करुणा और उपचार की एक ऐसी दृष्टि के साथ इसका नेतृत्व कर रहा है जो वास्तव में परिपूर्ण प्रतीत होती है.
0: And now let's move to one of the most discussed topic of the day in a country today, that is the assembly

0: elections and celebrations underway at BJP headquarters in New Delhi following the BJP's outstanding performance in West Bengal and Assam. Our correspondent Dipendra Kumar spoke to some of the women party workers who credited Prime Minister Narendra Modi's leadership and governance model for the victory in these states.
1: पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है. जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं. चलिए उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं इस जीत को.

ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और यहाँ पर बंगाल के झालमुड़ी और बंगाल के रसगुल्ले जो है एक दूसरे को बांट रहे हैं। आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं इस जीत को।

0: पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री थी, फिर भी जो है महिलाओं ने लगता है भाजपा को साथ दिया, क्योंकि 200 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसमें?
1: बंगाल भयमुक्त, रोगमुक्त, सारे आपातकाल मुक्त हो गया, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मैं ये कहूंगी कि ममता बनर्जी एक महिला थी, लेकिन उनके राज्य में जितना महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता की शिकायत हुई, बहन बेटी सर्वसार कर दिया पूरे बंगाल को। दीदी खेला ना होवे, मेला होवे मेला।
0: आप ये बताएं कि जीत का श्रेय किसे जाता है?
2: जीत का सारा वो जाता है मोदी जी को, क्योंकि एक मोदी जी है जो देश को बदल सकता है, और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको देख लिया, एक है तो मोदी जी है। जय श्री राम
1: हिंदुत्व को और सनातन धर्म को, क्योंकि आज सनातन धर्म की वजह से ये बंगाल की जीत हुई है। जय हो मोदी की, जय बंगाल, जय श्री राम, जय श्री राम।
0: तैयारियां यहां जोरों पे है, शाम में प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में लगभग 6 से 6:30 के बीच में प्रधानमंत्री यहां आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
3: और दोस्तों अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास हमारे लिए उनके पास।
4: यस एंड स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम बेंगलुरु। An Indian Institute of Horticultural Research in Hesarghatta village near Bengaluru had organized an awareness campaign on a balanced use of fertilizer under Mere Gao Mera Gaurav initiative, and the farmers were briefed by the agriculture scientist about the precise quantity of fertilizer to be used according to the soil quality and nutrient management. We have a report.
5: Under Mera Gao Mera Gaurav initiative, the Indian Institute of Horticultural Research, IIHR, reached out to the farmers to create awareness about the balanced use of fertilizers and encourage eco-friendly alternatives. During the intensive awareness campaign, the scientists of the research unit spoke about sustainable soil health management, scientific nutrient management, and utilization of eco-friendly alternatives to chemical fertilizers. During the technical sessions, the experts emphasized on soil testing as the foundation for precise nutrient management. The ICAR IIHR technologies such as ARCA Microbial Consortium, ARCA Decomposer, Crop Specific Micronutrient Formulations, ARCA Fermented Coco Pit, and ARCA Sasya Poshakras were demonstrated before the farmers. They highlighted the adverse effects of excessive chemical fertilizers and stressed on the need to adopt biofertilizers, green manures, vermicompost, and integrated nutrient management practices for sustainable agriculture. The agri-scientists showed how imbalanced use of fertilizers degrade soil health, increase costs, and reduce productivity. They also addressed the concerns raised by the visiting farmers. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
3: अपने दोस्त और उनकी दोस्ती, ये किसी के भी जीवन का अभिन्न अंग होती है। दोस्तों के साथ आप सुख दुख के पल साझा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कई उलझने जो परिवार में बता पानी जरा कठिन होती हैं, उन्हें भी हम लोग अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, और यही दोस्ती दरअसल कभी कभी किसी का जीवन संवारने का भी काम करती है।
6: महाराष्ट्र के बीड जिले का एक शहर है अंबाजोगाई। साहित्य, कला और सांस्कृतिक विरासत को आज के युग में भी इस शहर और यहाँ के शहरियों ने अच्छे से संभाला हुआ है। इसी अंबाजोगाई के कुछ मित्रों ने एक

0: आकर पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ किया कि कईयों की जिंदगी बदल गई। यहाँ के एक साहित्यिक अभियान में कार्यरत अभिजीत जोंधड़े ने अपने ग्रुप की इसी पहल के बारे में आकाशवाणी के साथ जानकारी साझा की।
1: सन 2007 में मेरे एक मित्र का मुझे फोन आया। उन्होंने बताया एक छात्र बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली है, उसे अंक अच्छे मिले थे और वह पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेना चाहता था, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर, उसके पिता नहीं थे और आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं। सारी जानकारी लेने के बाद हम चार पांच दोस्तों ने मिलकर तय किया कि इस छात्र की जितनी भी आवश्यक आर्थिक मदद होगी हम सब मिलकर करेंगे। इसी निर्णय से मैत्री ग्रुप फ्रेंडशिप क्लब की शुरुआत हुई। शुरुआत में हम सात दोस्तों ने हर महीने आर्थिक योगदान देकर उस छात्र की पढ़ाई की जिम्मेदारी दी। उस छात्र ने भरपूर मेहनत करके पॉलिटेक्निक तो पूरा किया ही, उसके साथ ही उसने इंजीनियरिंग का भी शिक्षण पूरा किया। तब तक हमारे समूह की संख्या बढ़ती गई थी और 12 सदस्य हो गए थे। जिस उद्देश्य से हम एकत्र हुए थे वह पूरा हो चुका था। तब हमने तय किया कि इस कार्य को यही

0: चाहता था, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर, उसके पिता नहीं थे और आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं। सारी जानकारी लेने के बाद हम चार पांच दोस्तों ने मिलकर तय किया कि इस छात्र की जितनी भी आवश्यक आर्थिक मदद होगी हम सब मिलकर करेंगे। इसी निर्णय से मैत्री ग्रुप फ्रेंडशिप क्लब की शुरुआत हुई। शुरुआत में हम सात दोस्तों ने हर महीने आर्थिक योगदान देकर उस छात्र की पढ़ाई की जिम्मेदारी दी। उस छात्र ने भरपूर मेहनत करके पॉलिटेक्निक तो पूरा किया ही, उसके साथ ही उसने इंजीनियरिंग का भी शिक्षण पूरा किया। तब तक हमारे समूह की संख्या बढ़ती गई थी और 12 सदस्य हो गए थे। जिस उद्देश्य से हम एकत्र हुए थे वह पूरा हो चुका था। तब हमने तय किया कि इस कार्य को यही समाप्त नहीं करना है, बल्कि ऐसे ही अन्य होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करनी है। इसी विचार से हमारा समूह और बड़ा होता गया। आज हमारे इस प्रयास से 5 छात्र इंजीनियर बन चुके हैं, 5 छात्र डॉक्टर बन चुके हैं और 2 छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। वर्तमान में लगभग 70 लोग हर महीने 200 रुपए यानी सालाना 2400 रुपए का योगदान देकर इस कार्य में जुड़े हुए हैं। इस काम के दौरान हमें समाज की कई समस्याओं और लोगों की कठिनाइयों को करीब से समझने का अवसर मिला। पास के ही गांव में एक लड़की थी, उसे 10वीं में 96% अंक मिले थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उसकी पढ़ाई रुकने और कम उम्र में शादी होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। इस बात का हमें पता चला, हमने उसकी मदद की। पहले उसने पॉलिटेक्निक किया और आगे फिर इंजीनियरिंग पूरा किया। आज वह लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी नौकरी कर रही है। जिन छात्रों को हमने मदद की वे आज हमारे समूह के सदस्य बन चुके हैं और स्वयं भी आर्थिक योगदान दे रहे हैं। लोग इससे अब जुड़ने लगे हैं और एक बहुत बड़ा काम हो रहा है।
1: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस शेर की तरह इस मैत्री ग्रुप का दिन ब दिन विस्तार हो रहा है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
2: एंड नाउ द स्टोरी फ्रॉम पानन जी। द गोवा गवर्नमेंट इज लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग स्टेट वाइड हेल्थ इनिशिएटिव To bring free Ayurvedic care closer to people, we have more from a correspondent.
3: Chief Minister Pramod Sawant has launched the Health with Ayurveda hashtag checked by Doctor 2.0 campaign, a major public health initiative. As part of this campaign, free Ayurvedic health camps will be organized from 5th of May to 5th of June, offering consultations, treatments and medicines through a network of over 190 doctors across government and private facilities. Services are being delivered through district hospitals, primary health centers, 70 private clinics and 41 Ayushman Arogya Mandirs, ensuring outreach even in remote areas. The campaign focuses on early detection and management of lifestyle diseases like diabetes, hypertension and obesity using traditional therapies. Citizens must carry Aadhaar for registration. Details of nearby centers are available on the goaonline.gov.in portal, with a dedicated helpline also in place. The government says the drive promotes a preventive, wellness-first approach to healthcare. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Bharji.
4: दोस्तों, कच्छ का रण जहां प्रकृति अपने अद्भुत रंग बिखेरती है, हर साल लाखों प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है। इनमें फ्लेमिंगो की मौजूदगी इस इलाके को बना देती है और भी खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनकी सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व का उल्लेख करते हुए इन्हें पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बताया है। एक रिपोर्ट।
5: स्थानीय भाषा में सुरखाब, हंज और राजवी रालाखा के बाराती जैसे नामों से पहचाने जाने वाले फ्लेमिंगो अब कच्छ की पहचान बन चुके हैं और यह गुजरात का राज्य पक्षी भी है। लंबी घुमावदार गर्दन, हल्के गुलाबी रंग के पैर, लाल रंग की विशिष्ट चोंच और आकर्षक पंखों के साथ इनकी अदाओं से पक्षी प्रेमी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पानी में एक पैर पर खड़े रहना, धीमी चाल से चलना और उड़ान भरते समय विमान जैसी भव्यता इनकी खास पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में फ्लेमिंगो की इसी खूबसूरती का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पक्षी कच्छ में पर्यावरण संरक्षण का एक सुंदर प्रतीक बन गए हैं।
6: पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती है। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूँ, इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं, पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यहीं घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा

0: बनारस घराने के वादक पंडित किशन महाराज, जिन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने 1973 में पद्मश्री और फिर 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ एक मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। हमारी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि।
1: Yes, and we are also remembering Jyotindranath Tagore, who was born on this day in 1849. He was a central figure of the Bengal Renaissance and the elder brother of Nobel laureate Rabindranath Tagore. A true polymath, he excelled as a playwright, musician, editor and painter. He is perhaps the most celebrated for being the primary mentor who nurtured his younger brother's genius, often composing music on the piano while Rabindranath wrote lyrics to the tunes.
0: और दोस्तों, आज जयंती है त्यागराज की, जिनका जन्म हुआ था आज की तारीख को 1767 में तंजावूर तमिलनाडु में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और भक्ति मार्ग के कवि। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की और उनके सर्वश्रेष्ठ गीत अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ आकाशवाणी में जैसे ही हम इसकी पुरानी इमारत में प्रवेश करते हैं तो एक तरफ हमें दिखाई देते हैं स्वामी हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे, और दूसरी तरफ त्यागराज, और फिर सीढ़ियों से ऊपर एक रास्ता जाता है।
1: Absolutely, त्यागराज, like Munishji was mentioning, was of course born on this day in 1767, often referred to as Saint त्यागराज or Tyaga. He was a legendary composer and singer of Carnatic music. He is celebrated as one of the trinity of Carnatic music alongside his contemporaries Muthuswami Dikshitar and Swami Shastri. A prolific composer and a profound devotee of Lord Ram, he is credited with thousands of devotional compositions, primarily in Telugu and Sanskrit.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லி நிகம். चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 8 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एआईयूडीएफ रायजोर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।
2: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है।
1: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। उसके सहयोगी आईयूएमएल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है। सत्तारूढ़ सीपीएम को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है। उसकी सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है। भाजपा ने 3 सीट जीती हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके को अब तक 8 सीटें मिली हैं और 51 पर आगे है। एआईएडीएमके को 4 सीट मिली हैं, 41 पर आगे है। पीएमके 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरएस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है। भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है।

0: एआईएडीएमके और कांग्रेस एक एक और डीएमके को दो सीट मिली है, जबकि तीन निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி

0: Namaskar and a warm welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company specific queries. Well, you may call us on the numbers, and the numbers are 2331-4444. 2331-0481 and 2371-7106. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 code as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke Tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको करते हैं आमंत्रित। आप भी सम्मिलित होइए हमारे कार्यक्रम में और पूछिए हमसे सवाल, अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: तमाम श्रोताओं को नमस्कार, धन्यवाद।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनिजा डैंक।
0: थैंक यू मनोज। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस क्लाइंब अराउंड 0.5%, सेंसेक्स गेन्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस अबव 24,100, मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन पॉजिटिव जोन एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.5% लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 24,100 के ऊपर हुआ बंद। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भी दिखी तेजी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And friends, before we move on, here's a disclaimer for you all, and that is that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: हमारे साथ मुंबई और नोएडा दोनों से कुछ श्रोता जुड़े हुए हैं. हम आप दोनों का और साथ ही जो लाइन में लगे हुए हैं आप सबों का स्वागत करते हैं और सबसे पहले आमंत्रित करते हैं नोएडा से जितेंद्र जी को. जितेंद्र जी आपका स्वागत है.
2: हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर द टाइम. माय क्वेश्चन सिंपल विच इज ये VPF और प्रोविडेंट फंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड आर दे सेम इन नेचर इन टर्म्स

0: rate of interest for employee. And the last point is, if we save as part, that's voluntary, is that going to be added in our pension, which is going to be deducted or maybe disbursed after we retire? Thank you.
1: I think you asked the difference between VPF and EPF, which is a voluntary provident fund, and the employees provident fund. Since there is a cap on that, I mean, how much money you can put into employees provident fund, and beyond that cap, whatsoever money you are contributing. Like, for example, for any employee, 12% contribution from him and 12% from the employer are deposited in the employer's provident fund. So if you want to put more money into the provident fund, that becomes a voluntary provident fund. Earlier, the situation was, I mean, there was no difference between EPF and the VPF. But if I can remember correctly, in a budget sometimes back, any deposit beyond 2.5 lakh was taxed separately. So the money will be there in your account, but in terms of the tax benefit or in terms of the government interest, it will have a different kind of treatment.
2: All right. And the second question wasn't very clear, so we are sorry, we won't be able to take that.
1: He was talking about more about EPF and VPF. Okay. So I think that's the answer right, which I can give him.
2: Yeah. All right. All right. We are now joined by Murtaza from Mumbai. Ji, sawal
3: puchhiye.
2: Hello.
3: हेलो
4: आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाल पूछिए मुर्तजा जी
3: मेरा सवाल है दो सवाल है कि पहला तो गोल्ड बॉन्ड क्या रेट मिलेगा और गोल्ड किस महीने सही कि गलत है
1: देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की आप जो बात कर रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है उसके जो 2023-24 तक वो अवेलेबल था जो सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक जारी किया करते थे अब अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट हो जाएगा अलग अभी के समय में क्या होता है कि जो आपके पास प्राइमरी मार्केट से लिया हुआ यानी कि आपको सरकार ने सीधे दिया था जब वहाँ पर आप 8 साल तक उसको होल्ड करना पड़ता है 8 साल में जो भी उसमें एप्रिसिएशन यानी कि जो भी उसमें बढ़ोतरी होती है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है 5 साल के बाद आपको जो है वो विड्रॉल की फैसिलिटी होती है लेकिन वहाँ पर टैक्स लगता है अब ये सिचुएशन है कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं और वहाँ पर जो भी आप उस पर फ़ायदा कमाते हैं उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है
4: हमारे साथ श्रोता हैं लेकिन हम आपको अभी इंतज़ार करने को कहेंगे और आपको लिए चलेंगे पहले घरेलू शेयर बाज़ार कुछ बातें हो जाएं अब अपने यहाँ के कारोबार की घरेलू शेयर बाज़ार में आज खरीदारी तेज़ रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% के आसपास लाभ के साथ बंद हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़त के साथ 24,119 दर्ज हुआ विस्तारित बाजार की ओर चले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी अच्छी खासी रही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.6% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% के आसपास बढ़ोतरी हुई
2: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% higher today. The Sensex gained 356 points to close at 77,269, while the Nifty rose 122 points to settle at 24,119. The broader market on the National Stock Exchange also closed in positive zone. The Mid Cap 100 climbed over 0.6% and the Small Cap 100 jumped 0.7%. Earlier, the market opened higher amid firm global cues and early assembly election trends. However, due to profit booking in the latter half, the indices trimmed some of the initial gains and ultimately ended the session on a moderately positive note.
4: हम सेंसेक्स पैक पर यदि ध्यान दें तो 30 में से 22 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी रही अदानी पोर्ट्स इसके शेयर 5.3% फायदे के साथ बंद हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2.6% का मुनाफा हुआ रिलायंस के शेयर 2.2% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए उधर नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे अधिक भारतीय एयरटेल को हुआ जिसके शेयर 3.1% से अधिक लुढ़क गए कोटक बैंक के शेयर 2.8% और TCS के शेयर 1.7%

0: प्रतिशत से अधिक घाटे के साथ बंद हुए।
1: In the sectoral indices at the BSE, 20 out of 25 sectors edged upward. Among the top gainers, realty as well as hospitals climbed 2.5%, services added over 1.9% and healthcare gained around 1.5%. In the top losers, IT shed 0.8%, focused IT lost 0.7% and PSU banks fell more than 0.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,607 companies advanced, 1,735 declined and 216 remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज एक डॉलर की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर हुआ, 95.08 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.4 पर चल रहा था। श्रोताओं, आज हमारा फोन इन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप हमसे सवाल पूछा करते हैं। हम आपको अपना नंबर बता देते हैं, 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर जी साथ हैं। शिशिर जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को?
2: इसके पहले छोटा सा स्पष्टीकरण, जो सवाल ईपीएफ और वीपीएफ का था, मेरे ख्याल से उनके दूसरे प्रश्न में पीपीएफ शब्द आया था, जितना आधा कुछ मैं सुन पाया था
0: जी।
2: और ये मुद्दा इसलिए भी उठता है कि ये तीन टर्म है आपके, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो ईपीएफ और वीपीएफ तो आपका सेम है, फर्क बस इतना है कि ईपीएफ में आप जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयर हैं यानी कि जो नियोक्ता हैं वो भी बराबरी का योगदान करते हैं, जबकि वीपीएफ में कर्मचारी देता है लेकिन एम्प्लॉयर की ओर से नहीं मिलता है, नंबर एक। दूसरा, वीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको जो ईपीएफ पे ब्याज दर मिल रही है, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8.25% के करीब में है, उतना ही आपको उस पर भी मिलेगा। तो ये एक सुरक्षित और बेहतरीन एक माध्यम माना जाता है। बस ध्यान रखिए कि अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिसका मैंने जिक्र उसमें भी किया था कि अगर आपकी ब्याज की रकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। पीपीएफ 1,50,000 रुपये, ईपीएफ 1,50,000 रुपये, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। वीपीएफ में ऐसी कोई सीमा नहीं होती है, पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है, 7 साल के बाद आप उस पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर जितना मैंने उनके सवाल को समझा था और फिर मुझे लगा कि कुछ और चीज़ें जोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि दो और कॉलर आ गए हैं, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं।
1: दैट्स राइट, वी आर जॉइंड बाय सचिन फ्रॉम फरीदाबाद। जी सचिन जी, सवाल पूछिए अपना। जी
3: जी जी, नमस्कार सर। मेरा क्वेरी ये था, अभी ये ऑयल का जो प्राइसेस का एकदम से स्टीप अगेन इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ अगेन सम वॉर सिचुएशन इज अराइजिंग, तो अभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट का व्यू क्या रहेगा आपका, से फॉर अ पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स अगर मैं देखूं?
2: ओके सचिन जी, देखिए तेल की कीमत उछलने की बहुत खास वजह है, अगर आप देखें कि सप्ताहांत में जो प्रस्ताव दिया गया और उस पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया थी वो अभी एक घबराहट का माहौल पैदा कर रही है। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि ओपेक प्लस ने तेल का उत्पादन बढ़ाने की बात तो कही है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो उत्पादन कैसे बाजार में पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे रास्ते जो हैं वो अभी दिक्कत में हैं। तो बाजार थोड़ा भरोसा नहीं कर पा रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपने देखा कि कच्चे तेल के भाव जो हैं आज बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं आंकड़े आप मुझे साफ कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि ये सही है गलत है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि शेयर बाजार का हाल अगले 3 महीने में क्या होगा, देखिए यहाँ पर अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है। आज कोई और एक प्रतिक्रिया आती है, फिर प्रस्ताव आता है, फिर प्रस्ताव खारिज करने की बात आती है, फिर होता है कि इसराइल जो है वो लेबनान पे हमला करने वाला है, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ और स्टेटमेंट आता है। तो ये बहुत ही मुश्किल भरा समय है बाजार की दिशा के बारे में कोई अनुमान लगाने का। मेरी अपनी राय यह है कि अगर आप शेयर बाजार को लेकर के आप पैसा लगाना चाहते हैं तो एक छोटी सी रकम किस्तों में आप लगाते रहें जब कभी भी बाजार में गिरावट हो, और एक अच्छा खासा रकम जो है आप हेजिंग

0: तौर पे डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं उसमें रखिए, वो आपके लिए सुरक्षित भी है और उसमें ब्याज की दर अभी जो महंगाई दर है उससे कहीं ज्यादा है।
1: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अनुभव, स्वागत है आपका अनुभव जी, सवाल पूछिए।
2: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग।
2: मेरा सवाल ये है कि ETF के बारे में मुझे पूछना था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो मैं अगले 5 सालों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक घर लेना चाहता हूँ अपने लिए दिल्ली में। एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड टू बाय अ होम, तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। 50,000 पर मंथ मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ETF ज्यादा बेटर रहेगा या म्यूचुअल फंड? बिकॉज म्यूचुअल फंड में एक फिक्स रेट रहता है, बट ETF में आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे क्या कुछ 5 ETF ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं जो 5 साल या अगले 10 सालों के लिए मैं जिसमें लगातार इन्वेस्ट कर सकूं?
0: देखिए, कार्यक्रम की जो नियम है वो हम किसी खास विषय

0: इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप मुझे क्या कुछ पांच ETF ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं जो 5 साल या अगले 10 सालों के लिए मैं जिसमें लगातार इन्वेस्ट कर सकूं?
1: देखिए कार्यक्रम की जो नियम है वो हम किसी खास विशेष योजना या एक खास कंपनी का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ETF में लगाना और आपने रकम का भी जिक्र किया है। मेरा मानना है कि आप EPF की जगह पर ETF की जगह पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की जगह पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक छोटी सी रकम लगाइए और उसका एक हिस्सा आप रिकरिंग डिपॉजिट करना शुरू करिए। रिकरिंग डिपॉजिट का फ़ायदा क्या होगा, जैसा आपने कहा आपको घर लेना है और आपके पास कुछ रकम हर महीने आपके पास आते हैं तो आप रिकरिंग डिपॉजिट में लगाइए जहां पर ब्याज दरें अभी ठीक ठाक हैं। कई जो अगर मैं खासतौर पर डाकघर की बात करूँ वहाँ काफ़ी अच्छा है, आप बैंक में भी रख सकते हैं। तो आप क्या करिए कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए, 33 33 33, यानी कि एक हिस्सा आप ETF में डालें, एक हिस्सा आप डाकघर का RD करें रिकरिंग डिपॉजिट और एक हिस्सा जो हो बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट करें। इससे क्या होगा कि आपके पास 5 साल के बाद हेजिंग भी, यानी कि जो पैसा अगर बाजार में किसी भी तरीके से उसमें बट्टा लगता है तो उसकी एक सुरक्षा जो है वो बैंक और डाकघरों की योजनाओं के जरिए आप कर पाएंगे और आप उम्मीद हम करते हैं कि आपके लिए घर का सपना जो है वो पूरा होगा और अगर हो जाता है तो हमें लड्डू खिलाना ना भूलिएगा।
2: ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। या
3: नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। सर माय क्वेश्चन इज अबाउट वैल्यूएशन व्हिच आर हाई, दैट इज व्हाई द FIIs हैव लेफ्ट, दैट इज वन रीजन, एंड द वैल्यूएशंस आर हाई एंड FIIs आर लीविंग बट DIIs इज पुटिंग द मनी, सो मार्केट इज बेसिकली गोइंग नोवेयर, सो वैल्यूएशंस आर रिमेनिंग एज इट इज। So next correction, the time correction is expected, means थोड़ा time लगेगा कि valuation फिर से normalize होने में, क्योंकि FIA जा रहे हैं, DIA आ रहे हैं, valuation वही है, and market is not going up. So how long do you think this will continue, and will this oil fall because of this pollution problem will be solved, will also impact the Indian market. So अगर मेरे पास अभी कोई पैसा है extra other than SIT, SIT will continue, but extra पैसा है तो should I put it in FD or any fixed debt income, or it again spread it next 6 to 8 months or 1 year? What is your view for this kind of people, retail investor like us, who have some extra money to put into the market, but we are not seeing any return in this current scenario in next?
1: So you have already given some explanation to the market that valuations are still very high, but still I believe that there are some stocks where the valuations are very attractive, and then there you can go and purchase those stocks. But please remember, don't put money in one go. If you want to invest in the market, if you are adopting SIP, which you just mentioned that you are also having some SIP, use the same mechanism for the stock market also whenever there is a dip, number one. Number two, you said that should I put money into bank fixed deposit or debt instrument? My suggestion would be that put that money into the bank or the post office fixed deposit, because the interest rate there, especially in the post office, are very high, and that is going to give you some additional money, and hopefully when the market will recover, you will have some money, some additional money to put into the equity market also. So as of now, my advice would be that diversify your risk. That would be the better. And in terms of valuation, of course, some of the stocks are still very high, but some of the stocks, some of the blue chip stocks are very, very attractive, attractively available.
4: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रवि। रवि जी स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
5: थैंक यू सर, ये मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो 12 लाख रुपए साल का कमाऊंगा तो टैक्स भरना होगा कि उससे कम कमाऊंगा तब भी भरना होगा?
1: देखिए स्टॉक मार्केट के जो नियम है वो ये कहते हैं कि आपका जो लाभ होता है जिसको हम लोग कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल गेन कहते हैं, उसमें दो तरीके के टैक्सेशन का सिस्टम है, एक जिसको हम लोग थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म की बात जो करते हैं, दूसरा जो है लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल यानी कि 365 दिन, और जब उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपका लॉन्ग टर्म बनता है। जहाँ तक सवाल शॉर्ट टर्म का है तो उसका आपका टैक्सेशन का रेट अलग होगा, और जहाँ तक रहा सवाल आपका लॉन्ग टर्म का, वहाँ पे आपका रेट जो है वो अलग होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि 1 लाख रुपए तक का जो मुनाफा होता है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता, और अगर आपने शेयर 2017 के पहले खरीदे हैं उस पर जो मुनाफा है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। अब जो आपने प्रश्न पूछा 12 लाख रुपया, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये पिछले

0: साल के बजट घोषणा की वजह से ये बात उठी, जिसमें कहा गया था कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक शर्त है कि अगर उसमें से किसी भी तरीके से आपको शेयर बाजार से फायदा होता है तो आपको इस 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा।
1: Right, that was quite detailed. Now we move on to where else. We are broadcasting from Delhi, so here's a caller from Delhi. Virendra is online. Virendra ji, ji sawal puchhiye apna.
2: Namaskar ji.
1: Namaskar ji, sawal puchhiye.
2: Mera sawal thoda sa alag hatke hai market se.
3: Ji.
2: Ye hai ki matlab ek viksit desh aur avikasit desh ka jo mukhya aadhar kya hota hai, wahan pe resources hote hain ya padhe likhe log hote hain, matlab kis aadhar pe किस वजह से विकसित बनता है, जो कम विकसित देश है विकसित कैसे बने, मतलब मेरा ये है मुख्य क्वेश्चन।
0: देखिए क्या है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र तीनों अपने अपने तरीके से विकसित, विकासशील और जो हमारे अल्प विकसित देश हैं उसकी परिभाषा करते हैं। उसमें सब में जो मूल आधार होता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय की बात होती है कि प्रति व्यक्ति आय किस तरीके की है और उसके अलावा आपकी अर्थव्यवस्था का पूरा आकार क्या है, लेकिन मूल आधार जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। अब भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत जो है वो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, लेकिन अभी भी वो डेवलप्ड नेशन नहीं बल्कि इमर्जिंग इकोनॉमी यानी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था कही जाती है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि पहले जो है एक सीमा दी जाती थी जिस आधार पर देशों का वर्गीकरण किया जाता था प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, अब उसके जगह पर जो है मूल रूप से ये देखा जाता है कि विकसित देश कहाँ है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था का आकार भी अच्छा है, और एक ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है और वहाँ की अर्थव्यवस्था का आकार भी बहुत कम है और उनकी निर्भरता जो है वो विभिन्न स्रोतों के ऊपर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन सब पे ज़्यादा है। तो इस तरीके से परिभाषा जो है वो दी जाती है। तो मूल अगर मैं बता सकूँ तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक बड़ा तथ्य होता है किसी भी देश के वर्गीकरण को सामने लाने में।
1: And I think Shishir earlier they used to say underdeveloped nations, yes. And the United Nations thought it was a little too derogatory, and so they turned into developing nations.
0: Even the developing nations, they are using the word one category as the emerging economy. Like India is called as the emerging economy. Yeah. So of course we are a developing nation, but we are called as the emerging economy. So that gives another kind of stature, you can call it.
1: Right.
0: That's the reality.
1: Whoever said what's in a name?
0: Yeah.
1: All right.
3: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, श्रोताओं को लिए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां कुल मिलाकर खरीदारी तेज दिखी। दक्षिण कोरिया में आज सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की जोरदार खरीदारी की गई। इसके चलते कोस्पी सूचकांक 5.1% से अधिक लाभ के साथ अपने सर्वकालीन उच्च स्तर 6,937 पर बंद हुआ। श्रोताओं खरीदारी अच्छी होने से हांगकांग का हेंगसिंग भी आज 1.2% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.2% से थोड़ी सी अधिक बढ़ोतरी हमने देखी। उधर जापान और चीन के शेयर बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण आज बंद रहे। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां नरमी बनी हुई थी। अंतरदिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 0.9% और जर्मनी का डेक्स 0.3% के आसपास नुकसान के साथ चल रहे थे। उधर सार्वजनिक अवकाश के कारण लंदन शेयर बाजार में आज छुट्टी है, वहां कोई कारोबार नहीं हो रहा है।
1: Alright, Securities and Exchange Board of India Chairman Tuhin Kanta Pandey said regulation must remain optimum and forward looking to balance market growth with risk management while asserting that market integrity is non-negotiable. Addressing the Capital Markets Conference 2026 today, SEBI chairman flagged risks from emerging technologies including artificial intelligence, saying SEBI will soon issue an advisory on vulnerabilities arising from AI-led tools. Pandey said global geopolitical tensions, including those in West Asia, highlight the need for deep, efficient and resilient financial markets capable of withstanding external shocks. He added that SEBI is adopting a proportionate and risk-based regulatory approach to ease capital raising, improve disclosures and support market development alongside investor protection.
3: In sab ka aashay yadi samajhna chahe aam shrotaon ke liye to kya tippani karna chahenge Tuhin Kanta जी के इस वक्तव्य पर
0: एक

0: एक छोटा सा स्पष्टीकरण, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मैंने 1 लाख कहा था, वो 1.25 लाख हो गया है। हम अपने श्रोता को ये स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने खास तौर पे 12 लाख रुपए की बात की, तो वो मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूँ मैं, जहाँ पर आपको 20% की दर से शॉर्ट टर्म और 12.25% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा, लेकिन 1.25 लाख रुपए के ऊपर है लॉन्ग टर्म में तब, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप 1 रुपया भी कमाएंगे तो उस पर आपको देना होगा। देखिए, जहां तक रहा सवाल सेबी का मूल मकसद क्या है, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, तो ऐसे जितने भी कदम उठाए जाते हैं उसमें मकसद ये होता है कि बाजार एक पारदर्शी तरीके से चले और निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके।
1: हमारे साथ दिल्ली से हैं ललित। ललित जी, बहुत समय कम है, संक्षेप में सवाल पूछिए।
2: सर नमस्कार जी, मेरा सर एक छोटा सा सवाल ये है कि मान लीजिए हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर लेट सपोज एक 50,000 का लॉस हो गया जो हमने बेयर कर लिया, और सेम फाइनेंशियल ईयर में हमने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, राइट
1: जी।
2: तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा कैपिटल गेन बनना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग, उसमें से वो मेरा जो 50,000 का लॉस है वो लेसर होगा या नहीं होगा?
0: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए आप शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉस है उसको आप जो है वो बैलेंस कर सकते हैं।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। एशिया विकास बैंक एडीबी ने आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहायता के उद्देश्य से एक नई वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। ये पहल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी में लाभ पहुंचाएगी। महत्वपूर्ण खनिज से विनिर्माण वित्त पोषण साझेदारी सुविधा नामक इस सुविधा का उद्देश्य क्षेत्र को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से प्रसंस्करण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण जैसे उच्चतम मूल्य वाले उद्योगों के केंद्र में बदलना है। एडीबी के अनुसार ये पहल महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखलाओं में परियोजना की तैयारी, नीतिगत सुधार और सार्वजनिक निवेश तथा निजी वित्त पोषण को बढ़ावा देगी।
3: And global crude oil prices reversed earlier losses and rose about 3% today amid concerns over prolonged disruption in the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.2% up at $111.63 per barrel, while West Texas Intermediate crude was also trading over 3.2% higher at $105.22 per barrel when reports last came in.
1: श्रोताओं, आइए आपको लिए चलें हाथ के हाथ सर्राफा बाजार।
3: जी, इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वाज ट्रेडिंग अराउंड 0.9% डाउन एट 1,50,530 रुपीस पर 10 ग्राम्स, व्हाइल सिल्वर वाज ट्रेडिंग 2.5% लोअर एट 2,44,970 रुपीस पर किलोग्राम अ शॉर्ट व्हाइल अगो।
1: MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी लगभग यही रुझान चल रहा था। अंतरदिवसीय कारोबार में ताज़ा समाचार मिलने तक जून अनुबंध के लिए सोने का भाव लगभग 0.9% कम होकर 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा था। वहीं मई अनुबंध वाली चांदी भी 3.6% से अधिक कम होकर 2,37,500 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यहाँ बहुत संक्षेप में बस एक पंक्ति में पूछना चाहूँ तो सोने के में अभी निवेश का समय है या अब समय समाप्त?
0: बिल्कुल नहीं,
1: यानी अब श्रोताओं सोने में निवेश का समय यानी जो आकर्षण था वो खत्म हुआ। हमारे विशेषज्ञ आप सबों की ओर से हम शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: जी धन्यवाद।
3: And before we wind up, here's a look at the headlines again. Benchmark domestic indices climb around 0.5%. Sensex gains over 300 points. Nifty closes above 24,100. Major Asian stock markets end in positive zone. And global crude oil prices rise. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, my co-anchor Manoj Pathak, and our expert for the day, Shishir Sinha, signing off. So, नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम अब तक मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है, जबकि वाम दल 2 सीटों पर आगे हैं। अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। उधर असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनमें से वो 90 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 11 सीटें जीत चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगावित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक नया इतिहास रच चुकी है। टीवी के 108 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 61 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 75 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 22 सीटें जीत चुके हैं। AIADMK और उसके सहयोगी दल 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 18 सीटें जीत चुके हैं। PMK 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। केरल में विधानसभा की 140 सीटों में से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 99 सीटों पर शानदार विजय हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 25 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। एन रंगास्वामी की AINRC ने 9 सीटें जीते हैं और 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और नागालैंड में 4 सीट जीत ली हैं। महाराष्ट्र के बारामती में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। श्री मोदी कुछ ही देर में पार्टी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा NDA की जीत गठबंधन के विकास और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के संकल्प के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, उनके संघर्ष और उनकी शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 20।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का स्वागत है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव पिछले महीने हुए और आज सुबह से उनके मतों की गिनती जारी है और हम पल पल अपडेट आप तक ला रहे हैं। क्या रुझान है, क्या परिणाम है, इन पर अपडेट देते हुए हम विशेषज्ञों से चर्चा भी कर रहे हैं। मेरा नाम है सोनू सूद और मेरे साथ मेरे इंग्लिश के को एंकर हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। वैभव, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में।
3: सोनू, वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम दैट वी आर ब्रिंगिंग यू लाइव फ्रॉम आकाशवाणी एंड वी वेलकम इन दिस प्रोग्राम अ वेरी स्पेशल गेस्ट सर्जना शर्मा मैम। वेलकम टू दिस शो।
4: थैंक यू सो मच।
2: सो सर्जना जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में।
4: आभार सोनू जी।
2: जी, और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो दे देते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में ये सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी TVK ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में UDF स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से ये 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल 2 सीटों पर आगे है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे है। असम की बात करें तो असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से वे 90 सीटें पर जीत हासिल कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वह 11 सीटें जीत चुकी है। All India United Democratic Front को 2 सीटें मिली हैं।
3: Talking about Keralam, the Congress led the charge with 63 seats, while the IUML added 21, giving the alliance a dominant edge across the state. Other UDF partners, including Kerala Congress factions and smaller allies, also chipped in, underlining a broad-based mandate for the coalition. Latest results indicate Chief Minister and CPIM leader Pinarayi Vijayan has defeated VP Abdul Rashid of Congress in Dharmadam constituency by more than 19,000 votes.
2: सर्जना जी, क्या कहेंगी आप, ये जो विधानसभा चुनाव आए हैं, जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, इन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, खासकर पश्चिम बंगाल में जो हमने देखा है जिस तरह का एक स्वीपिंग विक्ट्री लगता है कि बीजेपी को मिलने वाली है, उस तरफ अग्रसर है, 200 से अधिक सीटें, किस तरह से देखती हैं आप?
4: देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति, अगर आप इतिहास देखें, 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 30 ईयर तक कांग्रेस रही, फिर 34 CPM रही और फिर 15 साल TMC रही और एक बार जो सत्ता से गया वो लौट के नहीं आया। और जबकि TMC ने तो बाकी अपनी दोनों पार्टियों की तुलना में बहुत कम समय, 15 ईयर, आधा ही उन्होंने किया था
2: जी।
4: पर ये बहुत बड़ी विक्ट्री है बीजेपी के लिए और इतनी बड़ी है कि इसको वोटों से ज़्यादा आइडियोलॉजी की हम एक जीत कहेंगे। एक आइडियोलॉजी की जीत है और विरासत के साथ विकास, जो बीजेपी का एक नारा है विरासत के साथ विकास, उसको भी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का सब की बात कही और रक्षा, महिला सुरक्षा की बात कही। इसके अलावा कहा कि हम आपको जो घुसपैठिए, जो सीमा सुरक्षा की जो बात कही, ये बहुत सारे मुद्दे थे जो कि बीजेपी के पक्ष में गए। और दूसरा, जो बीजेपी की चुनावी रणनीति, जो स्ट्रैटेजी थी, ज़मीन पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक जिसको बोलते हैं कि पन्ना प्रमुख तक से बात करने की जो रणनीति है बीजेपी की, और संस्कृति से जुड़ा, जो अभी आज देखिए, आज मोदी जी जब बीजेपी मुख्यालय में

0: गए हैं तो पूरी तरह से भद्र लोक, जो बंगाल के भद्र लोक होते हैं उस तरह की वेशभूषा पहन के, बंगाली स्टाइल की, बिल्कुल झक वाइट धोती, उसके ऊपर बंगाली स्टाइल का कुर्ता और उसके ऊपर अंगवस्त्रम पहन कर गए।
1: तो विरासत और विकास दोनों का जो एक समागम है उसका एक ये प्रतीक है।
2: सर्जना जी, हाउ वुड यू सी दिस इलेक्शन विक्ट्री फॉर द बीजेपी व्हिच हैज फॉट different opposition parties for decades now in Bengal, starting from their ideologue, their mentor, Shyama Prasad Mukherjee ji. Now they have been able to form, or they are being seen as someone who will form a government in Bengal. How do you see these results? And not just for the national issues that were raised, that were just mentioned by you, by the BJP, but also the issues, the smaller issues that were picked up by TMC, saying that this is a fight between outsiders and insiders. How do you see that result?
0: See, I see this result. You have mentioned about Shyama Prasad Mukherjee.
2: Yes, ma'am.
0: I think ancestors, we have ancestors and we owe many things to them.
2: Absolutely.
0: I think Modi ji, whatever BJP owed to Shyama Prasad Mukherjee, today they have paid the Pitra Ran to Shyama Prasad Mukherjee.
2: Absolutely.
0: They paid
1: that debt back. Yes. So, in 1952... Ab hum chalte hain BJP headquarters Delhi, jahan se...
3: भारत माता की। जो लोग मुझे देख नहीं पाते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां है वहीं से सुन लीजिए, किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में मत पड़िए। भारत माता की, भारत माता की। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा
4: हूं।
3: आप वो तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदर पूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं।

भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जय पराजय, लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है, ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ

मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है, मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोड़ोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा।

साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पुडुचेरी के युवाओं को, मेहनती फिशरमैन साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी। पुडुचेरी के हर परिवार की समृद्धि, यही हमारा संकल्प है। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए, हरियाणा में लगातार 3री बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। साथियों, अभी 10 दिन पहले गुजरात के स्थानीय निकायों के परिणाम आए हैं। वहां बीजेपी 2.5-3 दशक से जनता की सेवा निरंतर कर रही है और हर चुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से

कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाए परिवर्तन होएगे छे। साथियों, इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में

विजेताओं को उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज

एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। साथियों, आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को, भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथियों, इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 2500 बैशाख 9 मई का दिन दूर नहीं है, हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था, एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महा

बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया

परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। साथियों, इन राज्यों में चुनाव और उसके नतीजों की राजनीतिक एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है इनकी टाइमिंग। आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी, तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था। जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे, अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी, और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। साथियों, आज पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट का पूरे विश्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पूरे सामर्थ्य से इस संकट का सामना कर रहा है। इस चुनाव परिणाम ने भी दिखाया है कि भारत इस चुनौती में भी एकजुट है, एक मत है, एक लक्ष्य से संकल्पित है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हम निकले हैं। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके तीन मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह

भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे, वही अंग, सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया, और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है।

0: आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन तीन सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई। ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशन था, उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा।
1: अभी हम दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव सुन रहे थे। सर्जना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। और मुझे और वैभव श्रीवास्तव को अब इजाजत दीजिए। 9:15 हम फिर जनादेश 2026 लेकर आपके बीच होंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने लगातार तीसरे कार्यकाल

0: के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल की है। केरला में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 99 सीटों के साथ सबसे आगे है और सत्ता में वापसी के लिए उसने निर्णायक बढ़त बना ली है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने बहुत बड़ा उलटफेर किया है। पुदुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के एन रंगासामी के नेतृत्व में फिर एनडीए सरकार बनने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विशाल बहुमत के साथ सरकार बनाकर इतिहास रचने जा रही है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो रही है। 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 205 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से वो 125 सीट जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, इनमें से 50 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है, 1 सीट पर वो आगे है। अन्य को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकार से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट में शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से वो 100 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 16 सीटें जीत चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। असम में जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हरा दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके के 108 सीटों पर आगे है और इनमें से 66 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 29 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से वो 29 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 86 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भाजपा को 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 27 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरसी ने 10 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं, 1 सीट पर वो आगे चल रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए एक नए सवेरे का प्रतीक है।
1: आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: केरल के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शहर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே லவ்லி நிகம். भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल

असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने

0: उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी के सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवली,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें

0: निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में NDA उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
1: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली NDA की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
2: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में BJP NDA सरकार है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव MA Baby ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ और

0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार 3री बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। NCP की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम
2: An election like none other with unprecedented momentum and movement and a historic result at the end of the day. Welcome to this special program, Janadesh 2026 on Akashvani. We are covering and analyzing the results of four states and one union territory. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor Sonu Sood.
3: धन्यवाद वैभव. और आज इस भारत राजनीति के महत्वपूर्ण दिन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो अहम कहें कि पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं. प्रफुल्ल

0: केटकर जी और मिस्टर केवी प्रसाद, आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सो जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो विधानसभा चुनाव अप्रैल में हुए, चार राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में, उनके रिजल्ट्स आए हैं। वेस्ट बंगाल आ रहे हैं रादर रिजल्ट्स, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रिजल्ट का जो प्रोसेस है अभी भी काउंटिंग चल रही है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुदुचेरी। सो अगर हम शुरुआत वेस्ट बंगाल से करें, जिस पर बहुत सबकी नज़रें थी और बहुत स्पर्धा थी इस चुनाव में, अगर मिस्टर केवी प्रसाद आपके पास आए तो क्या लगता है आपको, जिस तरह का जनमत आया है बीजेपी के फेवर में, 200 से अधिक सीटें, 294 सीट्स के जो असेंबली है उसमें इतनी बड़ी जो बहुमत आई है, किन उम्मीदों और किस विश्वास पर ये जनमत उनको मिला है, प्राप्त हुआ है, और भारतीय राजनीति के लिए आप इसको कितना बड़ा मील का पत्थर मानते हैं?
1: देखिए, एक तो 15 साल के जो शासन था ममता बनर्जी का, उसके खिलाफ, उनके विरुद्ध काफ़ी सारे समस्याएं थी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात कही थी जो कि मूल मुद्दा जिसका आप पूछें कि परिवर्तन लाएंगे हम पूरे प्रक्रिया में, उसमें मतलब बंगाल में, चाहे आर्थिक तौर से, चाहे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ले, तमाम सारे मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए थे। और जनता, और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ 14 दिन का कैंपेन है, कि अगर आप देखें जब से लोकसभा ख़त्म हुआ उसके बाद से लगातार ये प्रयास चलता रहा
0: जी।
1: और विपक्ष के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो भी सदन में, और वहाँ पर एक माहौल उन्होंने इस तरह का तैयार किया, और तो उस ये सब जुड़ता चला गया। और बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक ज़माने में वामपंथियों का गढ़ माना जाता था, 34 साल तक उन्होंने लगातार 77 के बाद जब तक ममता ने उनको हराया नहीं तो वो जीतते रहे। तो ऐसे में उस किला को पहले ममता ने गिराया, अब ममता का किला को बीजेपी ने हिलाया।
0: जी बिल्कुल। सो 293 सीटें हैं यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी को 168 सीटों पर जीत प्राप्त हो चुकी है और 40 सीटों पर वह आगे चल रही है। प्रदेश है पश्चिम बंगाल, उसके भविष्य के लिए आप क्या, अब एक आशा है आपको, किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो परिवर्तन की बात की, वो परिवर्तन तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और उसमें उनको लग रहा था कि भाई जैसे कहें कि सबसे बड़ा सुशासन, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार बनाई दी है वो डबल इंजन सरकार की बात करती है, और शायद वो एक बंगाल के नागरिकों ने जिन्होंने चाहा कि सरकार बदले, तो उसका परिणाम हमारे सामने है।
2: मिस्टर केतकर, माय क्वेश्चन वुड बी टू यू, द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट पेइंग अ डेट टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द मेंटोर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। He talked about the public's trust in the performance politics. He talked about एक भारत श्रेष्ठ भारत. He talked about the defeat of fear, polarization and appeasement. And we also saw a historic number of deployed personnel in the West Bengal elections. Why was this required, or was this change on the cards?
3: See, Vaibhav, if we see the history of Bengal politics, from 1937 pre-independence period, when Muslim League came to power, every election has been marred with violence. Every election, without any exception.
2: True.
3: In during Communist Party's rule, that got the state patronage, like Sohrawardi did during Muslim League government, and then eventually, you know, the politicization of state machinery started. So, Prasadji said, you know, from Lok Sabha elections, I see the preparation from last Vidhan Sabha elections.
2: True that.
3: The way BJP workers, you know, faced intimidation, and somehow BJP last time could not, you know, give that kind of confidence to the common voters that they can stand by them. The kind of atrocities pre and post poll violence has seen. Last time 34 political murders took place during Vidhan Sabha elections.
2: Right.
3: Around 40 women were murdered just for having a BJP flag or their husbands working for BJP. Now that's why Prime Minister is saying that this was not just a free and fair election, this was also fearless election for voters. Now you know, BJP stands for an ideology of cultural nationalism based on the Hindu civilization, and BJP never hides that. Bengal has been the, you know, originator of this ideology from
2: Absolutely.
3: Chandramohan Bose, first and

0: ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी।
1: KV Prasad sir, the Honourable Prime Minister talking about development and the trust on tomorrow's hopes that the people have and how they have entrusted those hopes in the form of votes to the BJP. How do you see this change in power for the people of Bengal, especially for the constituencies which were just at the border, which were facing issues, as Praful Ketkarji rightly said, that the fall of this government, the TMC government, came or started around 1.5 years back when the government of Sheikh Hasina fell, and there were so many repercussions on one particular community, but there was no comment or no action taken by the TMC, or not even a comment from them. How do you see that changing now? And with this, we will also like to tell everyone that Suvendu Adhikari has clearly talked about the fact that not just Hindu majority areas, but every other areas too, have clearly voted for the BJP for this change. Sir, your views.
2: Well, the biggest thing I would see is for the Bharatiya Janata Party that it has to hit the ground running without delay, number one, because the task, the mandate that people have given them shows the kind of hope they carry in this new government. They've elected a government on the set of promises the government has, the Bharatiya Janata Party, from right from the top leadership, led by the Prime Minister himself during his entire campaign and everybody else. So that's one thing. And secondly, what the Prime Minister has articulated, those are the factors on which the BJP will be there. Infiltration, of course, has been big in the campaign, and these are some of the factors. And improving relationship with the neighbor state is now, of course, an aspect that got into the domestic politics too. So we'll have to see how it takes the course through. But I said, they'll have to hit the ground running without delay.
3: Praful ji, एक और स्टेट जो तमिलनाडु में आज जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं। डीएमके जो वहाँ पर सत्ता में थी उनको नहीं मिली है मेजॉरिटी, और एआईएडीएमके जो दूसरी ड्रेविडियन पार्टी थी जो डीएमके से पहले सत्ता में थी उनको भी नहीं मिली है। जो नई पार्टी है टीवी के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की, उनको जो मिडवे मार्क है उससे केवल 10 सीटें पीछे हैं वो। सो पहले तो बताएं कि ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है, एक नई पार्टी जो 2 साल पहले ही बनी थी उसमें क्या देखा है वोटर्स ने, और कैसे देखते हैं पोस्ट पोल क्या अलायंस होगा?
4: देखिए सोनू जी, मैं थोड़ा सा उनको और उल्टे तरीके से देखता हूँ। डीएमके और एआईडीएमके मिलकर जितनी सीटें हैं उतनी टीवीके को है।
1: ट्रू दैट।
4: वन, सेकेंडली फर्स्ट टाइम एवर, मतलब अभी तक जो भी पार्टी वहां पे जीतती थी वो अपने दम पर 30-32% ही वोट लाती थी
3: जी।
4: बाकी अलाइज के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना लेती थी। वो नंबर्स तमिलनाडु में जो दिखते हैं ना, हम जनरली दो बड़ी द्रविड़ियन पार्टीज में देखते हैं, लेकिन यदि हम पीएमके, एमडीएमके, ये छोटे छोटे दल वहां के देखे तो उनका हर एक का अपना 2-5% का वोट शेयर है, दे एड अप। दैट हैजंट हैपेंड दिस टाइम। टीवीके के पक्ष में 35% वोट शेयर है द पार्टी कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
3: बिल्कुल।
4: तो ये जो है ये क्लियरली दिखाता है कि तमिलनाडु का वोटर जयललिता और करुणानिधि जी के निधन के बाद ऑप्शंस देख रहा था। उन्होंने एक बार पनाईसामी के नेतृत्व में एआईडीएमके को ट्राई किया, स्टालिन को ट्राई किया, लेकिन दोनों द्रविड़ियन पार्टीज वो एस्पिरेशंस और वो लीडरशिप नहीं दिखा पाए। करप्शन, पैसे का पूरे चुनावी प्रक्रिया में उपयोग, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज तमिलनाडु की डिवाइडेड, नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस। यू नो वर्चुअली उदयनिधि स्टालिन इज कंट्रोलिंग द फिल्म इंडस्ट्री, और वो फिल्म इंडस्ट्री का रिफ्ट है विजय कमिंग फ्रॉम द सेम फील्ड। ही इज गिविंग अ न्यू होप फॉर तमिल फिल्म इंडस्ट्री। इसीलिए

0: हम देखते हैं कि मलेशिया से, सिंगापुर से, तमिल फिल्म केवल तमिलनाडु में नहीं चलती है, वो बाहर जो तमिल डायस्पोरा बैठा हुआ है उसके भी एस्पिरेशंस उन्होंने एड्रेस किए। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर बंगाल की चर्चा होती है, तमिलनाडु में भी एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर करप्शन चार्जेस में जेल में गए हैं। तो ये सारे फैक्टर एडअप होने के कारण लगभग 17% यूथ आज तमिलनाडु में है। दे वेर लुकिंग फॉर, यू नो, लुकिंग एट विजय एज अ होप। वो दिखने के बाद बाकी रैलिंग हुआ है, ऐसा मुझे अभी इनसाइड में लगा।
1: सो एंटी इनकंबेंसी के साथ साथ सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी।
0: डीएमके के खिलाफ सेंटीमेंट था, वो किसके पक्ष में जाता है ये समझ में नहीं आ रहा था। विजय हैज डेफिनेटली
2: एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जी, एज़ यू वर सेइंग दैट द एरोगेंस ऑफ द इनकंबेंट पार्टी और व्हिच हैज नाउ बिकम द पार्टी व्हिच वाज रूलिंग तमिलनाडु हैज शोन the people that yes, they were looking for a change and now they have exercised their right that yes, we need that change in the form of a new face. Let's go over to our Chennai correspondent Sushil Tiwari. Sushil ji, welcome to the show. What is the sentiment on the ground? How happy, excited, elated are the people with this win of TVK and what are their hopes and aspirations? I believe
1: सुशील जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी शायद प्रॉब्लम है। आपके पास आते हैं मिस्टर प्रसाद, आप कैसे देखते हैं तमिलनाडु में जो ये रिजल्ट आया है? हालांकि अब एग्जिट पोल से कुछ आभास होने लगा था और उसके अकॉर्डिंग ही लगता है रिजल्ट आया है, लेकिन इसका कारण क्या है आपके पर्सपेक्टिव हमें?
3: देखिए, मैं एक चीज़ जो प्रफुल्ल जी ने कहा उसको आगे बढ़ाता हूँ। आप अगर देखिए 2016 का जो चुनाव हुआ तमिलनाडु में, वो पहली मर्तबा हुआ कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री कट गई थी, कोई नुमाइंदगी नहीं थी क्योंकि स्टालिन इंडस्ट्री से नहीं आए थे और जो उम्मीद थी रजनीकांत चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव से ठीक पहले पीछे हट गए थे, उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद
1: और कमल हासन जी
3: कमल हासन की पार्टी थी लेकिन उसका कोई खास हुआ नहीं। और भी थे नेमम, और भी 2-4 लोग हैं नाइमम और जो वहाँ पे वो थे, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं था। कैप्टन विजयकांत के जाने के बाद डीएमडीके का भी, तो जब इस बारी ये हमारे टीवीके के विजय मैदान में आए और 2 साल पहले तो उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अगर आप देखें उनकी जो फैन क्लब्स है, उस फैंस क्लब को उन्होंने एक्टिवेट किया सोशल वर्क के लिए, तो एक तरह से पूरा अपना पैंट बनाई लोगों के बीच में और वेलफेयर वर्क किया। उसके बाद उनको स्थानीय चुनाव में लड़वाए तो उसमें से सीटें निकल के आने लगी, तो एक तरह से उनको पता था कि राजनीति क्या होनी है। और सबसे बड़ा मानता हूँ कि जब एक तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ देखिए, तमिलनाडु पॉलिटिक्स शुरू से देखिए, अन्नादुराय के टाइम से देखिए, कामराज के टाइम से देखिए, सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी, करुणानिधि खुद, MGA रामचंद्रन, जयललिता, सब फिल्म इंडस्ट्री से निकल के आए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्ट वापस जुड़ा है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। दूसरा, ये एक युवा होने के कारण नया उम्मीद लेके लोग उनके सताए हैं। और तमिलनाडु में जितने राजनीति मैंने कई सालों से देखी, ये ज़रूर था उनके पास कि एक विकल्प ज़रूर देते थे, कोई तीसरा विकल्प दोनों द्रविड़ियन पार्टी से अलग।
1: चेन्नई से सुशील तिवारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, बताएं कि तमिलनाडु में जो ये एक कहें कि बहुत ही क्रांतिकारी सा बदलाव आया है, एक नई पार्टी जो उभर के आई है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको, किस तरह का माहौल है और क्या आशाएं हैं?
4: देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी जीत, आप अगर इसे एक नजरिए से देखें तो युवाओं की और जेंजी की इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कई चर्चाओं में कि जो 14 लाख के आसपास पहली बार के वोटर्स थे उनमें युवा वर्ग में बहुत जबरदस्त क्रेज था विजय का, और जिसकी हम लोग बार बार विभिन्न विषयों मौकों पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से फिल्म स्टार्स की एक लार्जर देन लाइफ इमेज होती है। वो हमने देखा कि जो तमिलनाडु की राजनीति है उसमें शुरुआत में जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स, जो पेरियार आंदोलन था, वहां से लेकर के राजनीति, जो सिनेमा घर है वो एज ए क्लासरूम सोशल इविल्स को लेकर के और सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक मुद्दों को लेकर के वो उठाते रहते थे, और अगली पीढ़ी में वही लोग नेता बनकर के आए, मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उसको एक्सपेंड किया। अगली पीढ़ी में वो जो पर्दे पर वो जो करते हुए दिख रहे थे गरीब तबके के लिए और

0: मरे कुचले लोगों के लिए, वो उन्होंने सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों के जरिए किया। और इस बार उसी अटैचमेंट का लाभ जो है वो विजय ने अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत करने में किया। तो 30 साल के आसपास तक के जितने 1 करोड़ से ऊपर मतदाता थे उनमें उनका जबरदस्त क्रेज रहा, सोशल मीडिया में जबरदस्त क्रेज रहा। तो एक तो उनके जीतने के पीछे एक ये वजह भी थी, प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स थे, जो एक वॉइड था, जो एक खालीपन था, जो फिल्मी सितारों का जिस तरीके से कहा जाए कि उस तरीके से पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ विजयकांत ने जरूर शुरुआत की थी लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए
1: जी।
0: तो रजनीकांत, कमल हासन सबने प्रयास किया लेकिन इस तरीके का कनेक्ट वो यूथ के साथ नहीं बना पाया। वो पीढ़ी भी पुरानी थी, नई पीढ़ी के सितारे के तौर पर विजय ने जबरदस्त कनेक्ट किया। तो एक तो ये रहा और दूसरा हम अभी देख रहे हैं किस तरीके से युवा सड़कों पर जो विसल पोड़ू, जो तमिल में कहते हैं कि सीटी बजाओ, उनका जो नारा था, उनकी जो
1: सिंबल
0: था वो भी सिंबल भी था, वो जबरदस्त हर तरफ सीटी बजाते हुए कार्यकर्ता घूम रहे हैं, सड़कों पर आतिशबाजी हो रही, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं विजय की एक झलक पाने के लिए।
1: सो जोश बहुत है
0: पार्टी वर्कर्स के पास। तो इतने बड़े समूह की आकांक्षाओं को भी साकार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, सरकार की असफलता जो थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, और जो फिल्म इंडस्ट्री की बातें हो रही थी कि एक तरीके से पूरा कब्जा हो रहा था, तो वो उस चीज से मुक्ति दिलाने का विजय वादा करके आए हैं। और AIADMK में उस तरीके का करिश्मा नहीं रहा, लोगों को वो कनेक्ट विजय के साथ हुआ, स्पेशली यूथ को।
1: सुशील जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टूडियो में प्रफुल्ल जी आपके पास आएंगे। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो AINRC और सहयोगी दल 17 सीटें जीत चुके हैं और एक पर आगे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 6 सीटें मिली हैं। टीवी के 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। सो जो 16 का जो मैजिक नंबर है वो ऑलरेडी जो BJP और AINRC है उन्होंने हासिल कर लिया है। दोबारा उनकी सरकार बनेगी, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है?
2: देखिए, जो 2016-17 के बाद BJP ने वहाँ पे एक जो एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ की एक स्थानिक पार्टी को साथ में लेकर सरकार बनाई, उसको मर्ज नहीं किया BJP में, उस पार्टी की आइडेंटिटी बनाए रखते हुए BJP ने अलायंस किया। ये BJP दक्षिण के राज्यों के लिए एक अलग सा प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी। पुदुचेरी में वो सफल हुआ है और लगातार दूसरी बार NDA को वहाँ पे जीत मिली है। यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ जो अपने जो सुनने वाले हैं उनको बतानी है कि यदि हम AINRC और BJP और उसके अलाइज इनका सबका वोट परसेंटेज देखते हैं तो ये बहुत छोटी विधानसभा है इसलिए बहुत बार समझ में नहीं आता, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि BJP ऑन इट्स ओन हैज अ 13% वोट शेयर हियर। तो वहां पे जो केमिस्ट्री होती है किसी भी अलायंस को जीतने के लिए कि वोट ट्रांसफर बहुत अच्छा हुआ है और इस वजह से लगभग 23-24% के साथ AINRC और BJP, तो वो वोट परसेंट उनका लगभग हम कह सकते हैं कि 35-36% के आसपास होने के बाद भी उन्होंने आराम से वहाँ पे मेजॉरिटी हासिल की है। AIADMK उनके साथ में है ही, उसने भी 1.5-2% वोट ऐड किया है। उसके विपरीत यदि हम देखते हैं तो DMK और कांग्रेस इनका मिलाकर लगभग 30% तक का वोट शेयर है। कांग्रेस 17% पर है, DMK 13% पर है, लेकिन फिर भी वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अंदरूनी केमिस्ट्री नहीं है।
3: एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जी,
2: ये समझना बहुत जरूरी है पुदुचेरी के मामले।
3: वेल, लेट्स अंडरस्टैंड मोर एज टू व्हाट आर द सिचुएशंस इन पुदुचेरी। वी गो ओवर लाइव टू आवर कॉरेस्पोंडेंट इन पुदुचेरी, द आकाशवाणी कॉरेस्पोंडेंट बिबिन एस नाथ। बिबिन जी, वेलकम टू द शो। व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड? हाउ डू यू सी दिस विक्ट्री ऑफ द BJP ऑफ नेशनल इश्यूज बीइंग कंसिडर्ड बाय द पीपल, द नेशनल लीडर्स बीइंग कंसिडर्ड बाय रीजनल पीपल और रीजनल areas and them giving a chance to the BJP once again in Puducherry? How the best Puducherry vision of 2021 has borne fruit?
4: Thank you. Good evening. In my perspective, actually, at the heart of the victory in Puducherry, rather than the double engine government, I can say it is once again the central figure of Chief Minister N. Rengasamy. So his performance is central to this to understand this mandate, because we know that he has

0: The way, again, many a times we do not understand, 102 is a huge number in 126 assembly. But again, I will insist on chemistry. AJP, Bodoland Party and BJP together has, 102 seats. And again, BJP is just 37%. All these two parties have brought in 10% more.
1: That.
0: So it is shifting not just in their area where BJP is contesting. So when the chemistry is right, you convert seats more with lesser percentage. That is the formula that BJP is using everywhere.
2: In fact, प्रधानमंत्री ने अपने उसमें कहा संबोधन में कि अब जो टी गार्डन के वर्कर्स हैं वो भी हमारे लिए वोट करें. तो जो अभी तक जो जो भी ऐसे ऐसे सेगमेंट्स थे जो प्रो बीजेपी नहीं थे, जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉइट भी किया जाता है कल्चरल आइडेंटिटी या रीजनल, जैसा बंगाल में भी हमने देखा, तो वो भी अब इस बात को स्वीकार रहे हैं कि नेशनल पार्टी भी उनके लिए बेहतर हो सकती है.
0: असम में और बंगाल में दोनों जगह पर मैंने देखा, खास करके बीजेपी ने अनुसूचित जाति जनजाति दोनों वर्गों में और खास करके टी गार्डन में पहली बार उनको वोटिंग राइट में इंक्लूजन तो एक हिस्सा है ही, जिसका सेंटिमेंटल पहली बार उनको लैंड राइट मिला है. आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन उनको वहां पे एज अ लेबर लेकर गया थे, तो उसके कारण टी गार्डन वर्कर्स को लैंड राइट नहीं थे, अभी उनको पट्टा मिला है. That has been the game changer. Unfortunately, Congress or Trinamool Congress didn't pay attention to. वो मुझे लगता है, और वो तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. तो ये केवल आयुष्मान भारत की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में पट्टा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में सीए और डिलिमिटेशन में कैसी दिक्कतें आई जो असम में इंप्लीमेंट हो गया. तो वो एक मैसेज है. और तीसरा सबसे बड़ा मुझे जो फैक्टर लगता है, अगेन टुडे नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बंगाल इज वन स्टेट वेयर सेवन पे कमीशन इज स्टिल नॉट इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट.
2: ओके,
0: तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो रिजेंटमेंट है, बहुत लोग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट मशीनरी तो करते हैं, लेकिन स्टेट मशीनरी को जो सेंटर के बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता. मुझे लगता है वो भी एक बड़ा फैक्टर. तो असम में ये और असम और बंगाल में ये मुझे लगता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो एक्सप्लॉयटेड स्टेट मशीनरी के थ्रू फील करते थे, उन्होंने डिसाइसिवली बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है.
2: अगर हम केरला की बात करें मिस्टर प्रसाद, तो वहाँ पर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट थी, अब वो इस चुनाव में अपना जो स्थान है वो बरकरार नहीं कर पाई है, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गया है. सो इसको आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्या जो एक लेफ्ट की सरकार एक जो बची हुई थी एक राज्य में, अब वो भी नहीं रहेगी, तो इसको भी आप एक बहुत बड़ा एक बदलाव मानते हैं?
3: जी, राजनीति में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ठीक है एक लेजिस्लेटिव प्रेजेंस उनका खत्म हो गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी या वो उसमें फर्क पड़ा है, लेकिन एक प्रेजेंस नहीं लेगा लेजिस्लेटिव, नंबर वन. नंबर टू, एक चीज है जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स हम कहते हैं केरला में, जैसे तो ऑल्टरनेट करते थे, वो वापस आ गया. क्योंकि पिछले बारी वो टूटा था बहुत सालों बाद, कि लेफ्ट की सरकार रिपीट हो गई थी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की. तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज है, लेकिन कांग्रेस के सामने भी अपनी समस्याएं हैं, अभी वो आगे चल के पता लगेंगी हमें.
1: Absolutely. But KV sir, as we were talking earlier, you've said that you've been covering elections and you've been seeing the political scenario in India for so long now, decades. Has the left completely lost track of the voter sentiment now? We see in West Bengal, we see in Assam, now we've seen it in Kerala, how the left has completely been sidelined by the people, and time and again, are there no issues with the left, or the left has completely lost track of what the people want?
3: I don't say they lost completely, but just that what the issues that they're picking up are not gaining traction. A, probably they're not able to reach out to the segments in the manner in which they were reaching out earlier. The landscape has changed and they have not adapted to the changing landscape. You have to understand that every generation there will be new things coming up. So if you can't use the same old methods of mobilization, mass mobilization, which used to be the criteria for left parties in India, that has changed.
2: और प्रफुल्ल जी, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो अभी पोस्ट पोल आप किस तरह का वहाँ पर अलायंस बनता हुआ देखते हैं, किस तरह की नेगोशिएशंस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है सरकार बनने के लिए?
0: देखिए, टीवी के मोटा मोटा मानकर चलते हैं अभी.

0: कि अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से 107 108 सीट तक सेटल डाउन होगा, और इसलिए कोई और अल्टरनेट गवर्नमेंट बनने का तो कोई स्कोप नहीं है, तो टीवी की गवर्नमेंट बनाएगी। विजय इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ यू नो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इवन बिफोर व्हेन बोथ द पार्टीज वर ट्राइंग टू निगोशिएट विथ हिम, वो तो बात ही इसी तरीके से कर रहा था कि जिसको मेरे पास आना है वो आए, मैं तो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हूँ। तो ही वॉज वेरी क्लियर विथ हिज सपोर्ट बेस। अब चैलेंज उसके सामने दो तरीके के है, एक वो किस तरीके से, क्योंकि उसने एंटी डीएम के पॉलिटिक्स को तमिलनाडु में लाया है ये पक्का है, लेकिन क्या वो आज छोटी पार्टीज को साथ में लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में है, या एआईडीएमके के साथ इसमें बीजेपी और सेंटर कितना रोल प्ले करता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, बिकॉज विजय एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज इन टॉकिंग टर्म्स विद द बीजेपी एंड एआईडीएमके ऑल्सो। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है कि उसने लगभग सारे उसके कैंडिडेट्स फ्रेश है, किसी को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड गवर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्टेट लाइक तमिलनाडु इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर।
1: और प्रफुल्ल जी, पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है, इसमें क्या कुछ खास रहा इस उपचुनाव में?
0: देखिए, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा पवार की सीट है, हाईएस्ट मार्जिन से जीती है बारामती की, तो अजीत पवार के निधन के बाद वो सीट वेकेंट हुई थी, इसलिए वहाँ पे बायपोल हुआ है। मुझे नागालैंड की विक्ट्री बीजेपी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट लगती है। नागालैंड में अपने दम पर बीजेपी ने एनपीपी और वहाँ की स्थानीय पार्टियों को हरा कर वो सीट जीतना, ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से भी है।
2: Views on the victories of the by-elections so far, and how does it?
3: Well, normally we see by-elections, the government of the day gets to carry the by-elections.
2: Right.
3: So if you look at the last in Karnataka, BJP has, Congress has. In Gujarat, BJP.
2: Ji.
3: And of course, as
2: Maharashtra again, BJP.
3: Maharashtra,
2: yes.
3: But Maharashtra there was less of a contest because there was more out of sentiments. People had
2: absolutely
3: not contested that seat. That is a very common trend in Indian politics. Nagaland is the sole exception if you look at this way. But otherwise, the broader trend that the state assembly elections by polls usually go with the government of the day is more or less in place.
1: समय समाप्त हो रहा है, सो अब हम इस चर्चा को भी यहीं समाप्त करेंगे। प्रफुल्ल जी, प्रसाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने जो आज जनादेश आया है उसका विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए किया,
3: धन्यवाद।
1: और अब मेरी तरफ से और मेरे को एंकर वैभव श्रीवास्तव की तरफ से आपको नमस्कार। जनादेश 2026 की इस विशेष चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आकाशवाणी।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।

0: ध्वजवाहक दो व्यापारिक पोत होर्मुज जल डमरू मध्य से सफलतापूर्वक गुजर गए हैं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम मिशन ईरान की चेतावनियों के बावजूद और संकरे जलमार्ग में हुई घटनाओं से संबंधित बयानों के बावजूद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: यह घटनाक्रम ईरान की अर्धसरकारी समाचार एजेंसी फार्स के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी सेना ने जास्क द्वीप के पास एक अमेरिकी नौसेना पोत पर दो मिसाइलें दागी क्योंकि उसने कथित तौर पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इस दावे का स्पष्ट खंडन करते हुए कहा कि किसी भी अमेरिकी नौसेना पोत पर हमला नहीं हुआ है। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने एक पोत पर ड्रोन हमले की पुष्टि की। दो ड्रोनों ने ADNOC से संबंधित एक टैंकर पर उस समय हमला किया जब वह संकरे जलमार्ग से गुजर रहा था। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया और इसे ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा की गई समुद्री डकैती की कार्रवाई बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: सरकार ने कहा है कि देशभर में LPG वितरकों के पास LPG की कमी नहीं हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये जानकारी दी।
2: कमर्शियल LPG में 70% तक की आपूर्ति की जा रही है। अभी तक लगभग 2,15,000 टन कमर्शियल LPG की सेल हुई है और ऑटो LPG की सेल अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 11,100 टन की गई है। 5 किलो के सिलेंडर की आपूर्ति भी 100% इंक्रीज की जा चुकी है और इसके चलते अब तक लगभग 23,05 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। श्री शर्मा ने बताया कि DG शिपिंग ने 2,976 से अधिक भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी में सहायता की है। इंडोनेशिया और जापान ने रक्षा उद्योग, मानव विकास और आपदा निवारण उपायों के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक नए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जाफरी जमशोद्दीन ने आज जकार्ता में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमू के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर से पहले इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों का सम्मान करते हुए रक्षा क्षेत्र में ठोस सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। श्री कोइजुमू ने इसे एक महत्वपूर्ण समझौता और दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए एक दिशा निर्देशक बताया। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने और रक्षा प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो अटलांटिक महासागर में एक क्रूज पोत पर हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य घटना पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इस पोत पर हंता वायरस प्रकोप से 3 लोगों की मौत हो गई है और अनेक संक्रमित बताए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वो स्थिति से अवगत है और राहत कार्यों में सहायता कर रहा है। हंता वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और गिलहरियों इत्यादि के मलमूत्र या लार के संपर्क से मनुष्यों में फैलता है। यूक्रेन के पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित खार्कीव के नगर मरेफा पर रूसी मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हुए। क्षेत्रीय गवर्नर के अनुसार मृतकों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। इस घटना के बारे में रूस की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एशियाई विकास बैंक ADB ने आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहायता के उद्देश्य से एक नई वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। ये पहल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी में लाभ पहुंचाएगी। महत्वपूर्ण खनिज से विनिर्माण वित्त पोषण साझेदारी सुविधा नामक इस सुविधा का उद्देश्य क्षेत्र को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से प्रसंस्करण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण जैसे उच्च मूल्य वाले उद्योगों के केंद्र में बदलना है। बैंक के अनुसार ये पहल महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखलाओं में

0: परियोजना तैयारी, नीतिगत सुधार और सार्वजनिक निवेश तथा निजी वित्त पोषण को बढ़ावा देगी। ये कार्यक्रम विकासशील सदस्य देशों को उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सहायता के लिए शुरू किया गया है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा ने एक बयान में कहा है कि महत्वपूर्ण खनिज अगले औद्योगिक युग को आकार देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के एक प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। इसका नेतृत्व जापानी प्रतिनिधि सभा के सांसद और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ताकायुकी कोबायाशी कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान ऑटोमोबाइल, अवसंरचना, फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। श्री गोयल ने भारत से निर्यात बढ़ाने और बाजार पहुंच में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता तथा व्यापक हिंद प्रशांत आर्थिक सहयोग ढांचे के अंतर्गत भविष्य की संभावनाएं तलाशने हेतु कारोबारी पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर जयशंकर ने जमैका के सबीना पार्क क्रिकेट स्टेडियम में नए डिजिटल स्कोर बोर्ड के अनावरण के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज दिल्ली में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ताकायुकी कोबायाशी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने भारत जापान संबंधों के रणनीतिक महत्व की पुष्टि की और साझा हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 8वें ओवर में बिना किसी विकेट के 97 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से दो व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित गुजरने की पुष्टि की। ईरान के मिसाइल हमले के दावों को खारिज किया। इंडोनेशिया और जापान ने रक्षा उद्योग, मानव विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के खार्कीव क्षेत्र में रूस के मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत और 18 घायल। एशियाई विकास बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिए वित्त पोषण सुविधा शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: News and Hindi and English follows in a few seconds.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की।

0: और भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after special intensive revision SIR of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 271 constituencies so far. BJP has bagged 197 seats, while Trinamool Congress has won 68 seats. Congress and regional arm Janata Unnayan Party AJUP secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad AGP has won 6 seats and Bodoland People's Front BPF has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front AIUDF clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. BJP leader and

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தி ஆங்கில செய்தி அறிக்கை டெய்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है. पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 203 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. तृणमूल कांग्रेस ने 72 सीटों पर जीत दर्ज की. वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है. मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं. नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की. बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं. असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है. विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं. दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है. ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं. जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है. टीवी के ने 105 सीटें जीत ली हैं. टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की. AIADMK ने 46 सीट जीते हैं. कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है. कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया. केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी

0: निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई ने 19वें ओवर में 229 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes.
2: Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee has been defeated by BJP Shubhendu Adhikari by more than 15,000 votes in the Bhavanipur Assembly. Shubhendu Adhikari also won the Nandigram seat. This is regarded as a significant victory for the BJP, which is going to form the government in West Bengal. Kolnan Laha reporting from Kolkata.
1: BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after Special Intensive Revision SIR of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 281 constituencies so far. BJP has bagged 203 seats, while Trinamool Congress has won 72 seats. Congress and regional arm Janata Unnayan Party AJUP secured 2 seats each, CPM clinched 1 seat. As per trends available so far for 12 seats, BJP is surging in 3 while Trinamool Congress is leading in 9. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its ally Assam Gana Parishad AGP has won 6 seats and Bodoland People's Front BPF has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats. All India United Democratic Front AIUDF clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. In Keralam, the Congress

0: இரவின் மடியில் கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार।

0: श्रेष्ठ भारत।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: And that is the end of this news bulletin.
2: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி 100.1 எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசை. நேரம் 1:10. நேர்களை நீ கேட்கலாம் நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில். இதய கமலம், ஹலோ மிஸ்டர் ஜமீன்தார் படத்திலிருந்து பாடல்கள் ஒலிக்கின்றன.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर

0: हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मानों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित चिकित्सा देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term in Assam. In Kerala, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on 1 seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and MNC TMC have secured 1 seat each. In Kerala, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally RUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's led Tamila Vetri Kadagam is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has won 107 seats out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 233 results have been declared, while trends are available from one seat. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munetra Kadagam, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 59 seats and is leading on one seat, while its rival All India Anna Dravida Munetra Kadagam has won 47 seats. PMK has won 4 seats, Indian National Congress has won 5 seats, BJP, DMDK and AMM, KM and KZ bagged 1 seat each, CPI, CPIM, VCK.

0: and IUML bagged 2 seats each. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has said that today is a historic and unprecedented day and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at BJP headquarters in Delhi yesterday, Mr. Modi said, "Today heralds a new dawn for the nation and people have placed their trust in India's great democracy, politics of performance and trust in the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat."
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: Prime Minister Modi stated that BJP NDA governments are in power in more than 20 states of the country and BJP's mantra is citizen is God. The BJP has appointed senior party leader and union minister Dr. Manasukh Mandaviya and its in charge in Puducherry Nirmal Kaur Surana as central observers for the election of the leader of legislative party in Puducherry. These names were approved by the BJP parliamentary board for central observers. And that is the end of this news bulletin.
2: நேரம் 2:10. பண்பலை 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை நிகழ்ச்சியை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். இனி ஒலிக்க இருப்பது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இந்நிகழ்ச்சியில் நல்லதொரு குடும்பம், கடவுள் அமைத்த மேடை, அழகே உன்னை ஆராதிக்கின்றேன் ஆகிய படங்களிலிருந்து சில பாடல்களை கேட்க இருக்கிறோம். தொடக்கமாக நல்லதொரு குடும்பம் படப்பாடல்கள்.

0: We want only cha-cha-cha.
1: Oh, you want cha-cha-cha?
0: Huh?
1: Ready,

பெறாது, ஒழுங்கு பெறாது. உன் ஆணவம் எங்கே, வீரம் போனது எங்கே?

0: நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நல்லதொரு குடும்பம், கடவுள் அமைத்த மேடை, அழகே உன்னை ஆராதிக்கின்றேன் ஆகிய படங்களிலிருந்து சில பாடல்களை கேட்டு மகிழ்ந்தோம். எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतनी हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी 30 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरला में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी ईरान द्वारा पिछले 24 घंटों में

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने सत्तारूढ़ LDF सरकार को हराकर जीत हासिल की है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दलों को एक सीट मिली। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जाकुलबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उनकी निर्णायक वापसी का संकेत है, जबकि कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि डीएमके ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।